0: तो त्रिपुरासुर के संहार के लिए, क्योंकि उसका विमान कभी भी कहीं भी जाता है, सबसे अभेद्य है, इसलिए उसके अनुरूप ही एक जो है रथ की तैयारी करते हैं। पृथ्वी को तो रथ बनाया, ब्रह्मा जी सारथी बने, सुमेरु को धनुष बनाया, और रथ के पहिए चंद्रमा और सूर्य हुए। रथ चरण पाणि जो भगवान विष्णु है वे सर बने। इस प्रकार से त्रिपुरासुर तिनके को भगवान ने आडंबर खेल खेल में ही समाप्त किया। भगवान स्वतंत्र है, सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी अन्य देवताओं को, पृथ्वी को महत्व देने के लिए, ब्रह्मा जी को, विष्णु को, सूर्य चांद को महत्व देने के लिए ही इस प्रकार से लीला की। जब भगवान ने अट्टहास किया, उनके अट्टहास से ही तीनों पूर्व खलक्कट एक हो गए। जैसे एक हो गए वैसे भगवान शंकर ने तत्काल बाण का अनुसंधान किया और उससे विद्ध होकर तीनों पूर्व में आग लग गई, त्रिपुरासुर का नाश हुआ। या तो एक पौराणिक तथ्य है, आइए विचार करते हैं आध्यात्मिक रहस्य के ऊपर। ये जीव ही त्रिपुरासुर है, ये जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है यही समझो तीन पूर है, और इसमें जो भोग बुद्धि रखता है वही भोगाभिमान जीव त्रिपुरासुर है, और इसका नाश तभी होता है जब तीनों एक सीधी लाइन में हो, मतलब मनसा वाचा कर्मणा। ये तीन पूर है, कर्मणा अपने शरीर से निष्काम कर्म करें, या जो है भगवत भक्ति करें, देवाचरण करें, माता की पार्वती के समान सेवा करें, पिति देव भव पिता को साक्षात माधवी माने, आचार देव भव गुरु आचार्य को देवता समझें। इस प्रकार से शरीर के द्वारा क्रिया निष्पन्न करता है, यत यत कर्म करो में तत् तद अखिलम संभो तबाराध, और मन से भी तदनुसार ही स्मरण करता है, भगवान के नाम का उच्चारण करना, मन से चिंतन करना, सदग्रंथों का स्वाध्याय करना, प्रवचन करना। जब मनसा वाचा कर्मणा एक हो जाता है तब जाकर के इस तीनों पूर्व का भगवान शंकर ज्ञान के द्वारा भेदन कर देते हैं। देहत्रय के नाश से ही हमेशा के लिए ये मुक्त हो जाता है। यही आध्यात्मिक त्रिपुरासुर का रहस्य है। आज से लगभग 50 वर्ष पहले एक बड़े भारी करोड़पति थे, उन्होंने एक बड़ा सुंदर धर्मशाला बनवाया, अन्य क्षेत्र खोले, एक विद्यालय भी खोला, उसमें ब्राह्मण विद्यार्थी पढ़ा करते थे, वेदाध्ययन चलता था। कोई भी दरवाजे पर आता था वह खाली हाथ नहीं लौटता था, ये सनातन धर्म है, अतिथि आए तो खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, अतिथि देवो भव। यदि अतिथि घर से लौट जाता है तो पापम दत्वा पुण्यम आदाय गच्छति, अतिथि अग्नि रूप से घर में प्रवेश करता है, अतिथि का स्वागत नहीं किया गया तो आपके सुकृत को ले जाता है और दुष्कृत को छोड़कर जाता है। इसलिए अतिथि को देवता मान करके हमेशा सेठ की पूजा किया करते थे। कुछ काल तक चलता रहा, जैसे ही पिताजी का शरीर छूट गया सेठ जी का, कुछ काल तक बच्चों ने भी चलाया, परंतु कालांतर में बच्चों ने पुनः क्षेत्र बंद कर दिया। धर्मशाला के लिए भी कुछ उसमें भी नियम लगा दिया, रसीद काटना शुरू कर दिया कि एक कमरे का कम से कम 100 रुपया है। एक महात्मा गुजरे जो उसके पिता के गुरु लगते थे, उन्होंने पूछा कि बच्चों तुम्हारे पिता ने इतना सुंदर विद्यालय खोला, धर्मशाला बनाया, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, परंतु इस धर्मशाले में तुम लोग 100 रुपए की रसीद किस बात की काटते हो? क्या कुछ व्यापार में घाटा तो नहीं लगा? बच्चों ने कहा, महाराज जी आप बात ठीक कहते हैं, कोई हमें व्यापार में घाटा नहीं, व्यापार और पहले से बढ़ गया, पैसे भी काफी हो गए, पर ये 100 रुपया जो हम लोग लेते हैं ना मेंटेनेंस के हैं, क्योंकि 100 रुपया नहीं लेंगे तो मेंटेनेंस कैसे होगा, ये व्यवस्था के लिए है। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे पिता एक पैसा नहीं लेते थे, कोई भी आए उसे धर्मशाला में जगह देना, उसका स्वागत करना, उसके भोजन की व्यवस्था करना और सत्संग सुना करते थे। ये भोग वृत्ति का लक्षण है कि जब आदमी के अंदर भोग वृत्ति आती है तो वह अपने पिता पितामह पैतृक के संपत्ति का भी सदुपयोग नहीं करता है, बल्कि उसका भी वह दुरुपयोग करता है, उसमें से भी कुछ कमाना चाहता है, लाभ उठाना चाहता है। यही भोग और योग में अंतर है। इसलिए हमारे जीवन में ये जब तक त्रिपुरासुर रहेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। त्रिपुरासुर का अर्थ भोग वृत्ति, और भोग वृत्ति को मिटाने का एक ही रास्ता है कि हम अपने जीवन में विवेक को, ज्ञान को जगह दें। और विवेक ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए कोई न कोई अवलंबन होना चाहिए। जैसे आपको विद्युत को जानना है तो विद्युत को जानने का अवलंबन है, चाहे आप ट्यूबलाइट लाइट से जाने या पंखे से जाने या कूलर से जाने या फ्रिज से जाने, जिससे सारे यंत्र संचालित हो रहे हैं, जिससे दूर दूर तक ध्वनि जा रही है, प्रसारित हो रही, वही विद्युत है। जिससे लाइट प्रकाश कर रही वही विद्युत है, जिससे पंखे चल रहे हैं वही विद्युत शक्ति है। माध्यम अनेक हो सकते हैं परंतु पावर एक है। ऐसे चाहे भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें, श्याम सुंदर की उपासना करें, या भगवान शंकर की, या भगवान विष्णु की, या भगवती दुर्गा की, किसी की भी, सुधाया पानम अमितत्व सहेतु हो। सुधा का पान ही अमितत्व का हेतु है। चाहे पात्र सोने का हो, चांदी का हो या लकड़ी का हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे हमें उपासना करना चाहिए, साधना करना चाहिए, चाहे किसी भी देव का हो। उपासना करने से अंतःकरण निर्मल होता है। ज्ञानम उत्पयते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्म। जब पापीय कर्म उपासना से क्षीण हो जाते हैं तो अपने आप निर्मल अंतःकरण में ज्ञान गंगा का अवतरण होता है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया, शेष बात कल विचार करेंगे। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की जय।
1: नमः शिवाय। ऑल द 3shaivam.org रेडियोस हैव स्टार्टेड ऑपरेटिंग फ्रॉम आवर ओन स्ट्रीम सर्वर नाउ। As a result, the URL has changed and the stream you are currently listening to will stop shortly. Our shaivam.org website and the mobile app are already pointing to the new URL, and you will be able to continue to listen to our radios through them. If you are currently listening to our radio through some other tools like TuneIn, Radio Garden, etc., please let us know at shaivam@shaivam.org. We will do the needful to update the URLs in those tools too. Please help us by sharing which tool you are using to listen to this stream, to make sure that you are able to continue to listen to them even with the new stream. Again, the mail address is shaivam@shaivam.org. Thank you. Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
3: Om Namah Shivaya.

0: Namashivaya. All the three Shaivam.org radios have started operating from our own stream server now. As a result, the URL has changed and the stream you are currently listening to will stop shortly. Our Shaivam.org website and the mobile app are already pointing to the new URL, and you will be able to continue to listen to our radios through them. If you are currently listening to our radio through some other tools like TuneIn, Radio Garden, etc., please let us know at shaivam@shaivam.org. We will do the needful to update the URLs in those tools too. Please help us by sharing which tool you are using to listen to this stream to make sure that you are able to continue to listen to them even with the new stream. Again, the mail address is shaivam@shaivam.org. Thank you. Namaste.
1: Om Namah Shivaya.
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
3: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: ये संकेत वहां भी ठीक इसी प्रकार से यहां भी संकेत कर रहे हैं, जो विस्पष्टार प्रति नाम उनके लिए तो जीवन में क्या होना चाहिए, तो पहले श्रवण, श्रवण के द्वारा उसके गुणधर्मों का विवेक, गुणधर्मों का विवेक होने पर हमारी इच्छा उसमें होती है, इच्छा के अनुकूल प्रयत्न करना, और प्रयत्न करते हैं तो धीरे धीरे वो पात्रता, वो अधिकारिता हमारे में आ जाती है, वो प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये कोई नियम नहीं है कि प्रयत्न करते हुए तुम अधिकारी बन ही जाओ। कितने लोग जीवन में और अध्ययन करते हैं लेकिन सब जो है कंपटीशन में जाते हैं तो क्या सब अधिकारी बन जाते और सबका चयन हो जाता? यही तो शास्त्र कहता बार बार, धर्मशील कोटि न मोह कोऊ एक एक हो धर्म श्रुतिधारी। माने करोड़ों व्यक्तियों में, अनंत व्यक्तियों में कोई विरले ही है धर्म और श्रुति के अनुकूल चलने वाले, और उन चलने वालों में भी उस प्रकार से कर्म करने वाले, प्रयत्न करने वाले उनमें भी बहुत कम, उनमें भी छट नहीं हो जाती, और कहने लगे उससे आगे श्रेणी चलती है। तो ऐसे प्रयत्न करने वालों में कोई एक ही सिद्धि को मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतत् सिद्धे, इस सिद्धि के लिए कोई एक निकलता, और यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्य तत्तथा, कोई एक ही प्राप्त होता है। तो ये जीवन की और सर्वत्र, चाहे वो लौकिक क्षेत्र हो चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो, ये नियम सर्वत्र विद्यमान, संकेत। इसलिए यहां कहा कि हमें प्रयास करना चाहिए, प्रयास की श्रेणी बतलाई तो श्रद्धा कब आएगी और श्रद्धा भी कैसी, इसको लेके हम दृष्टांत एक दे रहे थे। क्या अवंतिका का राजा, इन दृष्टांतों से सरल में समझ में आ जाती। अवंतिका का राजा शिकार खेलने के लिए मेदपाट के आसपास जंगल में गया और भील को वहां सहयोगी बना लिया। भील ने उसकी सेवा की, एक महीने तक रहा, और भील ने जब जो है पूरी तत्परता के साथ, पूरी संलग्नता के साथ उसका सहयोग किया तो उस पर प्रसन्न हो गया। तो उसने क्या कहा, जब चलने लगा प्रसन्न हो गया कि भाई तू हमसे कुछ मांग ले। अब जो है जब उससे कहा तो उसने क्या देखा था कि वो जो है प्रातः काल बैठा हुआ और क्या कर रहा था, भगवान शिव की पूजा, और वो ही नहीं कर रहा था, करते तो सब है लेकिन करते हुए भी और जो है भूल जाते हैं, ये भूले ही तो सब काम खराब कर देती। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि इसको न करता हो। आप कहो कैसे, तो आपको एक मोटे रूप में बतलाऊं, आप पालती मार के बैठ जाओ है? अब आपके जंघाओं का जो पालती का रूप बन गया, ये क्या हो गया? मान लो एक मंदिर का चबूतरा हो गया। क्या हो गया? मंदिर का चबूतरा हो गया। ये जो आपका है वो मंदिर का पूरा जो है परकोटा बन गया। हृदय आपका गर्भग्रह हो गया और ये उसका गुम्बद हो गया। और जटाएं हो भावा जी जैसी तो बांध लो, जूरा तो कंगूरा हो गया, है ना, कंगूरा उसका बन गया। अच्छा, अब जो है वो जो इस गर्भग्रह के अंदर जो बैठा है वही क्या है? शिव विग्रह। वो आत्मा जो विद्यमान है वही क्या है? शिव विग्रह। और बंद करके, चारों तरफ से बंद करके प्रत्येक प्राणी सुसुप्ति अवस्था में कहां जाता? वहीं जाता है, उसी की पूजा करता। उसको जो है वो कोई जान ही नहीं पाता, वो भी नहीं जान पाता। और उसने जो है धीरे से, उसकी जब रुचि पैदा हुई और रुचि पैदा हुई तो सीमन थोड़ी हटाई और देखा कि यह जो है इसकी उपासना करता है, तो उपासना करता तो लोक से भी समझ लो, ऐसे भी समझ लो। अब जब उसने देखा तो उसके हृदय में भी रुचि पैदा हो गई। रुचि ही तो पैदा हुई पहले, और कैसे हुई? तो देख करके, देख करके, सुन करके। जीवन में जो है हम अनुभव करते यही देखना। और जब उसके अंदर रुचि हुई तो रुचि के अनुसार उसके अंदर भी आया कि मैं जो हूं भी पूजा आदि करूं। अब ये क्या था? तो भीड़, तो ये कोई नियम नहीं। प्राणी, कोई भी प्राणी कहां है, कैसा है, इससे कोई मतलब नहीं। कब परमात्मा की उस पर कृपा हो जाती है और कब उसके हृदय में वो इच्छा पैदा हो जाती है, ये कोई नियम नहीं। ये नहीं कि बाबा जी के हृदय में ही पैदा होगी, गुफा में बैठे हुए एकांत में बैठे उनके ही हृदय में पैदा होगी, ऐसा कोई नियम नहीं। वो नियम है एक बुद्धि की शुद्धि करने का नियम, अपरे गृणाम संगमे नदीनाम विप्रोधिया अजायत। वो एक जो है हमारी विप्र बुद्धि तो प्राप्त होगी, लेकिन बुद्धि प्राप्त होने पर कोई ऐसा नियम नहीं कि एक व्हील है जो व्यवहार में, लोक व्यवहार में चल रहा है और उसके अंदर नहीं होगा, उसके अंदर भी हो सकता। परमात्मा की कब किस पर कृपा हो जाती है तो तभी उसके हृदय में, उसकी बुद्धि में वो दृष्टि पैदा हो जाती, वो रुचि पैदा हो जाती। और व्हील के भी रुचि पैदा हो गई और वो राजा जाने लगा। राजा कोई दूसरा नहीं, जीव ही समझ लेना। अब जब राजा जाने लगा और पंच विषयों का उपभोग करना, यही शिकार करना, और कोई शिकार करना नहीं, लेकिन किसके सहयोग से करते हो? तो बुद्धि आदि के सहयोग से ही करते हो, बगैर उसके नहीं कर सकोगे। तो यही सब सारे रूपक इसीलिए बनाए गए। तो अब जो है उस व्हील से कहा कि तू कुछ मांग ले। उसने कहा मुझे तो जो है ये विग्रह दे दो। उसने थोड़ा टालना भी चाह, लेकिन उसका दृढ़ निश्चय और जो है उसकी रुचि जो पक्की हो गई। और जब रुचि पक्की हो गई तो राजा ने कहा चलो ठीक, इसने सेवा की है, ये उसकी प्रसन्नता थी। अब जो है प्रसाद से

तब जो है उससे कहा कि एक नियम रखना। कहा क्या? कहा ये जो शिव है इसे प्रिय क्या है? जल भी प्रिय, ये सब तो प्रिय हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रिय क्या है? जिसका ही उसने आवरण बना लिया है। चिता भस्म लेप सृगपिनखरोटी परिकर है, माने जो है अपने सारे शरीर में जिसने क्या लगा रखा है? कहा भस्म। और ये भस्म किसका प्रतीक है? भस्म प्रतीक है सारी उपाधियों को नष्ट करके जो शेषतया मूल तत्व है उसका। भई जो उपाधि थी, जो नाम रूप था, और वह जल गया, लकड़ी, लकड़ी क्या है? एक नाम है, और उसका आकार प्रकार, उसे जला दिया तो क्या रह गया? राख रह गई, भस्म रह गई। अब लकड़ी नहीं कहोगे उसे, है ना? तो वो क्या है? राख। इसी प्रकार से सारे जगत की उपाधि जो नाम रूपात्मक है, उसको जहां पर जला दिया जाता है, उसका जहां पर परित्याग कर दिया जाता है, और वो शेष जो बचता है उसका नाम है भस्म। और ऐसे शेष को धारण करने वाले कौन है? शिव, परात्पर ब्रह्म। तो अवशेष तया जो रहने वाला है, इसलिए उसे कहा जाता संगो ही अयम पुरुष। किसी भी उपाधि में उसकी आसक्ति नहीं, निरुपाधिक जो है। तो इसलिए शिव को जो है निर्गुण निराकार मानते, राम की मूर्ति होगी सगुण साकार कहोगे, लेकिन जो है शिव विग्रह को निर्गुण निराकार की उपासना माना, संकेत किया। इसलिए उपासनाओं में भी थोड़ी चर्चा आ गई। कह दो प्रकार की उपासनाएं होती हैं, ये तो सब जानते हैं, एक अहंग्रह उपासना और एक प्रतीक उपासना। प्रतीक उपासना क्या है? आलंबन प्रधानत्वे सति उत्कृष्ट चिंतनम इति प्रतीकोपासनम। प्रतीक उपासना क्या? गंडकी नदी से आप जो है गोलमोल प्रस्तर लेके आए, लेकिन उसको सिंहासन बना करके रखा, और क्या कहते हो? शालिग्राम भगवान। लेकिन केवल इतना ही नहीं कहते, भोग भी लगाते सब करते हो, तो आपने उसका आश्रय लिया, एक सहारा बनाया और आलंबन बनाया उसे, और उसका आलंबन बना करके अब वहां पर वृत्ति क्या बन रही है? भाव क्या बना रहे? चिंतन क्या कर रहे हो? विचार क्या कर रहे हो? विचार कर रहे हो ये शालिग्राम है। और कौन से शालिग्राम है? का सृष्टि करने वाले, स्थिति करने वाले, लय करने वाले, सब कुछ करने में समर्थ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, ऐसे ये शालिग्राम भगवान हैं, ऐसा चिंतन करते, ठीक है ना? ये तो हो गई प्रतीक उपासना। हमने एक सारा ले लिया, एक अवलंबन ले लिया, क्योंकि बगैर अवलंबन के चलना हमारे लिए कठिन है, बारहवें अध्याय में पढ़ते ही हो। तब ये तो हो गई प्रतीक उपासना, कोई भी प्रतीक, कोई भी चिन्ह, कोई भी सहारा ले लेना। आगे कहा अहंग्रह उपासना। अहंग्रह उपासना में क्या रह जाता? आलंबन त्रिस्कृत्वे सति उत्कृष्ट चिंतनम इति अहंग्रोपासनम। वहां पर आलंबन अपने आप छूट जाता है, छोड़ता है ऐसा नहीं। आलंबन क्या होता? का छूट जाता है, और आलंबन जब छूट जाता है, लेकिन उत्कृष्ट चिंतन छूटता, उस उत्कृष्टता का उसे बोध रहता है कि ये सारा जगत कहां से हुआ है। तो कहने लगे जिस कारण से, ये तो हुआ है मान भूतान जायन्ते, तो उसी से हुआ है, वही एक मूल तत्व है, वही एक मूल शक्ति है, और वही मेरे से भिन्न नहीं है। ऐसा चिंतन वो करता है, वही मैं हूं। और ये चिंतन करना ही क्या है? अहंग्रह उपासना। और अब किसकी चर्चा कर देंगे, थोड़ी सी इसको सुन लो दृष्टांत को। अब जब जो है उसने उसको दे दिया, तो नियम बतला दिया कि भस्म जो है जरूर चढ़ा देना। किसकी भस्म चढ़ाना? ध्यान रखना, चिता भस्म। और चिता भस्म का मतलब जानते हो, जहां पर नाम रूप उपाधि को हटा करके जो शेष बचे उसी का नाम है चिता भस्म। नाम भी नहीं रहा, रूप भी नहीं रहा, क्या रह गया? केवल जो अवशेष तया जो सत्तात्मक है वो रह गया, उसको चढ़ा देना। उसमें भी आसक्ति मत रखना, माने उसका त्याग कर देना। चढ़ा देने का मतलब क्या? त्याग कर, ध्यान रखो। अब जब इस प्रकार से जब कहा उससे, तो उसने जो है 12 वर्ष तक इस नियम को बड़े अच्छे ढंग से निभाया। और जब वर्षा हो गई, चारों तरफ जल हो गया, चिता भस्म कहीं मिली नहीं, तो बेचारा दुखी होने लगा।
कि एक छोटे

के नियम को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं, तो इसलिए आज तो मैं शरीर का ही त्याग कर दूंगा, धिक्कार है मेरे लिए। और जब ऐसे कहने लगा तो उसकी जो धर्म पत्नी थी आहुति, जो उसका सहयोग करने वाली थी, यासी को वृत्ति कह दो, तो उसने जो है जब उससे कहा तो उसने जब अपनी वेदना व्यक्त की तो उसने कहा चिंता करने की बात क्या? कहा क्या मतलब? कहा झोपड़ी है ना, कहा तो, कहा इसमें आग लगा दूंगी, अंदर सूखी है और मैं बैठ जाऊंगी, जल जाऊंगी, चिता भस्म। कहा तू? कहा हां। जब ये नाम रूप उपाधि जो है सब मिथ्या ही है और इसका जाना निश्चित ही है, और ये यदि जो है जो वस्तु हमसे छूटने वाली है तो क्यों न इसको देकर के भगवान को हम दाता बन जाए, ये बढ़िया श्रेय हमें मिलेगा। और ये भाव तो उसने कहा तू ठीक कह दी, और वो उसमें बैठ गई और बैठ करके आग लगा दी। और आग लगा करके चिंतन क्या कर रही, जैसे ही उसमें बैठी आग जलने लगी, यहां तक उसे बोध है, और कहने लगी

0: विचार उसका क्या है, क्या विचार करने लगी। पुष्पाणि सन्त, पुष्प हैं और उन पुष्पों को मैं तुम्हारे लिए अर्पण, लेकिन पुष्प क्या है तो क्या कहने लगी। पुष्पाणि सन्त तव देव, हे देव हे भगवान, आज मैं तुम्हारी पूजा कर रही हूं, लेकिन पूजा किससे कर रही हूं, अब वन्य पुष्पों से नहीं, वनस्पति औषधियों पर होने वाले पुष्पों से नहीं। कहा ये तो तुम्हारे द्वारा ये निर्मित हैं, हमारे द्वारा निर्मित पुष्पों से नहीं, क्या है का? कहा पुष्पाणि संत तव देव ममेन्द्रियाणि, हमारी आंख नासिका आदि कान ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इन्हीं को मैं पुष्पों की जगह पर आपको अर्पित कर रही। और कहने लगे इतना ही नहीं, आगे कहा धूपो अगर बपुरिदम, और धूप बत्ती की जगह पर ये शरीर ही मैं आपको धूप की बत्ती की जगह पर आपको अर्पित कर रही। धूपो अगर बपुरिदम हृदयम प्रदीपा है दीपम दर्शयामी, और दीपक की जगह पर मैं अपने हृदय को ही आपको अर्पित कर रही। प्राण हवीस हव्य की जगह पर, आहुति की जगह पर हम अपने प्राणों की ही आहुति आपको, हम लोग भी कहते हैं प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा, लेकिन वो कहना ही कहना है। ये दृष्टि आ जाए अब संकेत किया, और कहने लगे आगे प्राणा हवीश अंत में चाहते हो अक्षतान समर्पयामि है क्या, तो चावल जो है वो क्या है, कर्णानि तवाक्षताश्च, हमारे पैर हमारे हाथ जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं वो हम तुम्हें अक्षत की जगह पर समर्पित कर रही हूं। और आगे कह दिया पूजा फलम व्रजत सांप्रतमेश जीवा, यह जीव जो हमारे में जीव भाव है यह इस पूजा के फल को प्राप्त हो और आपके चरणों को प्राप्त करे। ये संकेत कहते हुए उसने दिला दिया, भस्म तैयार हो गई, वह निर्विकार भाव से वह आहुक जो है पूजा करने बैठ गया। और जब पूजा करने बैठ गया तो उसके जीवन में तत्परता थी, हम कहते तो हैं संयतेन्द्रिया तत्पर, उसके जीवन में वो संलग्नता थी, पूजा करने में इतना संलग्न हो गया, इतने मन से करता था, इधर उधर उसका चिंतन नहीं होता था। और जब वो पूजा करने बैठ गया, क्रम से सारी वस्तुओं को अर्पित कर दिया, और जब पूजा में संलग्न हो गया तो उसकी वृत्ति अन्य रह नहीं गई, तो जैसे स्वभाव उसका बन गया था, रोजाना कहता था भोग का समय आया कि अरे भोग तो ले आओ, और जैसे आवाज सुनी तो वह जो है दिव्य जो है रूप में आकर के दिव्य भोग को लेकर के उसके सामने खड़ी हो गई। जैसे ही उसने देखा तो होश आया, और जैसे ही उसे होश आया कहा तू तो जल गई थी। कहा हां आपने आवाज लगाई, मैं तो जल गई थी, बैठी तो मुझे कुछ पता नहीं, बैठी उस समय पता चला, उसके बाद मुझे कोई पता नहीं चला, लेकिन आपने आवाज लगाई तो भोग तैयार रखा था और वो मैं लेके। कहने लगा धन्य है प्रभु, आप छिप करके ये सारा काम कर रहे हो, कृपा करो अब आप जो है, और भगवान ने उसे दर्शन दिया, ये साक्षात्कार हुआ। तो ये साक्षात्कार कब हुआ, ये साक्षात्कार हुआ तब जब हमने अपने अंतःकरण को अपनी इंद्रियों को और उसके समर्पित कर दिया। ये सब भगवान बार बार कहते सर्वधर्मान परित्यज्य, हम तो कर्ता भोक्ता बने हुए है ना, ये साक्षात्कार की स्थिति होती तो विस्पष्ट रुचि नाम, जो साक्षात्कार करना चाहते हैं उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हम जो है क्या कर रहे हैं, इसका संप्रणयन कर रहे हैं। अब आपको एक बात और सुना दूं, अभी जो हम प्रतीक उपासना की बात करते पहले हम प्रतीक से चलते हैं और प्रतीक से अहंग्रह में पहुंच रुचि होती है, और रुचि श्रद्धा में ले जाती है, और श्रद्धा में सत्य का साक्षात्कार करा देती है, चाहे वो कैवल्य उपनिषद हो, चाहे कोई उपनिषद हो, और चाहे सामान्य शास्त्र जो हमारे ऋषियों ने प्रेरित किए वो हो। आप मीरा की कथा सुनते हो, मीरा की जीवनचर्या भी आप जानते हो, कहानी सब जानते हो, उसके पदों को भी गाते हो। मीरा ने पहले क्या है, बचपन में ही है किसी आचार्य से कृष्ण की मूर्ति देखी और जो है उसमें प्रेम हो गया, उसकी आराधना करने लगी और आगे चल करके और उसी का श्रवण होने लगा, तो विशेष रुचि हो गई, और विशेष जब रुचि हो गई तो रुचि कितनी हो गई, विशेष इतनी हो गई कि उसी में ही मीरा निहित हो गई और क्या कहने लगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नहीं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। अब विचार करो, छोड़ दई कुल की कान कहा करे है मेरो कोई, ये मीरा की भावना, जो मीरा जीवन भर कहती रही कि मोर मुकुट वाला मेरा पति है ना, जीवन भर क्या कहा कि मोर मुकुट वाला मेरा, तुलसीदास की भी किंवदंती आती। लेकिन आप विचार करो, अब गीता में बोलते हो अव्यविचारी भक्ति है? अब मीरा की भक्ति कैसी है, अब आप कहते तो हो लेकिन कैसे, आगे पद मीरा क्या बोलती, जीवन भर कोई व्यक्ति कहे कि मेरा ये मित्र है या मेरा ये पति है, और जब प्राप्त होने का समय आ जाए तो नाम बदल दे, कहे कि देवदत्त मेरा पति है, और जब प्राप्त होने पति से मिलने का समय आ जाए तो कह दे कि नहीं नहीं धर्मदत्त मेरा पति है, तो उसे क्या कहोगे, विश्वास करोगे। जीवन भर जिसने कहा कि मोर मुकुट है वाला मेरा पति, और जब पति प्राप्त हुआ मिला साक्षात्कार हुआ तो क्या कहा, पायो जी पायो मैंने, क्या मतलब, विचार करने की बात, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, तो कहना चाहिए श्याम रतन धन पायो, कृष्ण रतन धन पायो। कोई किसान कहे कि मैंने चना बोया था और काटने पहुंचे तो गेहूं मिल जाए, ऐसा तो होता नहीं, तो ये बड़ी विलक्षण बात है। लेकिन क्या है, पहले थी भागो भक्ति प्रतीक भक्ति, लेकिन अब मीरा कहां पहुंची, और मीरा कौन है, जब मीरा ने तुलसीदास को पत्र लिखा तो तुलसीदास ने क्या लिखा था, तजोरे मन हरे विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजती है परत भजन में भंग तजोरे मन, और मीरा ने वो मान करके छोड़ दिया है, और पहुंच गई वृंदावन, हो गई वैरागी एक संकेत मात्र से, लेकिन वो तुलसीदास तो पीछे रह गए, और मीरा उनसे है? गुरु तो गुड़ रह गए और चेला चक्कर हो गए। मीरा ने जो है क्या स्थिति प्राप्त की, तो यही नहीं कहा, राम रतन धन पाने का मतलब क्या, मीरा के जीवन में राम और कृष्ण का भेद ही मिट गया, ये राम है ये कृष्ण ये नहीं, कैसे कहोगे, तो जो श्रुति का निचोड़ है सार है उसको मीरा आगे कहती, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, लेकिन ये राम रतन धन क्या है, वस्तु मोलक दी मेरे सदगुर कृपा कर अपनायो, ये वस्तु सामान्य वस्तु नहीं, वस्तु शब्द का प्रयोग किया, अमूल्य है जिसका कोई मूल्य आंका ही नहीं जा सकता, जो अनंत है जिसे ब्रह्म को अनंत कहा जाता, ऐसे ही अनंत से निप्त, और इतना ही नहीं कहा, जो श्रुति में अप्रमेय है अव्यय आदि शब्दों का प्रयोग किया, मीरा ने सामान्य शब्दों में उनको कहकर बतला दिया, कहा ये वस्तु कैसी है, खर्च न होवे, क्या मतलब, मनुष्य में व्यय कभी हो ही नहीं सकता, परिवर्तन कभी हो ही नहीं सकता, न्यूनता कभी आई नहीं, खर्च न होवे और चोर न लेवे, चोर क्या करेगा, एक देश से दूसरे देश में ही तो ले जाएगा, तो देशगत परिच्छिन्नता भी जिसमें नहीं है और वस्तुगत परिच्छिन्नता भी जिसमें नहीं, खर्च न होवे चोर न लेवे और दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी पायो मैंने, और ये तो कहते हो भृंगत्वात् भृंगत्वात् आत्मैव ब्रह्म गीयते, ऐसी स्थिति में मीरा पहुंच जाती। तो यहां पर जो चर्चा की जा रही है, यहां पर संकेत किया कि हमारे जीवन में जब आचार्य आदि का के माध्यम से हम श्रवण करते हैं, शास्त्रों का हम आश्रय लेते हैं, और शास्त्रों का आश्रय लेकर के और आचार्य आदि के द्वारा हम जब उन युक्तियों को श्रवण करते हैं तो हमारे में रुचि होती है, और रुचि जब हम उसको आगे लेकर के चलते हैं तो जीवन में वैराग्य आदि आता है, मोक्षता आदि आती है, और ये सब आते हुए हमें वह श्रद्धा से युक्त करके अधिकारी बना देती है, और अधिकारी बनने पर हमें उसकी प्राप्ति हो जाए, ऐसा जो सार तत्व है वो इस उपनिषद के अंतर्गत है, और वो हम जो है संप्रणयन करने जा रहे हैं, ये यहां चर्चा है, अब फिर कभी होगा भगवान की कृपा। ओम शांति
1: नारायण नारायण नारायण। सही माने में हम बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसे संत स्वामी प्रेमपुरी जी की कृपा से यहां पधारते हैं, अद्भुत वाणी ज्ञान बरस रहा है यहां पर, श्रवण करते रहें यह इच्छा होती रहती है, स्वामी जी की बहुत बड़ी कृपा है। और मैं तो कहता हूं कि हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं, ऐसे संतों के दर्शन, इनकी वाणी, इनका ज्ञान हमें यहां प्रसाद के रूप में मिल रहा है। स्वामी जी ने बताया हमें कि सोने के पात्र में चंदन की लकड़ी जलाकर यदि हम उसमें लहसुन पैदा करते हैं तो हमारे समान मूर्ख और कौन होगा। और सही माने में हम वही कर रहे हैं। ईश्वर ने हमें इतना दुर्लभ दे दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, अमूल्य सांसें दी हैं, अमूल्य समय दिया है। मरते वक्त हम करोड़ों रुपए खर्च कर भी एक सांस नहीं पा सकते। उन सांसों को, उन समय को, इस दुर्लभ मनुष्य देह को हम किन बातों में बर्बाद कर रहे हैं? असत पदार्थों के जमा करने में, असत भोगों के, नाशवान भोगों के भोगने में हम अपना सारे जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो उस प्राणी में जो सोने के बर्तन में चंदन की लकड़ी जलाकर लहसुन का साग बना रहा है, उसमें और हम में कोई अंतर नहीं है। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है, मैंने कहीं पढ़ा था कि हिरण होता है उसके अंदर कस्तूरी होती है, वो कस्तूरी की वो समस्या है कि मुझे बाहर से आ रही है और वाकई में कस्तूरी उसके भीतर है। वही हालत हमारी है, आनंद हमारे भीतर है और आनंद हम बाहर संसार में सोचते हैं, ढूंढते हैं, और संसार में आनंद है नहीं, आनंद तो हमारे भीतर है। मैं एक ही बात कहूंगा कि जो बातें स्वामी जी ने हमें कही हैं उनको हमें आचरण में लाना है। हमें हमारे जीवन में जो असत वस्तुएं हैं उनका त्याग करके सत्य क्या है, केवल ईश्वर सारे की है, वासुदेव है सर्वम, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इसके अलावा और कोई सार नहीं है। जो आनंद है, जो तत्व है, वो हमारे भीतर है। स्वामी जी ने बड़ी कृपा की है, अगले वर्ष के लिए स्वामी ने समय दिया है, लेकिन अभी दिन और महीना की नहीं हुआ है। जहां तक मैं समझता हूं कि जुलाई या अक्टूबर में स्वामी जी पधारेंगे, उसकी तिथि अभी नक्की हो जाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबकी ओर से और प्रेमपुरी आश्रम की ओर से स्वामी जी का स्वागत करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। जय श्री कृष्ण।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shivam.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज शिव स्तोत्र। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शंकर सदाशिव प्रेजेंटेड बाय रमीला माणिक। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

महावीर्याय नमः, भूतचारिणे नमः, पुरन्दराय नमः, निशाचराय नमः, प्रेतचारिणे नमः, महाशक्तये नमः, महाद्युतये नमः, अनुर्देश्यवपुषे नमः, श्रीमते नमः, सर्वाकर्षकराय नमः, मताय नमः, बहुश्रुताय नमः, बहुमायाय नमः, नियतात्मने नमः, अभयोद्भवाय नमः, ओजसे नमः, तेजसे नमः, द्युतिधराय नमः, नर्तकाय नमः, सर्वनायकाय नमः, नित्यघण्टाप्रियाय नमः, नित्यप्रकाशात्मने नमः, प्रतापनाय नमः, रुद्धाय नमः, स्पष्टाक्ष

सुषेणाय नमः, सुरशत्रुघ्ने नमः, अमेयाय नमः, अरिष्टमथनाय नमः, मुकुन्दाय नमः, विगतज्वराय नमः, स्वयं ज्योतिषे नमः, अणुज्योतिषे नमः, अचलाय नमः, परमेश्वराय नमः, पिंगलाय नमः, कपिलश्मश्रवे नमः, शास्त्रनेत्राय नमः, त्रयीतनवे नमः, भगाय नमः, विवस्वते नमः, आदित्याय नमः, योगाचाराय नमः।

स्वाधिष्ठान षडाश्रयाय नमः, पवित्रपादाय नमः, पापारये नमः, मणिपूराय नमः, नभोगतये नमः, हृत्पुण्डरीकाय नमः, आसीनाय नमः, शुक्राशनाय नमः, वृषाकपये नमः, तुष्टाय नमः, गृहपतये नमः, कृष्णाय नमः, समर्थाय नमः, अनर्थशासनाय नमः, अधर्मशत्रवे नमः, अक्षय्याय नमः, पुरुहूताय नमः, पुरुष्टुताय नमः, बृहद्भुजाय नमः, ब्रह्मगर्भाय नमः, धर्मधेनवे नमः,

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

भगवत भक्तजन, सद्गुरु एक श्रद्धा के पात्र है। आचार्य शंकर गुरु मूर्ति को नमस्कार कर रहे हैं, चाहे वो क्यों ना अंत्य योनि को प्राप्त किया हो। जिनकी चेतना उस अद्वैत अनुभव में, अनुभूति में स्थिर है, जिन्होंने वो शक्ति को आविष्कार किया, साक्षात्कार किए, जो एक अद्वितीय चैतन्य शक्ति संपूर्ण विश्व में ओतप्रोत है, दृश्य जगत दृष्टा जगत में वही सत्ता विराजमान है, उसी सत्ता का ही संपूर्ण विलास यह संसार है, नाम रूपात्मक जगत है। केवल उतना ही नहीं, इस वेष्टि शरीर में जो भी शब्द स्पर्श रूप रस अनुभव करता, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय के द्वारा जो विषयों को अनुभव करने वाला, जिसकी उपस्थिति से यह संपूर्ण भोग्य भोग एवं भोक्ता विराजमान है, सत्तामान है, केवल जागृत में ही नहीं, वही चैतन्य शक्ति विशिष्ट स्वप्न अवस्था में भी विराजमान है, जागृत है। सभी इंद्रियों उपकरण सो जाने पर भी वो जो शक्ति है, वो जो चेतना है, वो जागृत अवस्था में ही है। जब स्वप्न अवस्था से साधक उस सुषुप्ति में पहुंचते हैं, जहां जाकर के मन भी अपने कारण में लीन हो जाता है, वहां पर भी बाह्य दृष्टि से मनुष्य कुछ नहीं पता, ऐसा अनुभव करने पर भी कुछ नहीं पता, इस बोध को जो जानता है, वो जो चित सत्ता है, वो जो चैतन्य सत्ता है, जिनकी चेतना मन बुद्धि अंतःकरण उस चैतन्य में प्रदीप्त है, वो चाहे क्यों हमारे चंडाल हो, अंत्य योनि क्यों ना हो। आचार्य शंकर कह रहे, मैं उनको प्रणाम करता हूं, गुरु रूप में स्वीकार करता हूं। इसीलिए भगवत भक्तजन इस संसार में आए। संसार में जब आए, तब गर्भ उपनिषद को जब हम देखते हैं, बड़ा वेदना और प्रार्थना करते हैं ये जीव कि हे ईश्वर, हे भगवान, मुझे और संसार में जाना नहीं है, इस संसार से इस बार के लिए हमें निष्कृति दे दो। क्या प्रार्थना आप करते हैं? गर्भ मुनि उपनिषद को पढ़ने पर लगता कि यही प्रार्थना हमने किया, और भगवान से हाथ जोड़ करके उपनिषद के ऋषि उस जीव की प्रार्थना को व्यक्त करते हैं। वही मैं गिरगिराता रहा कि इस बार के लिए हमें क्षमा कर दो, मुझे इस संसार में जाना नहीं है। परंतु गहना कर्मणो गति, कर्म के गति गहन है
और उस कर्म के परवश होकर के आना पड़ा इस जीव को, आते समय यही जीव प्रार्थना करते हैं कि अगर हमारे कर्म के कारण आना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, हे देव ऐसी बुद्धि प्रदान करो जो तुम्हें कभी न भूलो, ये मेरी प्रार्थना है, हमारी प्रार्थना है नारायण, कि ऐसी चेतना दो कि कभी भी हम आपको ना विस्मृत हो ना भूले। परंतु वही जीव, वही मैं उस प्रसव की वेदना से सब भूल गए, सब भूल गए, और उस अद्वितीय परमात्मा की ही व्यवस्था में आ गए, स्वकर्म से प्रेरित होकर के इस दृश्य जगत में आया, और इस जगत में आने के लिए बहुतों की कृपा, बहुतों की आशीर्वाद लेने पड़े। परंतु नारायण, आगमन के पूर्व में जो प्रार्थना हमने किया, ईश्वर से जो निवेदन किया कि कभी भी न भूलू तुम्हें, वो प्रार्थना किसी प्रेरित से नहीं, किसी प्रलोभन से नहीं, किसी प्राप्ति के लिए नहीं, वो प्रार्थना हृदय की प्रार्थना है, व्याकुलता की, सत्यता की, जो हमने पूर्व पूर्व जन्मों में अनुभव किया, जो हमने संसार की सत्यता को जाना, जो हम सत्य और असत्य को विचार के द्वारा प्राप्त किया था, जानकर के उस अंतर्जामी हृदयेश्वर सर्वाधार उनसे प्रार्थना किया। परंतु संसार के ऐसे माया, ऐसे मोह हैं कि संसार में आते ही मैंने किया जो प्रार्थना, मैंने जो निवेदन किया कि कभी न भूलू, वही पहले भूले, उसी को पहले विस्मृत हुए, और इतनी दुर्गति इस संसार में प्राप्त किया, अनिष्ठ को अपनाया, निष्ठ को छोड़ा, अनिष्ठ को ही प्राप्त किया, और आज तक वही अनिष्ठ को ही उठा रहना है। परंतु वो जगदीश्वर, जगदात्मा, हृदयेश्वर कभी कभी अपने अस्तित्व का प्रबोध कराते हैं कि मैं हूं और तुम्हारी ये प्रार्थना रही। परंतु विषयों की वासना से, भोगों की लिप्सा से, आकर्षण से उस अंतरात्मा की आवाज को, शब्द को हमने सुना नहीं और भोग में ही लिपट गए, लिप्त हो गए। परंतु ये जो चारों तरफ अंधकार है, यह जो अज्ञान है, यह जो मोह है, ये जो माया है, इससे जो जीव अपने को आबद्ध समझ रखा है, इस मोह अंधकार से, अज्ञान से कौन हटाने वाला है? वो तो हृदय में बैठे हैं, उन्हीं से तो हमने प्रार्थना किया था। परंतु आज हमें इस अज्ञान से कौन उठाने वाले हैं? भगवद् भक्तजन, जिस दिन ऐसा प्रतीति हो, ऐसा लगे कि हमने भोगों को अपनाया,
सुख पाने के लिए, ऐश्वर्य समृद्धि प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त किया, परंतु इतने प्राप्ति के बावजूद भी मन के एक सुनापन, एक रिक्तता, एक अभाव, एक हाहाकार अभी भी है। जब भी हम एकांत में बैठते हैं, वो जो मन के अंतस का जो भाव है, भोग ऐश्वर्य से भरा पूरा परिवार है, फिर भी कहीं ना कहीं मैं अकेला हूं। भगवत भक्तजन, ये जो फीलिंग्स है अकेलापन का, ये बहुत जरूरी है अध्यात्म जीवन के लिए। उस सुनापन, उस एकाकित्व, उस अकेलापन का अनुभव जो करता है, वो फिर ढूंढता है कि इस अकेलापन को मैं कैसे मिटाऊं, और तब वो ऐसे एक अस्तित्व के पास जाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, जो इस संसार के अंधकार को काट करके, दूर करके ज्ञानमय प्रदीप को वो प्रज्वलित कर दे। और वही है गुरु। इसलिए गुरु अनायास मिल जाता है तो उसके मूल्य को हम देना नहीं चाहते नारायण। गुरु अगर मिला है तो ईश्वर के अनुग्रह है। गुरु अगर प्राप्त कर लिया तो ईश्वर के द्वारा भेजा गया है, और यही दृष्टि जो है आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी प्रतिष्ठित कर रहे हैं कि जो आप हमारे सामने उपस्थित है, खड़े हैं, अंतवेशधारी सबसे निकृष्ट ज्योनि को ग्रहण करके आप हमारे पास उपस्थित हुए हैं, परंतु बाह्य दृष्टि से क्यों ना आप अत्यंत निकृष्ट हो, परंतु हे देव, आपके चेतना जो उस अद्वितीय चैतन्य में अनुभव है, जो एक अनुश्रुत परमात्मा शक्ति सर्वत्र विराजमान है, उस शक्ति में ही जिनकी बुद्धि और मन स्थिर है, जिनकी प्रज्ञा स्थिर है, चाहे वो चांडाल हो अथवा द्विज श्रेष्ठ क्यों न हो, वो मेरे गुरु है। इसलिए अंतिम चरण के द्वितीय तृतीय चरण में आचार्य अपने भाव को लिखते हैं,

जिनकी प्रज्ञा, जिनकी चेतना, जिनकी बुद्धि उसमें दृढ़ हो गया है, अर्थात जिन्होंने उस शक्ति को अथवा उस शक्ति में चित्त को टिका पाए, वो मेरे गुरु है। और हम लोग भी प्रार्थना करते हैं, इसलिए भगवत भक्तजन गुरु वो है, गुरु वे है जो इस संसार के अंधकार से, अज्ञान से हमें उस पार ले जा सकते हैं। कहां से आया कुछ भी पता नहीं है, मृत्यु के बाद कहां जाना है कुछ भी पता नहीं है, परंतु ऐसा जो एक अदृश्य अतीन्द्रिय यात्रा में आप निकलने वाले हैं, जाने वाले हैं, सोच करके घबराहट नहीं होती। अरे भाई, इस संसार में कहीं भी हम टूर में निकलते हैं, यात्रा में जाते हैं, तो क्या क्या व्यवस्था हम अपनाते हैं? रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, पूरा सर्च करके एकदम पक्का करके जाते हैं कि वहां जाने के बाद हमें कोई तकलीफ ना हो, यहां तक व्यवस्था करते हैं कि उस स्टेशन पर पहुंचने पर भी अगर कोई हमें लेने आवे तो बड़ा निश्चिंत कि हां कोई आ करके खड़ा है। इतनी व्यवस्था निश्चय खुद आपने किया, फिर भी आप बेचैन रहते हैं, निश्चिंत नहीं हो पाते हैं, जब तक मिलते नहीं, जब तक वहां पहुंचते नहीं, जब तक उस व्यक्ति से मुलाकात नहीं होती। परंतु कभी भी हमने ये कोशिश किया कि इस जीवन के मृत्यु के बाद भी मुझे चलना है, इस जीवन में हमने जो भी किया, जो भी संग्रह किया, जो भी अपनाया, जिनको भी ग्रहण किया, वो सब हमारे साथी है, परंतु एक समय क्यों ना अत्यंत आपन अपना क्यों ना हो, उसको छोड़कर के हमें जाना है। और इस मृत्यु के इस दीवार के बाद कौन है भाई? कभी भी हमने कोशिश नहीं किया कि बस इस शरीर को छोड़कर के, इस यात्रा को छोड़कर के आगे जो स्टेशन जहां

0: लोगों को। तो ये लोग भी तो एक सीमा तक, फिर उसके बाद ऐसा हमने व्यवस्था किया, क्या कोई आए कोई लेख देखे। जब संसार में व्यवस्था करके भी हम यात्रा में निकलते हैं, स्टेशन पहुंचने के पहले तक, स्टेशन में ट्रेन इन कर रहे तब तक मन में जो है एक बेचैन, एक टेंशन, क्या पता वो आया कि नहीं, क्या पता वो मिलेगा कि नहीं, क्या पता कहां होगा। परंतु कभी भी हम ये नहीं कोशिश करते कि इतने आयु गए, इतने स्टेशन हमने अतिक्रमण किया, अब हमारा डेस्टिनी पहुंचने वाला है नारायण। अभी तक हमें बेचैनी नहीं है कि हमें कोई वहां लेने के लिए आए, हमने कोई व्यवस्था नहीं किया कि हमारे साथ हमें स्वागत करने के लिए, हमें लेने के लिए कोई आए। वो जो बताने वाला है कि भाई देखो यही संसार ही सब कुछ नहीं है, वो जो निश्चय देने वाला है कि बस मृत्यु के बाद तुम्हें ये व्यक्ति स्वागत करने के लिए आने वाले हैं। जैसे ही हम उस स्टेशन पर पहुंचते हैं, ट्रेन रुकती है, फिर भी एक बेचैन होकर के चारों तरफ देखते हैं, खिड़कियों से झांकते हैं कि कोई आया, कोई मेरा नेम लिख करके खड़ा तो नहीं है, देखते हैं बेचैन होकर के। और जब मिल जाता है कि हाँ अमुक मेहतास फैमिलीज वेलकम टू, फिर कितना आनंद होता है कि हाँ बस मैं हूं, मैं अपने आप मैं हूं। परंतु ये जो मैं हूं, ये जो मिलन, कितना सुखद है। सारा टेंशन, सारा एंजाइटी, सारा दुश्चिंता खत्म। और उस व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं, वो हमारे लगेज लेते हैं, हम निकल जाते हैं। परंतु इस जीवन के जो संधिक्षण है, जहां उतर करके मुझे और यात्रा करनी है, ये जो स्टेशन आने वाला है, वहां हमें कौन मिलेगा? कोई हमारे लिए है, हमने कुछ व्यवस्था किया। वो व्यवस्था अगर आप करना चाहते हैं तो वो व्यवस्था में एकमात्र सद्गुरु देते हैं। गुरु वो बता देते हैं कि तुम इस जीवन के यात्रा से निकलो तो तुम इस जीवन में ऐसा कुछ कर्म करो जो तुम्हें उस स्टेशन पर मृत्यु के बाद कालांत में वो सामने आकर के खड़े रहेंगे। और व्यक्ति जब उस सद्गुरु के चरण में अर्पण कर लेते हैं, इस अज्ञान अंधकार से दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं, और गुरु जब वो ज्ञान देते हैं कि है कोई और उसको तुम पुकारो, उससे परिचय प्राप्त करो, वही तुम्हें लेने के लिए आएंगे, वही तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे, तब व्यक्ति निश्चिंत होकर के इस संसार से विदा लेते हैं। कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, बड़े निश्चिंत होकर के वो चल जाते हैं।
1: Om Namah Shivaya. You're listening to Shaivam.org Radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Namah Shivaya. All the three Shaivam.org Radios have started operating from our own stream server now. As a result, the URL has changed and the stream you are currently listening to will stop shortly. Our Shaivam.org website and the mobile app are already pointing to the new URL, and you will be able to continue to listen to our radios through them. If you are currently listening to our radio through some other tools like TuneIn, Radio Garden, etc., please let us know at shaivam@shaivam.org. We will do the needful to update the URLs in those tools too. Please help us by sharing which tool you are using to listen to this stream, to make sure that you are able to continue to listen to them even with

0: Newsprint. Again, the mail address is shaivam@shaivam.org. Thank you. Namaste.
1: Om Shivaya Nama. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Murthi Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Bhakto, abhi hum sunenge aur ek sant Murtiyar ki kahani. Pandyaraj ki rajdhani Madurai mein Murthi naam ka ek vaishya rehta tha. Chikkilar Periya Purana mein is nagri ki prashansa mein likha gaya hai, यह वह नगरी है जो भूमंडल को नापने वाली दिव्य तमिलवाणी की सुगंधि से परिपूर्ण है। ऐसी नगरी का यह भक्त मूर्ति समस्त सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर शिवजी के प्रति समर्पित था। भगवान शिवजी के मंदिर में चंदन घिसना उसका पारंपरिक काम था, इसी में वह प्रसन्नता उत्पन्न करता था। उन्हीं दिनों कर्नाटक के वट करुणाधर वंश के राजा ने मदुरई को जीतकर अपने अधिकार में ले लिया। ये राजा जैन धर्म को मानते थे और शैव संतों को सताने तथा शैव धर्म को नष्ट करना ही उनका परम उद्देश्य था। इसी उद्देश्य से उन्हें जब पता चला कि मूर्ति नायनार चंदन घिसकर भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने सेवा धर्म में बाधा डालने के लिए पूरे मदुरई नगरी में चंदन की लकड़ियां मिलना दुर्लभ कर दी। इसे देखकर मूर्ति नायनार को बहुत दुख हुआ। विचार करने लगे, चंदन की लकड़ी ही तो नहीं मिलती, चंदन घिसने में काम आने वाली मेरे हाथ तो अभी शेष हैं। यह विचार कर वे अपने हाथ को ही चंदन की लकड़ी की तरह पत्थर से रगड़ने लगे। मज्जा और हड्डियां घिसने लगी, रक्त की धारा बह निकली। भक्त का कष्ट प्रभु से सहन नहीं हुआ। भगवान शिवजी प्रकट हुए और मूर्तियार को पहले की भांति स्वस्थ कर दिया। आकाशवाणी सुनाई दी, वत्स, मैं तुम्हारे त्यागपूर्ण सेवा से प्रसन्न हूं। तुम इस नगरी के शासक बनोगे। मदुरई पर बलपूर्वक अधिकार कर शासक बनने वाले वटुक राजा का अचानक देहांत हो गया। नए राजा के चुनाव के लिए मंत्रियों ने परंपरा के अनुसार राजकीय हाथी को प्रातःकाल नगरी में छोड़ दिया। हाथी ने मंदिर के द्वार पर खड़े मूर्तियार को उठाकर कंधे पर बिठा लिया। सर्वसम्मति से मूर्ति नायनार को राज्यसत्ता सौंपी गई। मूर्ति नायनार ने विभूत का अभिषेक किया, रुद्राक्ष की माला को आभूषण के रूप में धारण कर लिया और राजमुकुट के स्थान पर शीश की जटाओं को सदा धारण कर लिया। अत्यंत न्यायपूर्ण और प्रभु के प्रति भक्तिभाव से युक्त होकर मूर्ति नायनार ने शासन किया। तद्युगीन मान्यता थी कि राजा के बिना राज्य, आत्मा के बिना शरीर सदृश है तथा सैन्य बल से युक्त राजा की सशक्त भुजाओं का संरक्षण न मिले तो जगत का जीवन स्थिर नहीं हो सकता। प्रजा के संरक्षण और निष्काम सेवा भावना के कारण मूर्ति नायनार को परिपुराण के संतों के संग्रह में विशेष सम्मान मिला है। कहा जाता है कि तत्कालीन पांडे राज के राजाओं शैव भक्त थे। उस समय कर्नाटक और बाकी कई राजा जैन धर्म को मानते थे और उनका यह मानना था कि शैव धर्म को नष्ट करना है। इस उद्देश्य से वे शैव धर्म प्रतिष्ठित राज्यों पर आक्रमण करते थे और उनका शासन मिलने पर जैन धर्म को की स्थापना करते थे और शैव धर्म को मिटाने में लगे रहते थे। लेकिन शिव की कृपा पाने पर मूर्तियार के साथ ऐसी घटना हुई कि वह उस राज्य के राजा ही न बने, बल्कि उन्होंने शिव पूजा की पारंपरिक सेवा को उस राज्य में स्थापित कर दिया। इसीलिए वह एक उच्च कोटि के नायनमार या संत हुए।
3: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम shaivam.org। ओम नमः शिवाय।
0: Shivaya. All the three shaivam.org radios have started operating from our own stream server now. As a result, The URL has changed and the stream you are currently listening to will stop shortly. Our shaivam.org website and the mobile app are already pointing to the new URL, and you will be able to continue to listen to our radios through them. If you are currently listening to our radio through some other tools like TuneIn, Radio Garden, etc., please let us know at shaivam@shaivam.org. We will do the needful to update the URLs in those tools too. Please help us by sharing which tool you are using to listen to this stream, to make sure that you are able to continue to listen to them even with the new stream. Again, the mail address is shaivam@shaivam.org. Thank you. Namaste.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Maha Mandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: Aana nishchit hai, abhi aaya nahi hai. उस दुख के रोकने के लिए तुम उपाय करो. इसलिए योग का प्रयोजन क्या है? दुख को रोकने का. कौन से दुख को? गत दुख को तो गएगा, उसको रोकने का कोई प्रयोजन नहीं. वर्तमान में जो आ गया वो आ चुका है, इसलिए वो जाएगा. आ ही गया तो उसको भी रोकने का कोई प्रयत्न नहीं, कोई उपाय नहीं है. फिर किस दुख को रोकना चाहिए? बोले अनागतम. अभी आया नहीं है लेकिन आ सकता है, आने की संभावना है. तो ये बात तुम जब जवान थे उस समय ये सोचा होता कि बढ़ोतरी में घुटने का दर्द होगा, बढ़ोतरी में कमर का दर्द भी होगा. इसलिए पहले ही जवानी में ही हमको सावधान रहना चाहिए. कम खाकर स्लिम बॉडी रखते तो घुटने का दर्द न होता. उस समय यदि तैयार किया होता तो आज घुटना दुख, न घुटना दुखता न कमर दुखता. बोलो. और उस समय तो खाएगा, यही तो जवानी है. खाने का समय यही है, खाने का समय यही है. करते गए, खाते गए, खाने का समय यही है. बुढ़ौती में तो खा नहीं पाएंगे, अभी तो खाने का है. और खाते गए, शरीर बढ़ता गया, अब क्या करोगे? चर्बी बढ़ती गई, अब क्या हो रहा है? है? अब दुख आ रहा है फिर रोते रहो, दुख आ रहा है. तो उस समय यदि ये सूत्र का ध्यान दिया होता, हेयम दुखम अनागतम, ये बुढ़ौती में अनेक प्रकार के रोग आएंगे, वे रोग को कैसे रोका जाए, अभी से तैयारी करो, उसी का नाम योग है. बस बुढ़ौती में करने का नाम नहीं है, पहले करने का नाम है योग. कष्ट आ जाने के बाद, समस्या आ जाने के बाद करने का नाम योग नहीं है. और आज जितनी भी योग साधना करने वाले, योग अभ्यास करने के लिए आते हैं, सब रोग से ग्रसित हुए हुए ही आते हैं. कौन आते हैं? रोग से ग्रसित हुए हुए आते हैं. महर्षि पतंजलि ने कहा कि रोग से ग्रसित हुए हुए को योग काम नहीं करता. योग किसको काम करता है? रोग से जो ग्रसित नहीं है वो योग करेगा तो आने वाले जो रोग हैं उससे वो बच सकता है. रोग आ ही गया तो बचने का कोई उपाय नहीं है? हमको क्या पता था, पहले हमने ख्याल ही नहीं रखा. ये शरीर में मधुमेह होगा, शुगर आ जाएगा, पहले हमको पता नहीं था. मई महीने में हम हमेशा पहले मई महीना प्रेम कुटीर करते थे, एक महीना चर्च गेट, और जून यहां करते थे. ये बहुत सालों से चल रहा है, 200-2500 साल से. लेकिन अभी प्रेम कुटीर तो हमने छोड़ दिया, 12-14 साल ही हो चुका है, वहां नहीं जाते हैं. पहले प्रेम कुटीर पहले मई करते थे और जून यहां. गर्मी का सीजन हमारा बंबई ही होता था. तो एक बार मई में जब हम प्रेम कुटीर गए तो बहुत गर्मी बढ़ी, बहुत गर्मी था. तो वहां एक बहन थी, बहुत सेवा करती, संतों की सेवा, केवल हमारी बात नहीं, जो कोई भी वहां कथा करने के लिए कथाकार महात्मा जाते थे वो पूरी सेवा निष्ठा से सेवा करती थी. तो उन्होंने क्या किया, महाराज बहुत गर्मी हो रही है। हाँ, मैंने कहा गर्मी तो अच्छा, दूसरी बात यहां तो एसी था, वहां एसी भी नहीं था, एयर कंडीशन नहीं था। अब गर्मी मई का महीना, भयंकर गर्मी, तो वो क्या करती थी, सुबह ही सुबह मौसमी का जूस ला के दे दे। तो अब एक महीना हमको वहां रहना है। उन्होंने विचार किया कि महाराज जी को रोज एक महीना मौसमी का जूस पिलाएंगे, तो एक ही बार मौसमी खरीद के ले आई बोरा का बोरा। नौकर को कहा एक बार ले आओ, एक महीना तक महाराज जी रहेंगे, उनको जूस पिलाना है। संयोग से वो जूस मौसमी थोड़ा खट्टा निकला है। अब रस निकाल के पिए तो एकदम खट्टा। अब क्या करने लगे कि ग्लूकोज डालकर, तीन चार चम्मच ग्लूकोज डालकर वो मौसमी के रोज पिलाना शुरू कर दिए। और फिर उनके जो लंदन में कोई थे संबंधी, वहां से चॉकलेट भेज दिया उसने स्वामी जी के लिए करके, लंदन से चॉकलेट आ गया इतना। और हम फिर चॉकलेट भी खाना शुरू कर दिए हैं, और ग्लूकोज डाल डाल के मौसमी पीने शुरू कर दिए, कोका कोला पीने शुरू कर दिए। बोलो अब क्या होगा, बोलो है? डाया भाई की बेटी तो आना निश्चित ही था। आ गई डाया भाई की बेटी। ये डाया भाई की बेटी के लिए कोई जवान व्यक्ति पसंद नहीं आता है, वो उसको तो बुढ़ा ही चाहिए है? कैसी है पता नहीं वो डाया भाई की बेटी है? आ गई अब हमको तो पता नहीं। आप खूब खाए आम, फिर मई महीने तो फिर आपूस आम, सुबह भी आम शाम को भी आम, सब चीज एक ही साथ पड़ा। अब हमने ख्याल ही नहीं रखा कि इसका ये रिएक्शन होगा। खाते गए, वहां के बाद जब यहां आए, यहां भी वही शुरू हो गया। ये तो भगवान की, भगवान शिव की क्या पता नहीं कहां से क्या प्रेरणा हुई कि हमारे प्रतिमा बहन आजकल नहीं आती है, बीमार हो गई। उसको बेटे ने अमेरिका से वो क्या बोलते हैं उसको, मशीन आता है ना, टच वन है, वन टच डायबिटीज चेक करने का, वन टच होता है ना, एक ही बार पिन करो फिर स्ट्रिप में, मशीन भेजा। तो उसने कहा बेटे ने मशीन भेज दिया स्वामी जी। हमने कहा कैसा दिखाओ, लेके आई खोल के दिखाया। उसने कहा कि आपका टेस्ट करते हैं, तो ओपनिंग ही हमसे करना चाहती थी वो, आपसे ओपनिंग करें। ये भगवान शिव की कृपा थी भाई। जब उसने मशीन खोला, सेट किया पढ़ के, और लोई निकाला और उसमें लगाया, तो वो काउंटिंग शुरू हुआ। तो कितना हुआ था पता है तुम लोगों को, 393। अभी भी वो 393 वो याद है, बाई हार्ट है पहली बार। वो तो घबरा गए, स्वामी जी क्या हुआ, आपको तो शुगर बहुत भयंकर है। अरे भाई नहीं है भाई, हमारे को कोई शुगर सगर नहीं है, तो शायद इसको ऑपरेट कर नहीं पा रही है ठीक से। फिर उसने पढ़ा, इधर किया उधर किया, फिर दोबारा टच किया, फिर टेस्ट करते, फिर वही 393 94, एक पॉइंट और बढ़ गया उतने में। तो फिर डॉक्टर अतुल को कहा कि स्वामी जी को ऐसा ऐसा है, मैंने ऐसा किया। तो उन्हें फिर दूसरे दिन ब्लड ले गए, लेबोरेटरी टेस्ट किया तो 400 क्रॉस कर गया दूसरे दिन। तो हे भगवान, फिर तब से ब्रेक लग गया, हे यम दुख मनागतम। लेकिन वो आ ही गया था तो अब क्या करते, आ ही गया तो अब क्या करेंगे, भोगे रहो, लगे रहो, भोगे रहो है? तो अभी तक वो उसने डायवे की बेटी ने तलाक नहीं लिया है, हाँ। मुझे लगता है वो लेगी भी नहीं, इतनी फैसिलिटी उसको मिल रहा है, क्या तलाक लेगी वो। खाने को फोकट में मिल रहा है, रहने को फोकट में मिल रहा है, पसीना बहाना नहीं है, हैं? आराम से रह रही है, तो तलाक क्यों लेगी वो। शायद हम कहीं पसीना बहाना शुरू कर दें, मेहनत करना शुरू कर दें, पैदल चलना शुरू कर दें, खेत फावड़ा चलाना शुरू कर दें, लकड़ी काटना शुरू करें, शरीर से खूब पसीना बहा दें, तो वो क्या सोचेगी, ये अब काम करने लग गया, इसके पास रहना ठीक नहीं है। शायद तब जा सकती है, लेकिन इतनी फैसिलिटी है तो अब कहां से जाएगी वो। रोज लोगों के घर खाना खाना है, एक ही भी नहीं है, हजार वेराइटी महाराज कई नहीं, एक दिवस तो चाल से, तो खिलाने वालों के लिए एक दिवस है। आप क्या रोज आओ छो, तुम्हें साल में एक बार आओ छो तो एक दिवस तो चाल से। अरे भाई तुम्हारे लिए एक दिन है, यहां तो रोज है, है? आज उसके यहां, कल उसके यहां, कल उसके यहां, कल उसके यहां। तो अब ये डायवाइट की बेटी क्या तलाक लेगी? है निश्चिंत बैठी है, बैठे रहो, हम भी कहते हैं बैठे रहो। चलो आज कहां गए हम लोग बोलो। हाँ ये देखो हठ योग क्या है, तो वह प्रारब्ध भी छूता नहीं, जब तक आप निर्विकल्प समाधि में रहेंगे आपका प्रारब्ध भी प्रतीक्षा करता रहेगा। ऐसा नहीं कि आप निर्विकल्प समाधि में बैठे रहे तब तक प्रारब्ध आया गया तुमको पता ही नहीं चला। यदि तुमको पता नहीं चला तो प्रारब्ध सार्थक नहीं होगा। हाँ ये प्रारब्ध कैसा है पता है? यदि तुमको किसी से अनबन हुई और उसको तुमने खूब गाली दी और तुम्हारे गाली को वो हंसते हुए सुनता रहा तो तुमको ग्लानि होगी कि इतना गाली देने पर भी वो नहीं सुन रहा है तो इसको गाली देना ही बेकार है। कहेंगे कि नहीं सुन लो, तुमने गाली दिया और तुरंत सुनते ही वो एक्शन में आ गया तो तुम्हारा गाली देना सार्थक हुआ। गाली दिया वो एक्शन में नहीं आया तो गाली बेकार गया कि नहीं है? गाली बेकार चला गया। इसी तरह प्रारब्ध आवे और जिसका प्रारब्ध है उसको प्रारब्ध आया ये पता न चले तो प्रारब्ध का क्या प्रयोजन हुआ? उसको पता चलाना चलना चाहिए, सुबह हो चाहे अशुभ हो दोनों, उस जिसका प्रारब्ध है उसको अनुभूति होनी चाहिए। ये अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, वेदना होनी चाहिए। वेदना का अर्थ अनुभव, अनुकूल का सुख भी अनुभव होना चाहिए, प्रतिकूल का दुख भी अनुभव होगा तो भोक्ता को अनुभव होगा तो प्रारब्ध सार्थक हुआ, भोक्ता को अनुभव नहीं हुआ प्रारब्ध निरर्थक। इसका मतलब प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा ऐसा नहीं, वो प्रतीक्षा करता रहेगा जब तक तुम उसके वेदन यानी अनुभवकर्ता के रूप में तैयार नहीं होगे तब तक प्रारब्ध क्षय नहीं होगा, प्रतीक्षा करता रहेगा। तो शंकराचार्य ने कहा सौवर ऋषि कितने वर्ष तक रहे जल में, भागवत में लिखा नौवां स्कंद पढ़ लो सौवर ऋषि के सारे करतूत। हाँ 10,000 वर्ष तक जल के अंदर बैठे निर्विकल्प समाधि में, प्रारब्ध और वासना प्रतीक्षा करके बैठा है। वो बिल्ली की तरह जो चूहे निकलेगा तो मैं झपट लू। सौवर ऋषि ने जैसे आंख खोली झपट लिया, उसने तुरंत पकड़ लिया, प्रारब्ध और वासना दोनों ने पकड़ लिया। देखो यदि राजयोग में लगे होते तो वासना क्षय हुआ चुका होता, प्रारब्ध रहता तो केवल प्रारब्ध पकड़ता, क्रिया योग में लगा हुआ होने के कारण वासना भी क्षय नहीं हुआ था तो वासना भी प्रतीक्षा कर रही थी और प्रारब्ध भी प्रतीक्षा कर रहा था, दोनों ने झपट लिया एक ही साथ। और सौवर ऋषि अकेला और झपटने वाले शत्रु दो, पकड़ लिया दोनों तरफ से। क्या हुआ नाटक आगे तो आपको पता ही है, हमको बताने की जरूरत है? है आपके सामने ही हुआ है ना सौवर ऋषि की घटना, है आपके सामने हुआ ना? अरे रोज अपने साथ ही हो रहा है उनकी घटनाएं, पकड़ लिया और मछली की क्रीड़ाओं को देखते ही बस प्रारब्ध और वासना दोनों ने आक्रमण कर ली तो बोले आहा जिंदगी तो ये है जीवन का रहस्य, सारा जीवन का सार तो यही है। ये 10,000 वर्ष तक मैंने ऐसे ही प्रारब्ध बेकार समय वैसे बर्बाद कर दिया, क्या जीवन देखो, ये मछलियों के जोड़े आपस में क्रीड़ा करते हुए देखा तो फिर निकले पानी के बाहर और उस समय मानदाता ऋषि के यहां पहुंच, मानदाता राजा के यहां पहुंच गए, उनको पता चला कि इनके 50 कन्याएं हैं एक से एक सुंदर, बस याचना कर ली कि राजन मेरी इच्छा है कि एक कन्या तुम मुझे दो, मुझे संसार करने की इच्छा है। राजा बड़ा असमंजस, 10,000 वर्ष पानी के अंदर बैठा, शरीर तो अन्न खोजता है, शरीर क्या खोजता है, अन्न खोजता है, अन्न नहीं खाया था इसलिए शरीर हट्टा कट्टा तो था नहीं, बूढ़ा सूखा हुआ पीला पड़ा हुआ था। राजा ने कहा कि इतनी सुंदर कन्या मेरी है अप्सरा जैसी, और ऐसे ये बूढ़ा और खसोट को दे दूं, कन्या क्या कहेगी, कहीं मेरी कन्या ये नहीं कहे इस तरह यदि ऐसे बूढ़ों के साथ ब्याह कराना था तो पैदा होते ही क्यों नहीं मारा हमको, कितनी पीड़ा होगी उसको। अब यदि नहीं कहता हूं तो ये तपस्वी खतरनाक है, श्राप दे देगा, सारा कुल नाश भी हो सकता है, क्या करूं। तो विचार किया कि महाराज आप जाइए, जो आपको पसंद करे उससे आप शादी कर लो। राजा ये समझता था कि इस बूढ़े को देखकर कोई भी पसंद नहीं करेगा, कह दिया जो पसंद करेगा उससे शादी कर लो। सौवरी ऋषि समझ गया कि राजा की बदमाशी चलाकी चल रहा है, वो ये शरीर को देखकर विचार कर रहा है कि कोई भी पसंद नहीं करेंगे, समझता होगा मैं वहां पहुंचने से पहले अपने शरीर को ही कायाकल्प कर लेता हूं। तुरंत योगी तो थे ही, संकल्प कर ली, शरीर तो ऐसा युवा शरीर दे दीप्यमान, क्या दिव्य शरीर, भागवत में आता है ना साक्षात मन मत है। कृष्ण को जब गोपियों ने देखा ऐसा सुंदर देखा कि ऐसा लगता है कि साक्षात कामदेव ही यहां आ गया है। आप लोग दही को मतते हो लेकिन मन को मतते हो कि नहीं, मत मन को मतने क्षमता आप लोगों में निकाली, दही मतते जाओ है। लेकिन गोपियां क्या करती थी, दही मथती थी, और कृष्ण क्या करते थे, मन को मथते थे, दोनों ही मथने का काम करते हैं। वो तो साक्षात मन मत मथने दिन लग गए, तब सब ने संकल्प कर लिया यदि पति होगा तो यही होगा, बस यदि पति होगा यही होगा, इससे अलावा और कोई दूसरा पति नहीं होगा। हर कन्या सौवरे ऋषि के हाथ पकड़कर कहने लगे कि हम मेरा अनुग्रह करो, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो, मुझे अनुग्रहित करो। अब तो कहां एक की कामना आ गए 50, सृष्टि क्या हुआ होगा उनकी, उनका आप लोगों से पूछ रहा हूं, एक ही से आप लोग तंग हो गए हो, 50ों से क्या होता होगा, बोलो। भागवत लिखा है एक एक से 10-10 बच्चे हुए तो कितना बड़ा हुआ कुटुंब है, 50 × 10 है, 10 को 50 से गुणा करो 500, 5000 ले जी। अब वो 50 हुआ 5050 और खुद अपने 5051, इतना बड़ा कुटुंब के बीच में सौवरी ऋषि को रहना पड़ रहा है। योग की एक विशेषता है, भोगने के बाद योग शक्ति क्षय होता है, योग साधना के द्वारा जो शक्ति संचय किया हुआ होता है वो शक्ति जब तक भोग में प्रयोग नहीं करोगे तब तक तो वो शक्ति संचित रहेगा, और जहां तुमने उस शक्ति का भोग में प्रयोग किया कि शक्ति क्षय होने लग जाएगा। ये देते हैं कर्मचित लोकक्षीयते एवं एवा मूत्र पुण्यचित लोकक्षीयते, क्योंकि योग भी तो तुम्हारे प्रयत्न से हुआ है, उसलिए उस योग का जहां तुमने भोग किया कर्मजन्य होने के कारण, योग भी तो कर्मजन्य है, योग विचारजन्य तो है ही नहीं, ज्ञानजन्य तो है ही नहीं, कर्मजन्य है, इसलिए वो नाशवान है। अब तो इतना बड़ा कुटुंब को संभालते योग सिद्धि भी खत्म हो गई तो अब क्या करोगे, रोने लग गए, छोड़े भागे, ऐसे भागे सौवरी ऋषि वहां से किसी को पता ही न चले, भाग गए जंगल में गए, तो वहां एक महात्मा बैठा हुआ था, क्या हुआ सौवरी ऋषि, बोले महाराज मैं तो बुरा फंस गया। कैसे? बोले कहां 10,000 वर्ष पानी में समाधि लेकर निर्विकल्प समाधि में बैठा था, निकला पानी से बाहर तो ये झंझट, और एक की कामना की थी तो 50 आ गए, और 50 से 5,000 हो गए। अब मैं तो समस्या में फंस गया महाराज, अब मैं क्या करूं? तब फिर महात्मा ने कहा, अरे सौवरे ऋषि, तुमने शुरुआत ही गलत की। क्या महाराज? तुमने मन को नियंत्रण करके अष्टांग योग और हठ योग के माध्यम से निर्विकल्प समाधि में गए, शिव योग नहीं किया। और यदि तुमने उस समय अपना मन शिव में लगा दिया होता तो आज तुमके सामने ये समस्या ना आती, तो उस समय तुम हट करने लग गए। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपने जो मन है वो शिव के चरण में अर्पण कर दो, वो होगा शिव योग। मन का और शिव का जब जोड़ होगा, योग होगा, उसका नाम शिव योग, उसी से तुम्हारा उद्धार हो सकता है, अन्यथा उद्धार नहीं हो सकता। तब उन्होंने पंचाक्षरी दीक्षा दी और वहीं अपने ध्यान किया, भगवान शिव की अनन्य भक्ति करने लग गए और सारे झंझट से मुक्ति मिली उनको, सौवरे ऋषि को। तो शंकराचार्य शायद उस प्रसंग को भी यहां स्मरण कर रहे हैं, उधर मांडव्य ऋषि का भी स्मरण किया, इधर सौवरे ऋषियों का भी ऋषि का भी स्मरण किया। गुहायां गेहे वा बहिरपि बने वा दृश्य करे जले वा वन्नौ वा वसतु वसते किं बद फलम। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, भयंकर गर्मी के समय में शरीर बिल्कुल नंगा करके पंचाग्नि तपस्या करते हैं और उसको योग कहा है। क्या कर रहे हो? बोले योग कर रहे हैं, हठ योग। कैसा है हठ योग? तो बोले 5 जगह अग्नि जलाकर बीच में नंगे बैठते हैं और अग्नि धधक रही है। अब ये भी योग करते, देखो ऐसे को भगवान श्री कृष्ण ने भी बहुत व्यंग किया है। कर्षयस्त शरीरस्तम भूत ग्राम अचेतस, चित्त को हृदय को अर्पण न करके इस प्रकार के जो योग करता है वह वास्तव में जड़मती है, अचेतस है, वह भूतग्राम प्राणी समूह अज्ञानी। कर्षयंती शरीरस्थम, उसी के शरीर में रहने वाले मुझे ही कष्ट पहुंचाते हैं। किसके नाम पर? योग के नाम पर, ले जी हठ के नाम पर। वो ये नहीं करते, समझते हैं कि योग का अर्थ होता है चित्त को लगाना, और चित्त को तो लगाएंगे नहीं, शरीर को जलाएंगे। शरीर का ही मान लो कि यही शरीर ही सब पाप का घर है, और समझते हैं कि शरीर ठीक हो जाएगा तो सब। अरे मन सारा पाप का घर तो मन है, सारा पाप का घर तो मन है भाई, और पाप शरीर में भी नहीं रहता, पाप तो फिर मन में ही रहता है। मर के जाओगे तो शरीर यहीं रहेगा कि नहीं, और मन तुम्हारे साथ रहेगा कि नहीं? तब पाप शरीर में रहता है तो तुम तो पाप मुक्त हो जाओगे, है? तब जाओगे तो फिर पाप तुम्हारे पास रहेगा नहीं, तो मर गए तो सारे पाप खत्म। तो इसी तरह फिर मर गए तो पुण्य भी तो खत्म। पाप और पुण्य यदि शरीर में रहता है, यदि मानेंगे तो मर के जाने वाला का शरीर तो यहीं जला देंगे, राख हो जाएगा चंदनवाड़ी में, है? तब तुम्हारे पीछे जाएगा पाप और पुण्य, लेकिन जाता है कि नहीं? इसीलिए पाप पुण्य ये कर्म, कर्म का संस्कार वासना ये स्थूल शरीर में नहीं रहता, ये तुम्हारे हृदय में रहता है, सूक्ष्म शरीर में रहता है, क्योंकि वही तुम्हारे साथ जाने वाला है, तो उसमें जो है वो भी साथ में चला गया। गया कि नहीं, उसमें जो है वो भी साथ में चला गया। तब उसी को अर्पण करो, परमात्मा को। जले वन्नौवा वसतु वसते किं बद फलम। ये भक्ति का प्रसंग है, इसीलिए बता देना बहुत जरूरी हो। महात्मा लोग एक दृष्टांत देते हैं। कोई एक बहुत बड़े सिद्ध योगी थे, महात्मा थे। उन महात्मा के दो चेले थे, एक हठ योगी, दूसरा परम भक्त, भगवान का अनन्य भक्त था। एक हठ योगी था। हठ योगी ने तो यह निश्चय कर लिया कि मैं कठोर से कठोर साधना करूं और जल्दी से जल्दी भगवान का दर्शन कर लूं, कठोर से कठोर, कठिन से कठिन तपस्या करके भगवान का जल्दी से जल्दी दर्शन कर लूं। उसने ये निश्चय कर लिया, बस पंचाग्नि तापना शुरू कर दिया। हठयोगी बैठ गया, केवल एक कौपिन धारण की और पांच जगह आग लगाई, बीच में बैठा, वो भी गर्मी के महीने हैं, मई जून के महीने। मई जून के महीने में इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, कानपुर, अब आजकल तो अहमदाबाद में भी वैसे ही होता है, नहीं बहुत होता है, 45-47 तक जाता है अहमदाबाद में भी टेम्परेचर। कितना गर्मी होता है जहां 45-50 तक टेम्परेचर जावे, ऐसी जगह भी फिर आग जलाकर बीच में बैठे, कम कठिन है, कल्पना भी नहीं कर सकते हम तो। बंबई वाले तो यहां तो कुछ भी नहीं है टेम्परेचर, अहमदाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस के टेम्परेचर के सामने 47-48, आगरा देख लो, मथुरा, वृंदावन, यहां तो कभी भी शायद 35-36 से ऊपर नहीं जाता है। जाता है बंबई हैं? 40 पहुंचने के तो कल्पना ही मत करो। तो यही भी सब हो, बहुत गर्मी छे, बहुत गर्मी छे, बोलते हैं तुम पंचाग्नि तपोगे। उसने पंचाग्नि तापना शुरू कर दिया, किसलिए? बोले जल्दी से जल्दी भगवान का दर्शन करो। और दूसरा सा भगवान का भक्त, वो तो भक्ति भजन शुरू कर दिया, को भजन, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, श्री कृष्ण शरणम मम, बस लग गया कीर्तन में लग गया। कहते एक दिन नारद जी घूमते हुए पहुंच के, कहानी सुना है कई बार तुम लोगों ने, प्रासंगिक है, मैं फिर भी सुना देता हूं। तो कहते नारद जी मिल गए उस हठ योगी के पास। नारद जी ने पूछा कि ये क्या कर रहा है इतना कठोर, तो ये क्या कर रहा है, आग जलाकर उसके बीच में बैठा है? बोले मैं हठ योग कर रहा हूं, पंचाग्नि ताप रहा हूं। नारद जी पूछा कि क्यों? बोले जल्दी से जल्दी भगवान के दर्शन करना है, इसके लिए मैं कठोर तपस्या कर रहा हूं। अच्छा आप कौन है? बोले मैं नारद हूं। तो आप कहां जाने वाले? बोले वैकुंठ जा रहा हूं सीधे ही। तो आप सीधे वैकुंठ जा सकते? बोले हां। कैसे? बोले भगवान ने हमको एक अलग स्पेशल शरीर दिया है और उनके दिए हुए शरीर से हम सीधे वैकुंठ जा सकते हैं। भगवान का दिया हुआ जो शरीर था उस शरीर से सीधे वैकुंठ जा सकते हैं कौन? नारद जी। वीजा लेने नहीं पड़ता उस शरीर में। नारद जी अमेरिका जा सकते हैं उस शरीर से, वीजा लेना नहीं पड़ेगा। सच बात कह रहा हूं। तो फिर नरक जा सकते हैं कि नहीं? वीजा लेना पड़ेगा नरक के लिए है? अरे भाई नरक में भगवान है कि नहीं? यदि भगवान नरक में रह सकते हैं तो नारद जी को भगवान को दर्शन करने नरक जाने में क्या आपत्ति? सर्वव्यापक होने के कारण सब जगह है, इसलिए नारद जी सब जगह जा सकते हैं। और नरक जाने के लिए जो कर्म चाहिए वो कर्म नहीं होगा और न जाए वो बात अलग चीज है, लेकिन उनको कोई अड़चन नहीं, अबाधित गति है उनकी, कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा आप वैकुंठ जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने? बोले हां। आप भगवान से हमारी बात कह देना कि एक भक्त इस प्रकार का कठोर तपस्या कर रहा है आपके दर्शन के लिए, तो कब दर्शन देने आने वाले हैं आप पूछ लेना, हमारी बात कह देना उनको, पूछ लेना। बोले ठीक है, कह देंगे। आगे बढ़े तो कीर्तन कर रहा है, मस्ती से नाच रहा है, कीर्तन कर रहा है। उन्होंने कहा, ये क्या कर रहा है? इस बोले भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। बोले क्यों? तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी भगवान का दर्शन हो, इसलिए मैंने सब चिंतन छोड़कर कीर्तन करना शुरू किया। तो आप कौन? बोले नारद। कहां जा रहे हैं? वैकुंठ। भगवान के यहां। अच्छा, तो उनको भी हमारी बात भी कह देना भाई, आपका भक्त इस तरह आपके लिए, भगवान आपके लिए भजन कर रहा है, उसको दर्शन देने के लिए कब जाने वाले हैं, पूछ लेना। बोले ठीक है, पूछ लेते हैं। नारद जी पहुंचे, सारा हाल खबर विश्व का बताया। तो कहा कि महाराज आपको पता है? भगवान ने कहा, क्या बेटा? बोले मर्त्यलोक में मैं आते समय दो आदमी आपके दर्शन के लिए तपस्या कर रहे हैं। एक तो बड़ा कठोर तपस्या कर रहा है, पंचाग्नि ताप रहा है। हमने कहा ये क्यों कर रहा है? तो बोले आपके दर्शन करने की इच्छा से। तो आप बता दीजिए, तो उसको दर्शन देने के लिए आप कब जाने वाले हैं, बता दे, क्योंकि हमको लौट के जाएंगे तो फिर उसको बताना है आपका रिपोर्ट। तब दूसरा, जो आपके दर्शन के लिए भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, नाच रहा है, उसको दर्शन देने के लिए कब जाएंगे, बता दो। तो भगवान ने कहा, कहते हैं नारद जी को, वो जो पंचाग्नि तप रहा है ना, उसको जाके कह देना इसी तरह पांच जन्म तक। कब तक? पांच जन्म तक पैदा हो, पंचाग्नि तपे, तपते तपते मरे, फिर पैदा हो, फिर पंचाग्नि तपे, तपते तपते मरे, फिर पैदा हो, पंचाग्नि तपे, तपते तपते मरे। पांच जन्म जब पूरा होगा तब मैं उसको दर्शन देने के लिए जाऊंगा, बोल देना।
0: नमः शिवाय। All the three Shaivam.org radios have started operating from our own stream server now. As a result, the URL has changed and the stream you are currently listening to will stop shortly. Our Shaivam.org website and the mobile app are already pointing to the new URL, and you will be able to continue to listen to our radios through them. If you are currently listening to our radio through some other tools like TuneIn, Radio Garden, etc., please let us know at shaivam@shaivam.org. We will do the needful to update the URLs in those tools too. Please help us by sharing which tool you are using to listen to this stream, to make sure that you are able to continue to listen to them even with the new stream. Again, the mail address is shaivam@shaivam.org. Thank you. Namaste.
1: Om Namah Shivaya.
3: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

शिवाय नमः शिवाय शिवतराज शिवतराज। सदघन चिदघन आनंद घन कल्याण गुणगण निलय अव्यक्त अविनाशी सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार करुणा वरुणालय प्रभु की असीम अहेतु की कृपा के साथ हर वर्ष की न्याही प्रेमपुरी आध्यात्म विद्या भवन के इस पावन सभागार में बैठे हुए प्रातःकाल की इस पावन बेला में नाना नामों में नाना रूपों में उपस्थित मेरी अपनी ही पवित्र प्रिय अभिन्न आत्मा, अब की बार भगवत चर्चा। गिरीश भाई के मेरे को फोन आते रहे कि माता जी आप बोलेंगे किस विषय में, और प्राय वो दिन था शायद सोमवार का और सावन का महीना, तो मैंने कह दिया शंकर जी पर बोलूंगी, शिव महिमा पर। बार बार पूछ रहे थे किस विषय पे बोलेंगे गिरीश भाई अपने चिमन भाई, तो विषय तो कुछ सोचा नहीं था और फोन आ रहे थे मुझे इनको हमें जाहिरात करनी है, बतानी है, बताओ बताओ। और ये सच बात है कि मैं पूर्व कुछ निश्चित नहीं करती हूँ, ठीक है, उस समय जो प्रेरणा होगी जो मन में आएगा बोलना तो भगवान का ही नाम है, वाचा रमणम नाम अधेयम, ये तो एक नाम का भेद मात्र है, तत्वतः तो एक ही है, चाहे उसे शिव कहो चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो चाहे नारायण कहो, अनेक नाम है, अनेक नामों में अनेक रूपों में जो सर्वत्र परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा है, व्यापक सनातन नित्य शुद्ध मुक्त परम तत्व, वह तो एक ही है, एक ही अविनाशी है, परंतु नाम रूप के द्वारा हमने उन्हें अलग अलग किया हुआ है। बोले इन नाम रूपों की बड़ी भारी महिमा है, नाम रूप से रचा हुआ ये संपूर्ण जगत है, जगत दो ही चीजें हैं नाम और रूप, और हम लोगों को अच्छा अभ्यास है नाम रूप के सहारे अपने मन को चलाने का, मन को दौड़ाने का, तो इसीलिए मन संसार की ओर चलता है बोले नाम रूप के पीछे, और इस संसार से मन को हटाने का उपाय भी एक ही है, नाम रूप का आश्रय, भगवान के नाम और रूप का आश्रय लेकर के संसार को से अपने मन को बड़ी सहज रीति से निकाला जा सकता है। तो इसलिए भगवान के नाम का परम आश्रय लें, वो चाहे कोई भी नाम हो, तो उसमें जो आदि सनातन शिव है, मैंने कहा शिव महिमा पर बोलेंगे, शिव कहते हैं कल्याण को, शिव कहते हैं मंगल को, शिव का अर्थ होता है शुभ, जहां शिव नहीं वहां शुभ कैसा, शिव शुभ है, कल्याण है, मंगल है, और हम सब लोगों की चाह क्या है, हम सब यही चाहते हैं कि हमारा शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो, और हम सब के लिए, अपने लिए ही नहीं सबके लिए कल्याण की भावना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई दुखी नहीं है, सब सुखी हो, तो सब सुखी किससे होंगे, सबका कल्याण किससे होगा, सबका मंगल किससे होगा, बोले मंगलम मंगलानाम, मंगलों में जो मंगल, और पावनम पावनानाम, जो पावन में पावनता प्रदान करे, मंगल में मंगलता प्रदान करे, और जो सर्वत्र शुभ प्रदान करे, उसी का नाम तो शिव होता है, शिव ब्रह्मा भी हैं, शिव विष्णु भी हैं, और शिव रुद्र भी हैं, और शिव शक्ति भी हैं, शिव गणेश भी हैं, शिव नारायण भी हैं, अर्थात शिव के अनंत अनंत रूप हैं, अनंत अनंत नाम है, और शिव स्वरूप, ये शिव कौन, बोले ये शिव के रूप में विराजमान साक्षात आपके हृदय में जो विद्यमान नारायण है, आत्मा है, वही शिव है, इसलिए शिव कोई अन्यत्र नहीं, शिव तो निज स्वरूप है, इसीलिए तो आत्माष्टक आप बड़े सुंदर ढंग से पाठ करते हैं, शिवोहम शिवोहम, जो शिव स्वरूप है, जो शिव, इसीलिए कहा तन्मय मन शिव संकल्प मस्तु, उस शिव की महिमा, जो शिव
सर्वव्यापक है, जो परिपूर्ण तत्व है वही शिव है नारायण। और शिव के लिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की कुछ ऐसी परंपराएं हैं कि वेद हमारे पंचदेव उपासना का विधान बताते हैं, वेदों ने भगवान के दोनों स्वरूपों का निरूपण किया। भगवान सर्वगुण भी हैं और साकार भी हैं, परमात्मा निर्गुण भी है और निराकार भी है। निर्गुण निराकार को समझने के लिए, निर्गुण निराकार को समझने के लिए साकार है, यदि साकार न हो तो निराकार कैसे समझा जाए, और यदि निराकार न हो तो फिर ये सगुण साकार कैसे ये न हो। तो इसलिए वो निर्गुण भी होते हुए, निर्गुण का मतलब ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई गुण नहीं है, निर्गुण का मतलब ये नहीं है, अर्थात जो निर्गुण जिनके गुण निरंतर अर्थात जिनके गुण अनंतर हैं, जिनके कौन सा गुण उनमें नहीं है, जो अनंत गुण, अनंत नाम नहीं है। कहने का अर्थ नहीं है कि उसका कोई नाम नहीं है, माने नाम उसके इतने अनंत हैं कि कौन सा नाम नहीं है, कौन सा रूप नहीं है, अर्थात वो अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत गुण। ये गुण नाम क्रिया के साथ जैसे जैसे परमात्मा अपने अनंत रूपों में अव्यक्त परमात्मा व्यक्त करके प्रकट करते हैं, प्रकट कैसे करते हैं, बोले अनंत रामों से, अनंत रूपों से, परंतु उन अनंत नाम रूप में प्रथम चार पांच नाम और पांच रूप बड़े प्रधान हैं। इसको कहते हैं पंचोपासना, पंचदेव उपासना। उपासना वेद की जो पद्धति है उसमें दो, जो उपासना की पद्धति है उसमें पंचदेव उपासना सनातन काल से चली आ रही है। सनातन धर्म का मतलब क्या है, बोले जो सनातन काल से, वेदोक्त काल से चली आ रही है निरंतर पंचदेव उपासना, अनंत नामों में, अनंत रूप में पांच देवता, जो पांच में एक तो प्रत्यक्ष सूर्य भगवान है, सूर्य नारायण, सूर्य देव हैं, और गणेश जी हैं, भगवती दुर्गा हैं, भगवान शिव हैं और भगवान श्री हरि विष्णु हैं। ये पंच देव हैं। इन पंच देवों में सूर्य नारायण और भगवान नारायण, जिन्हें सत्य नारायण कहो, लक्ष्मी नारायण कहो, वद्री नारायण कहो, नर नारायण कहो, अर्थात ये तो एक ही है। सूर्य और नारायण एक है। ये पंचदेव में गणपति, भगवती दुर्गा और भगवान शिव, ये सदा शिव है, पराम्बा, ये भगवती शिवा है और उनके संग में नित्य विराजने वाले भगवान शिव हैं, अर्थात परमेश्वरी और परमेश्वर। परमेश्वरी पराम्बा के साथ जो भगवान शिव और उनके संग में सर्व विघ्न विनाशक भगवान गणेश, ये तीनों तो एक साथ हैं। प्राय आपने ये मूर्ति का दर्शन किया होगा, गौरी शंकर के संग गोद में विराजमान हैं, बोले कौन, भगवान श्री गणेश। तो गणेश तो गणनायक हैं, प्रथम देव हैं, और ये तीनों एक हैं। अर्थात बात क्या आई, बात ये आई कि नारायण और शिव, हरि और हर, वास्तव में क्या ये दो है, बोले नाना ये दो नहीं है, हरि हर की सनातन एकात्मता है, सनातन रूप से एक है, कभी नारायण तो कभी शिव, कभी शिव तो कभी नारायण, नारायण और शिव में कभी कोई भेद नहीं है। अर्थात शिव द्रोही मम दास कहावे, भगवान कहते हैं जो शिव का द्रोही है, शिव के साथ

दूसरा नहीं है, पर दूसरा न होने पर भी दूसरा अपने आप को कर लेता है, प्रकट करता है इस रूप में, जिससे कि उन्हें सृष्टि की जगत की ये लीला खेल खेलना होता है भगवान शिव के संग। इसीलिए भगवती की जब पूजा की जाती है तो कहते हैं पार्वती परमेश्वर अर्थात कलो चंडी विनायका, कलो उमा महेश्वर, शक्ति महेश्वर, शक्ति के संग या तो महेश्वर की पूजा होगी और शक्ति के संग गणपति की पूजा होगी, गणेश जी और भगवती अंबिका की पूजा और अथवा शंकर और पार्वती की पूजा। तो ये दोनों रूप तीनों तो एक ही हैं, इसलिए ये पंच देव आराधना हम सबों के लिए नित्य मंगलकारी है, नित्य कल्याणकारी है और नित्य ही ये हम सब के लिए शुभ करने वाली है। इनमें से किसी को छोड़ करके कोई व्यक्ति सोचे कि हमें मंगल की प्राप्ति हो, कल्याण की प्राप्ति हो, सो संभव नहीं नारायण। इसलिए आइए इनमें से जो आदि सनातन भगवान सदा शिव है, शिव समान को दाता नहीं, शिव के समान भला और कौन दाता है। शिव की महिमा इतनी अपरंपार है, जिसको महिमन स्तोत्र में आप कहते हैं महिमन पारंते, महिमा जिसकी अपार है, जिसकी महिमा का कोई पारावार नहीं है। बोले ये महिमा, शिव महिमा हमें श्रवण करनी चाहिए। बोले कीर्ति का श्रवण करो, यश का श्रवण करो, श्रवण करने से हमारी उपासना में तीव्रता आती है। सुनना क्यों है, श्रवण क्यों करें? बोले जीवन में, उपासना में, भक्ति में तीव्रता लाने के लिए, उसमें गति लाने के लिए, गतिशील होनी चाहिए, गति देने के लिए हम अपनी उपासना, हम शिव भक्त हैं ऐसा मान करके अपने आप को ठहरा न ले वहीं पर, अर्थात हमारी भक्ति में, हमारी उपासना में इतनी तीव्रता हो, गति हो कि हमारे अंदर आतुरता आए कि हमें भगवान शिव की प्राप्ति हो। उस तीव्रता को लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बोले भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। जब तक तीव्रता नहीं होगी, बात तीव्रता लाने की है। ये महिमा इसलिए सुनाई जा रही है कि पंचदेव उपासना के मार्ग में जो हमारी स्थिरता आ गई है, क्योंकि तीव्रता नहीं होगी तो याद रखना प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए बार बार के निरंतर के श्रवण करने से, एक बार नहीं अनेक बार किसी के विषय में सुना जाता है तो सुनते सुनते सुनते उसमें हमारे भीतर आतुरता आती है कि जिसके लिए हम इतना सुन रहे हैं वो हमें मिले तो सही, परमात्मा मिले तो सही, शिव मिले तो सही, ऐसी आतुरता अपने भीतर लाने के लिए हमें उनकी महिमा का श्रवण करना चाहिए। बोले पहली भक्ति है श्रवण, सुनने से तीव्रता आती है। तो क्या सुनना चाहिए? बोले भगवान की कीर्ति सुननी चाहिए, भगवान का यश सुनना चाहिए, भगवान की महिमा सुननी चाहिए। श्रवण करने के लिए महिमा है तो इस महिमा का श्रवण करें, शिव की महिमा का श्रवण करें। महिम न पारंते, उनकी महिमा इतनी अपरंपार है कि जिस महिमा को स्वयं शारदा माँ भी उनकी महिमा का गान करने लगे ना, आप लोग निरंतर बोलते हैं असत

कालम तदवित भगुणानाम ईश पारम नयाति। कि स्वयं शारदा माँ भी तीनों कालों का पर्याप्त समय लेकर के और सब वनों की लेखनी बनाकर, सब समुद्रों की स्याही बनाकर, अखंड ब्रह्मांड का कागज बनाकर सर्व काल में लिखना चाहें तो वो भी नहीं लिख सकती हैं, इतनी अपरंपार महिमा है। पर फिर भी ऐसी अपरंपार महिमा श्रवण करते हुए

0: एक जन्म नहीं अनंत जन्म हमारे लग जाए तो भी उनकी महिमा को हम पूर्ण रूप से समझ पाएंगे या गा पाएंगे ये कहना तो संभव नहीं, परंतु फिर भी जितना हमें समय मिले अधिकश्य अधिकम ज्यादा से ज्यादा अपनी भक्ति को अपनी मति को भगवान के चरणों में लगाने के लिए सुनना चाहिए। बोले सुनना क्या चाहिए, उनकी महिमा। महिमा कैसी है, ये शिव कैसे हैं? कि एक बार सृष्टि के कार्य में पूर्व समय की बात है कि शिव पुराण में ऐसी कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा जी चले भगवान श्रीहरि विष्णु के पास, और जब ब्रह्मा पहुंचे तो जाकर खड़े हो गए। खड़े हो गए तो सोचा उन्होंने, ब्रह्मा जी ने सोचा सकल सृष्टि का नायक, सकल सृष्टि को उत्पन्न करने वाला मैं हूँ, मेरे द्वारा ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, इसलिए मैं विधि हूँ, विधाता हूँ, तो मुझे नारायण को प्रणाम करना चाहिए, और जाति में भी मैं श्रेष्ठ हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो मुझे इन्हें प्रणाम करना चाहिए। और श्री हरि नारायण सोचते हैं कि ये तो मेरा पुत्र है, क्योंकि नारायण की नाभि से कमल की उत्पत्ति, कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति, पद्मनाभ, पद्म के नाभ से जो उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा, ये मेरे पुत्र हैं, इन्हें मुझे प्रणाम करना चाहिए। कहा कि आकर खड़े हो गए, शिष्टाचार धर्म भी भूल गए कि इन्हें आकर के पुत्र को पिता के सन्मुख हाथ जोड़ करके शीश नवाकर पिता को प्रणाम करना चाहिए, दंडवत करनी चाहिए। ये शिष्टाचार धर्म छोड़ दिया, भगवान श्री हरि को बुरा लगा, और ब्रह्मा जी को लगा कि देखो मैं सारी सृष्टि को पैदा करने वाला हूँ, और मैं सब कर, मेरा कार्य इतना महान है, मैं इनसे बड़ा हूँ, इन्हें मुझे प्रणाम करना चाहिए। ये मैं बड़ा का झगड़ा नारा, ये मैं कौन, ब्रह्मा जी कहे मैं बड़ा और श्री हरि विष्णु कहे मैं बड़ा, इनमें भी बड़े को बड़े छोटे को लेकर, और हम मनुष्यों में तो ये बात रहती है, मैं यदि न हो तो झगड़ा ही न हो। तो हर नारायण भी कहते हैं मैं बड़ा और ब्रह्मा जी कहे मैं बड़ा, इन दोनों को बड़े बड़े लेकर के आपस में विवाद हो गया, और ये विवाद नारायण कहे कि तुमको मुझे प्रणाम करना चाहिए, और ब्रह्मा जी कहे कि नहीं तुम्हें प्रणाम करना चाहिए। ये विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि युद्ध के रूप में प्रणीत हुआ। जब दोनों का युद्ध के रूप में प्रणीत हो गया ये विवाद तो ठीक उसी समय उन दोनों के बीच में, इस युद्ध के बीचों बीच एक ज्योतिर्मय अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसमें दिव्य ज्योति है, केवल ज्योति है, और यह अग्नि के समान एक दिव्य ज्योति स्तंभ जैसे ही प्रकट हुआ, उस ज्योति स्तंभ से आवाज आई। आवाज ये आई कि मेरे आदि और अंत का पता लगाओ।
1: नमः शिवाय। All the three shivam.org radios have started operating from our own stream server now. As a result, the URL has changed and the stream you are currently listening to will stop shortly. Our shivam.org website and the mobile app are already pointing to the new URL, and you will be able to continue to listen to our radios through them. If you are currently listening to our radio through some other tools like TuneIn, Radio Garden, etc., please let us know at shivam@shivam.org. We will do the needful to update the URLs in those tools too. Please help us by sharing which tool you are using to listen to this stream, to make sure that you are able to continue to listen to them even with the new stream. Again, the mail address is shivam@shivam.org. Thank you. Namaskar.
2: Om Namah Shivaya. You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
3: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam
4: 3,
3: Sukta
4: 6.

0: Namah Shivaya. All the three Shaivam.org radios have started operating from our own stream server now. As a result, the URL has changed and the stream you are currently listening to will stop shortly. Our Shaivam.org website and the mobile app are already pointing to the new URL, and you will be able to continue to listen to our radios through them. If you are currently listening to our radio through some other tools like TuneIn, Radio Garden, etc., please let us know at shaivam@shaivam.org. We will do the needful to update the URLs in those tools too. Please help us by sharing which tool you are using to listen to this stream to make sure that you are able to continue to listen to them even with the new stream. Again, the mail address is shaivam@shaivam.org. Thank you. Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org radio, the size of our audio collection continues to grow day by day. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Hari Om. पूज्य महाराज जी के पुण्य चरणों में वंदन. कुछ घटना ऐसी होती है कि हमें हमेशा याद रहती है, और उसी समय कोई ऐसे ईश्वर की बड़ी कृपा होती है तो ऐसे संत हमारे बीच में आ जाते हैं और हमें अनुग्रहित करते हैं. महाराज जी ने अगर ध्यान हो तो बहुत ही कम समय के लिए 16 फरवरी को महाराज जी बता रहे थे 6-7 दिन के लिए, और तैतरीय उपनिषद के मंगलाचरण की समझो एक विधि की थी प्रेमपुरी के लिए, और उसी मंगलाचरण की कृपा है कि महाराज फिर से यहां पधार रहे हैं. आप सब की तरफ से पूज्य महाराज जी को स्वागत करते हैं. वही तैतरीय उपनिषद महाराज जी द्वारा हमें प्रवचन के रूप से सुनेंगे हम. आप सब की तरफ से पूज्य महाराज जी को वंदन. हरिओम.
4: भक्त शक्ति संहिता वास्तल में माताओं स्नेह बहनों आप सर्वबंधु, तो तैतरीय उपनिषद पर मंगलाचरण को लेकर चर्चा की थी और शिक्षा अध्याय को लेकर के थोड़ी चर्चा हुई थी. उसके पश्चात पुनः जो है प्रतिज्ञात जो है मंगलाचरण यहां शास्त्रकार कर रहे हैं उसके अंतर्गत चर्चा की जा रही है. उपासना विषयक पहले चर्चा कर रहे हैं और उस उपासना का लक्ष्य है पुरुषार्थ की प्राप्ति. तो यहां पर उपास्य रूप से ओंकार को संकेत कर रहे हैं और उन ओंकार की उपासना को लेकर के ही पहले प्रतिज्ञात्मक वाक्यों को लेकर के प्रार्थना कर रहा है ऋषि, और उसमें संकेत कर रहा है यश्छंदसा मृषभो विश्वरूपः. पहले ही ऋषि ने कहा यह छंदसाम ऋषभ, संकेत किया छंद माने वेद, जो छंदों में वेदों में कैसा है तो ऋषभ. अब ऋषभ शब्द के अर्थ श्रेष्ठ भी है और कहीं कहीं ऋष धातु से लेकर के ऋषभ शब्द का अर्थ ज्ञानात्मक ज्ञान रूप भी लिया जाता है. तो यहां पर प्रसंगानुसार ऋषभ शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ. तो संकेत करते हैं यह छंदसाम ऋषभ, जो वेदों में क्या है, श्रेष्ठ है, जो वेदों में श्रेष्ठ है और कैसा है, तो कहा विश्व रूप हो। जो वेदों में श्रेष्ठ है और विश्व रूप है माने सर्वरूप है, विश्व रूप का मतलब क्या है, कहा जो सर्वरूप, तो जो वेदों में श्रेष्ठ और सर्वरूप है ऐसे उस ओम की तरफ संकेत करते हुए ऋषि कर संकेत कर रहा है। तो ऐसे उस ओंकार को उपास्य बनाने के लिए कहा कि जो वेदों के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ है और जो सर्वरूप है, और फिर उसके बाद ऐसा कहते हुए आगे संकेत किया छंदोभ्यो अधि अमृतात संबभूव, और क्या कहा, कहा जो वेद हैं उन वेदों के द्वारा, उन वेदों से क्या है, कहने लगे अधि अमृतात, जो अमृत है या जो अमृतत्व है ऐसे उस अमृतत्व का हेतुभूत जो, जो अमृत है उस अमृतत्व का हेतुभूत जो, उस हेतुभूत का ही जो अधिष्ठान है, अधि उपसर्ग को लेकर के उसका जो अधिष्ठान है, ऐसे उस अधिष्ठान की जो है उपासना के लिए है। तो क्या संकेत करते हैं, कहा कि वह अमृतत्व का हेतुभूत जो है ऐसे उस ओंकार की हम उपासना के लिए, यहां पर ऋषि भी संकेत करता है संभव अर्थात उस, इस संकेत किया और फिर प्रार्थना करते हैं समेन्द्रो मेधयास प्रणोतु, फिर उसी के स इंद्र, इंद्र शब्द का अर्थ यहां देवता विषयक मात्र नहीं, इंद्र शब्द का अर्थ है यहां ईश्वर रूप है, जो संकेत करते हैं इंद्रो माया भी पुर रूप ईयते, तो वहां पर संकेत क्या किया, माया के द्वारा उस इंद्र ने सारे संसार का निर्माण किया, तो वहां इंद्र शब्द से केवल जो है स्वार्गिक इंद्र है उसको ग्रहण नहीं किया, वहां पर इंद्र शब्द से लिया गया कि माया के द्वारा सृष्टि करने वाला कौन, तो ईश्वर, तो यहां पर भी वही संकेत करते हैं स इंद्र मां अर्थात मां मेधयास प्रणोतु, मेधा के द्वारा, मेधा से इस प्रणोतु माने हमें युक्त करे अर्थात मेधावान बनाए या हमारे अंदर वह सामर्थ्य प्रदान करे जिसके द्वारा हम उस सामर्थ्य को प्राप्त करके और उस अमृत के जो अधिष्ठान है और उसका हेतुभूत जो है उसकी उपासना करके हम जो है उस अमृतत्व को प्राप्त कर सकें, इसलिए जो है ऐसे उस बल का हमें जो है या ऐसी उस सामर्थ्य का जो है हमें प्रदान करे या वो सामर्थ्य वाला हमें बनाए, ऐसा यहां संकेत करते हैं। और आगे संकेत किया फिर अमृतस्य देव धारणो भूयाशम, है ना, तो वो जो देव है वो क्या करे, उस अमृत का धारण कराने वाला मैं हो जाऊं ऐसा जो है मुझे बल दे, तुम उस अमृत को धारण कराने वाला मुझे बनाए या मैं ऐसा हो जाऊं, तो ये संकेत किया तो उस देव से ही प्रार्थना करते हुए, और वो देव क्या है, तो यहां ओंकार को ही उपास रूप से ग्रहण कर रहे, ये संकेत कर रहे, यहां भूमिका बना रहे। और फिर ऐसा कहते हुए आगे संकेत किया शरीरम में विचर्षणम, मेरे शरीर को वो कैसा बनाए, तो विचक्षण बनाए अर्थात उस सामर्थ्य वाला बनाए, शरीर भी क्या है, तो कहा एक साधन, और साधन किसका है, तो कहने लगे शरीर जो है साधन संसार के पदार्थों का भी है, और संसार के पदार्थ जो है वो शरीर के लिए साधन है, लेकिन उन साधनों से युक्त होता हुआ शरीर रूपी साधन किसके लिए है, तो वो संकेत करते हैं वो अपने पुरुषार्थ के लिए, उसका जो है शरीर का जो है वास्तविक साध्य क्या है, तो कहने लगे पुरुषार्थ। संसार के पदार्थ पशु आदि धन आदि जो कुछ भी है वो शरीर के साध्य नहीं, यहां संकेत करते वो शरीर के क्या है, वो शरीर के साधन है। और शरीर भी स्वयं में साधन है, शरीर साध्य भी है। किसके लिए साध्य है, तो कहने लगे संसार के पद पदार्थों के लिए तो वो साध्य हो गया, उस शरीर के लिए वो सब साधन है, लेकिन शरीर स्वयं में भी साधन है। तो साधन जब शरीर है तब उसका साध्य क्या है, तो वहां सीधे अर्थों में कह देते पुरुषार्थ ही उसका क्या है, का साध्य है और उसका शरीर साधन है। तो शरीर जो है शरीर रूपी साधन किसके लिए है, पुरुषार्थ की प्राप्ति कराने के लिए। अब पुरुषार्थ शब्द से चार पुरुषार्थों को हम लेते हैं, लेकिन यहां पर श्रेयता की दृष्टि से संकेत कर दिया जाता है कि अन्य साधन तो उसके संसार के पद पदार्थों के अंतर्गत लोक विशेष को लेकर के आ गए, लेकिन वास्तविक उसका साध्य क्या है, तो मोक्ष ही उसका साध्य, अमृत ही उसका साध्य। और उस अमृत का हेतुभूत क्या है, तो उसके लिए हेतुभूत जब कहेंगे तो ज्ञान ही है, क्योंकि उस ज्ञान के द्वारा ही उस अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो ऐसा जो पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ के लिए ये शरीर है। अब ये शरीर जो है तो वो हमारा शरीर रूपी साधन कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए कहने लगे कि शरीर रूपी जो साधन है वो भी सामर्थ्य युक्त हो, वो भी सामर्थ्य वाला हो। तो इसलिए कहा कि शरीरम में विचर्षणम, हमारे शरीर के अंतर्गत भी वो विलक्षणता जो साध्य को सिद्ध करने में समर्थ हो, अर्थात सामर्थ्य को प्राप्त हो या बल को प्राप्त हो, तो ऐसा बल जो है मेरे शरीर को भी प्रदान करें। शारीरिक दृष्टि से भी संकेत किया और जिह्वा में मदमत्तमा, फिर एक एक अवयव को लेके कहने लगे मेरी जिह्वा कैसी हो जाए, तो केवल मधु युक्त नहीं, मीठी नहीं हो जाए, क्या हो जाए, मधुमत्तमा, माने जो श्रेष्ठ मधुरता है उस मधुरता वाली हो जाए। तो ये सब सामान्य रूप से संकेत कर रहे। ऐसे ही आगे कह दिया कर्णाभ्याम भूरि विश्रवम, और कानों से जो है मैं बहुत सुनने वाला हो जाऊं, कानों से क्या हूं, बहुत सुनने वाला हो जाऊं। और इस प्रकार से कहते हुए फिर आगे कहा ब्रह्मणः कोशोसी, क्या कहा, ब्रह्मणः कोशोसी माने ब्रह्मणः कोशा असि, यह जो है कौन, जिसकी हम उपासना करने जा रहे, जिसे हम अपना उपास्य बना रहे हैं, वो उपास्य कैसा है, तो कहने लगे वो ब्रह्म का कोष है, वो उस अमृत का कोष है। कोष माने कोष को कह दो तो एक आवरण, क्या कोष माने क्या है, आवरण, या उस ब्रह्म के लिए रहने का स्थल विशेष, ऐसा संकेत। यद्यपि ब्रह्म वहां रहता नहीं, लेकिन फिर भी यहां पर प्रतीक उपासना को लेकर के हम लोग जिस भाषा में रहते हैं और जिस भाषा के व्यवहार से समझते हैं उसी को समझाने के लिए यहां कोष शब्द का प्रयोग कर दिया। तो वो ब्रह्म का कोष है और उसका भाष्य में संकेत किया कि जैसे तलवार का कोष क्या है, उसका म्यान, ऐसे ही यहां पर जो है ओंकार जो है वो क्या है, ब्रह्म का कोष। क्यों, ब्रह्म में वास्तव में कोष आदि नहीं, लेकिन ये ओंकार जो है ब्रह्म का अत्यंत समीपी है, क्या है, ब्रह्म का अत्यंत, यद्यपि ओंकार को सब कुछ कहा, ओंकार है इति सर्वम, ओंकार जो है वही सब कुछ है, ओम इतेकाक्षरम ब्रह्म ऐसा भी कह दिया, लेकिन ये जो सारा वर्ण है वो किस लिए है, तो ओंकार को हम उपास्य बना रहे, और ओंकार की जब हम उपासना करते हैं तो ब्रह्म के प्रतीक रूप से करते, इसलिए ब्रह्म के प्रतीक रूप से उपासना करने के कारण, और वो प्रतीकता जैसे अन्य प्रतीकताएं हैं वैसा नहीं, वो श्रेष्ठ प्रतीकता है, वो ब्रह्म की अत्यंत समीपी जो है प्रतीकता है, इसलिए ओंकार को ब्रह्म का अत्यंत समीपी होने के कारण निर्दिष्टो ही ब्रह्म ऐसा संकेत किया, प्रणवो ही निर्दिष्टो ब्रह्म, यह जो प्रणव है यह जो ओंकार है वो ब्रह्म का अत्यंत समीपी, जैसे वहां जो है को शब्द से भी कह दिया तो तलवार कहा अत्यंत समीपी कौन है, कहा म्या उसमें रहती है। अब वो इस प्रकार से वहां पर रहती है, लेकिन कार्य करने के समय तक कोष से बाहर आ जाती। तो इसे संकेत यहां कर रहे हैं कि ब्रह्मणा कोशोषी, यह जो ओम है वही क्या है, ब्रह्म का प्रतीक है, ब्रह्म का अत्यंत समीपी है। और ऐसा संकेत करते हुए फिर कहा कि कोशोषी मेधया पीत। अब फिर एक संकेत किया मेधया, मेधा के द्वारा। अब ऐसे उस ओंकार को भी, प्रतीक को भी हम ग्रहण करने में समर्थ नहीं होते। तब कहने लगे क्यों समर्थ नहीं होते, तो मेधया पीत, क्योंकि मेधा के द्वारा, मेधा माने बुद्धि में रहने वाली ग्राहक शक्ति, मेधा माने बुद्धि में रहने वाली ग्राहक शक्ति विशेष का नाम यह है क्या, मेधा। तो अब उस मेधा के द्वारा पीत माने वह छिपा हुआ है या ढका हुआ है, अर्थात उस मेधा ने ही उसको छिपा दिया और मेधा जो है उसको देखने में समर्थ इसलिए नहीं हो। तो मेधा पीत वो बुद्धियों से ढक गया, सीधे अर्थ में कह दें तो वो बुद्धियों से ढक गया। श्रुतम में गोपाय, और आगे संकेत किया मेरा जो श्रवण किया हुआ है वो उसकी क्या करो, तो रक्षा करो। ये सब जो है सामान्य अर्थ को लेकर के यहां संकेत किया। आगे संकेत किया आवहंती वितनवान, माने मेरे लिए आवाहन करने वाली, बुलाने वाली, और जो है वितनवान विस्तार करने वाली है। तो इस प्रकार से जो है उपासना करते हुए अपने प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमारे लिए जो है मने इन वलों आदियों को लाने वाली और उस वल आदि का विस्तार करने वाली। तो श्री आदि के लिए भी संकेत किया। तो इस प्रकार से यहां पर सामान्य रूप से इस मंगलाचरण के अंतर्गत चर्चा की। अब ये वल की बात जो कही, देखो नियम ये है, शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत भी एक मंत्र आता प्रारंभ में ही, इसे तोर्जे त्वा वायवस्था त्वा देवो सवितः वा प्राप्रयतु श्रेष्ठ तमाय कर्मणे आप्याध्वयम् माग्नः इन्द्राय। और उसके बाद फिर इस प्रकार से चर्चा करते हुए आगे चर्चा की। अब यहां पर संकेत किया गया, तो पहले वहां पर भी शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत ये कहा मने तोर से त्वा, वहां भी संकेत किया मने उस श्रेष्ठ अन्न आदि को हमें प्राप्त करो, कराओ। और उस अन्न आदि को जब हम प्राप्त कर लें तो कहे उसके बाद कहा ऊर्जे, मने हमें ऊर्जा बल प्राप्त कराओ। और बल प्राप्त हो जाए तब संकेत किया उस बल से संपन्न होकर के, क्योंकि वह देवता कैसा है, त्वा वायवस्था वायु रूप तुम हो, वायु के समान बल वाले हो, ऐसे उस देवता से प्रार्थना करते हुए। और कहा इतना ही नहीं, त्वा देवो सवितः, केवल वायु रूप ही नहीं हो, क्या हो, प्रकाश रूप हो, ज्ञान स्वरूप हो। तो इसलिए मैंने ऐसा संकेत करते हुए उससे प्रार्थना की कि पहले जो है उस देवता से कहा हमें अन्न ग्रहण कराओ। क्यों अन्न ग्रहण कराओ, कहा अन्न ही जब हम ग्रहण करेंगे तभी क्या होगा, कहा शरीर विलक्षणता को, बल को प्राप्त होगा, और अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तो शरीर में भी सामर्थ्य नहीं। लेकिन केवल ग्रहणता का ही नहीं, इसलिए आगे भी यहां समदम आदि की चर्चा भी प्रार्थना करेंगे। मने अन्न तो हमने ग्रहण कर लिया, या जो हमारे शरीर के अनुकूल पदार्थ हैं, अन्न का मतलब अतिथि अन्नम, जो जिसके ग्रहण करने से शरीर पुष्टि को प्राप्त हो, वही यहां पर अन्न शब्द सी। तो अब अन्न हमने प्राप्त कर लिया या शरीर के साधनों को प्राप्त कर लिया, लेकिन ध्यान रखना अन्न तो हमें मिल जाए लेकिन कभी कभी स्वाद से थोड़ा अधिक खा जाते तो क्या हो जाता, तो अजीर्ण हो जाता। और अजीर्ण हो जाता तो अन्न खाया किस लिए था, इसलिए खाया था कि हमें बल की प्राप्ति हो। लेकिन जब उसने अजीर्णता पैदा कर दी तो बल न होने के अपेक्षा बल कम और हो गया, ठीक है ना। तो वहां पर संकेत किया गया, इसलिए कहा कि अन्न को इतने ही से कहने से काम चल जाता, फिर आगे ऊजे शब्द की बल प्राप्ति के लिए क्यों प्रार्थना की, इसलिए कि अन्न को हम साधनों को एक उचित मात्रा में एक मर्यादित रूप से ग्रहण करें और ग्रहण करके उससे बल की प्राप्ति करें। और वो बल जब हमें मिल जाए तो बल को देने वाला भी कौन है, तो इसलिए संकेत कर दिया कि वायु शब्द का त्वा वायवस्था, वायु रूप भी तुम क्यों जानते हैं आप सब लोग, जितना भी शरीर के अंतर्गत आप बलात्मक कार्य करते हो वो कब होता है, कोई भी क्रिया करते हो तो कब होती है, तो कहने लगे शरीर में बल होता, लेकिन वो बल भी काम कब करता, वो बल है कौन, उस बल को भी प्रेरित करने वाला कौन है, हम वाणी बोल रहे हैं तो बोलना रूप जो बल है वो अभी कब है, तो यदि वायु नहीं होगी तो ये वाणी का प्रस्फुटन नहीं होगा, वायु नहीं होगी तो हाथ उठेगा नहीं, ठीक है। तो इस शरीर के अंतर्गत, और यहां तक कह दिया है रसो वही सहज श्रुति आई, तो ये यदि आकाशो नश्यात कोवान्यात कोवा प्रांड्यात, यदि ये आकाश नहीं होता वहां संकेत किया तो है अपहनन आदि क्रिया प्राणन आदि क्रिया कौन करता, और ये क्रिया यदि नहीं होती तो जीवन भी नहीं होता, इस संकेत किया। तो इसलिए संकेत क्या किया, इसलिए तुमेव वायु है क्या है प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, इसलिए वायु को प्रत्यक्ष ब्रह्म कह दिया, ब्रह्म है ऐसा नहीं किंतु प्रत्यक्ष ब्रह्म शब्द से कहा, मैंने इंद्रियों के द्वारा सामर्थ्य देने वाला इंद्रियों से ग्रहण होने वाला ब्रह्म कौन है, तो वायु है, तो ऐसा संकेत वहां, तो इसलिए तो वायु क्या है, इसलिए कहा त्वा देवो वायवस्था, तुम क्या हो वायु रूप हो, तो वायु वह सारा बल देने वाला है, वायु बल की प्रेरणा करने वाला है, उस वायु के बगैर ये कोई क्रिया संभव नहीं हो सकती, ऐसा वहां संकेत किया। और इतना संकेत ही नहीं, साथ में जो है कहा वायु भी है, और उसके बाद कहा कहेंगे त्वा देवो सवितुः सवितः है, सविता शब्द का प्रयोग किया, सविता शब्द का अर्थ क्या है, तो मन सूर्य और प्रसव करने वाला, ऐसा भी संकेत कर दिया। तो इस प्रकार से ऐसे देव से प्रार्थना करते हैं और अन्न को ग्रहण करें, अन्न को ग्रहण करके बल की प्राप्ति हो, और बल की प्राप्ति हो तो उस बल का प्रयोग क्या होना चाहिए, है ना, तो शक्ति परेशम परपीडनाय, हमें यदि शक्ति मिली है बल मिला है तो क्या करें, दूसरों को पीड़ा दें, कहा नहीं, साधु और खल के लक्षणों में जो बतला दिया स्वास्थान में, तो कहने लगे नहीं वो किस लिए है, दूसरों की रक्षा करने के या अपने पुरुषार्थ की प्राप्ति करने, तो बल प्राप्त करें और उस बल को प्राप्त करके हम अपने पुरुषार्थ की सिद्धि करें, ये संकेत किया। तब वहां कहा वो कैसे होगा, तो संकेत क्रम से दिया, एक साथ तो बल प्राप्त नहीं होगा, तब कहा श्रेष्ठ तमाय कर्मणे आप्यायध्वम, माने कर्म भी हैं, तो एक तो आप गीता में सुनते हो कर्म विकर्म और अकर्म, अब यहां पर जो शब्द आया कर्म को लिया, कर्म की भी गतियां फिर विभाजन कर दी, कर्म में भी भेद कर दिया, कर्म फिर श्रेष्ठ तर कर्म और फिर श्रेष्ठ तम कर्म, तो वहां कर्म के लिए नहीं कहा, अब इतना कह देने से जहां पर ये कर्म अकर्म विकर्म और फिर कर्म में कर्म श्रेष्ठतर कर्म श्रेष्ठतम कर्म, इसमें काम्य निषिद्ध तो पहले ही से निवृत्त हो गए, इतना विधान करने से काम्य और जो निषिद्ध कर्म है उनका तो वर्जन पहले ही से हो गया, और कर्म जो है अब वो कर्म को लेकर के संकेत की, तो श्रेष्ठतरम कर्म के लिए नहीं कहा, श्रेष्ठतम कर्म, और श्रेष्ठतम कर्म क्या है, तो श्रेष्ठतम कर्म है यज्ञ, इसलिए यहां जप होम की विशेष चर्चा भी करेंगे, तो अब श्रेष्ठतम कर्म करें माने यज्ञात्मक कर्म करें, और यज्ञात्मक कर्म करेंगे और उस कर्म के करने के बाद फिर संकेत आगे कर दिया माग्न्यः इंद्राय, इंद्र आदि के भाग का जो है आप जो है हनन न करें, अर्थात इंद्र का जो भाग है वो इंद्र को प्रदान करें, तब क्या होगा, तो जी गीता में सुनतो देवान भावयता नीन ते देवा भावयंतो वा परस्पर भावयंता श्रेया परम, यदि जो देवताओं जिन देवताओं ने, अब देवता सूर्य भी है चंद्रमा भी है, पृथ्वी भी है, है? लेकिन यहां तो लोग कहेंगे ये तो रूढ़िवादी हैं। लेकिन यहां पर शास्त्र जो कहता है कि पृथ्वी भी देवता है, सूर्य भी देवता है, वायु भी देवता है, चंद्रमा भी देवता। और ये क्यों कहा देवता? तो यहां पर देवता इसलिए है, यदि सूर्य का प्रकाश नहीं मिले तो क्या है, संसार में केवल स्थावर जंगम जितने भी हैं उनका जीवन दूभर हो जाए। वायु यदि अपने बल को नहीं दे तो भी इनका जीवन दूभर हो जाए। पृथ्वी यदि अपने से औषधियों को, और जो है पृथ्वी के समय की घटना, औषधियों को, वनस्पतियों को पैदा करके नहीं दे तो क्या स्थिति होगी। और पृथ्वी जैसी तो आप सारा आश्रय भी दे रही है, आपके सारे दोषों को भी ग्रहण कर रही है और आपको गुणात्मक करके है, जितनी भी गंदगी सब पृथ्वी, लेकिन वो फिल्टर करके क्या करती, आप एक छोटा फिल्टर बना लेते हो है, अपने को वैज्ञानिक कहते हो और बड़ा अहंकार आ जाता, लेकिन पृथ्वी भी अकड़ जाए ऐसे ही तो क्या होगा। तो पृथ्वी जो हमको देती है, ऐसे ही वायु हमको देती है, सूर्य हमको देता है, चंद्रमा आदि हमको देता है, या ऐसे अन्य जो देव हैं, ये कल्पना जो देवों की है, लेकिन है तो वहां एक एक हो देवा सर्वभूत, लेकिन ये जो है माध्यम है, प्रतीक है, इनके द्वारा जब हमें प्राप्त होता है तो हमें भी इनके प्रति क्या करना चाहिए है? एक मंत्री आकर के तुम्हें जो है कुछ दे दे तो तुम क्या करते हो, ईश्वर कहोगे, ईश्वर तुम हो, भगवान तुम हो, सब कुछ तो, और कम से कम मालाएं डालोगे, उसे धन्यवाद दोगे, और जो तुम्हें सारा जीवन दे रहा है उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करना क्या हमारा कर्तव्य नहीं? तो जो हमें जीवन दे रहा है उसके प्रति हम धन्यवाद तो कम से कम करें, उसको कम से कम नमस्कार तो कर लें, उसके प्रति एक आस्था तो रखें। तो यही क्या है यज्ञ। तो देव तुमको देते हैं तो देवों के प्रति भी एक सद्भावना बनाना, ये क्या है, एक यज्ञ, एक आस्था रखना। लेकिन हमारी तो वहां आस्था ही नहीं होती, समस्या ये है। फिर हम कहते हैं हमें ये प्राप्त नहीं हुआ, ये प्राप्त नहीं हुआ, भाई जो देने वाला है उसके प्रति तुम्हारी भावना क्या है, और जब तुम्हारी भावना ही नहीं है तो वो तुम्हारे पर प्रसन्न कैसे होगा। तो ये संकेत, तो इसलिए वहां संकेत जो कर दिया कि वह बल हमें प्रदान करे, और ये सब है श्रेष्ठतम हम कर्म करें। तो श्रेष्ठतम कर्म क्या है, कि श्रेष्ठतम कर्म ये है कि जो हमारे ऊपर अनुग्रह कर रहा है, हमारे ऊपर अनुकंपा कर रहा है, कम से कम जो है हम उसके कृतज्ञ न बन पाए तो उसके प्रति सौहार्द रखते हुए कृतघ्न न बने। यदि कृतज्ञ नहीं बन पाते हैं तो उसके प्रति हमारी कृतज्ञता भी नहीं होनी चाहिए, तो ये भी कम से कम हो तो भी अच्छा। लेकिन यहां तो कह रहे श्रेष्ठ तमाय कर्मणे आप्यायध्वम, श्रेष्ठतम कर्मों को करना चाहिए, ये संकेत किया। और कहने लगे श्रेष्ठ कर्मों को करके और हमको भी श्रेष्ठता प्राप्त हो गई, तब हमारे शरीर की विचक्षणता हो गई, तब क्या होना चाहिए। तो कहने लगे इतना होने पर अब इससे क्या होगा, इससे तुम्हें बल भी मिल गया, समाज में तुम्हें यश भी मिल गया, और सर्व रूप से तुम समाज में प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। लेकिन इतना ही जीवन का लक्ष्य नहीं। तब आगे संकेत किया आगे क्या करना है, तब कह दिया है वहां पर कि है क्या करो। तो कहने लगे को हम है कुत आयाता कहा मे जननी को मे ताता इति परिभाव है सर्वम सार मन से विचार है वारम। तब जो है यहां से विचार प्रारंभ होना चाहिए और ऐसा जो है उसको जानने के लिए यह प्राप्त और उसको जानने के लिए हमें उपासना करनी चाहिए। तो उसी को यहां संकेत करते और उसे जो जानने की जो इच्छा होगी और उसको जब जान लोगे तो वही परम पुरुषार्थ है। तो उसी को जानने के लिए यहां पर जो है साधना का प्रकरण शुरू करते, अब उसकी लंबी व्याख्या नहीं करें। तो अब जो है हमको क्या करना है, बल आदि हम उससे कह रहे हैं कि जो छंदों में श्रेष्ठ है उसके लिए संकेत कर दिया, प्रतीक रूप से जो हमारा साध्य है और ऐसा वही अमृत का अधिष्ठान है। और कोई नहीं चाहता कि मेरी मृत्यु हो जाए, है ना, सब क्या चाहते हो, कहा मैं अमृत को प्राप्त हो जाऊं, मेरी मृत्यु न। लेकिन उस अमृतत्व का जो अधिकरण है, अमृतत्व का जो अधिष्ठान है और उस अमृतत्व को प्राप्त कराने का जो हेतु है, निमित्त है, वो कौन है। तो अधिष्ठान तो ब्रह्म है और उसे प्राप्त कराने वाला हेतु कौन है, तो ज्ञान है। तो अब वो ज्ञान हमें होना चाहिए, तब हमें यह ज्ञान करना कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। इसके लिए हमारे लिए ये सारे साधनों को क्रम से बतलाते हैं, क्योंकि इन साधनों से संपन्न होते ही तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए ये नहीं कहा केवल हम ब्रह्म की बात सुनकर के और हम अपने को ब्रह्म सिद्ध कर लें और सारे की सारी श्रृंखलाओं का परित्याग कर दें, तो ये नहीं कहा। न तो भगवत पादाचार्य आचार्य शंकर ने कहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि उसकी श्रेयता है, वो श्रेष्ठ है, वो जीवन का लक्ष्य है, लेकिन उन्होंने ऐसा कह करके किसी का खंडन नहीं किया। हां ये जरूर कहा कि यहां तक वो सीढ़ियां हैं और उन सीढ़ियों तक सीमित रह गए तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं। अंतिम सीढ़ी क्या है तो संकेत कर दिया, अंतिम सीढ़ी तो जब जो है, इसके लिए वहां संधि शब्द की चर्चा कर दी। पूर्व में जो शिक्षा विभाग था तो संधि की चर्चा की, और संधि क्या है, जहां वर्णों के उच्चारण को लेकर के और प्रयत्न विशेष को लेकर के और उनके स्वरों के ह्रस्व दीर्घ आदि मात्राओं को लेकर के और जहां पर उनकी समीपता हो जाती है उसका नाम क्या है, संधि। और उसी को अधिज्योतिष, अधिप्रज, अध्यात्म आदि शब्द से विभाग करके बतलाया था। तो ये संधि, अब वहां पर संधि क्या, तो लोकों को लेकर के भी संकेत कर दिया था, अधिलोकम करके बतलाया था, पृथ्वी लोक क्या है, अंतरिक्ष क्या है और जो है देव क्या है, फिर उनकी संधि क्या है, ये सब संकेत किया था। फिर ये जो सब क्रम बतलाया और उस संधि में जो है मूल क्या है, ये संकेत, तो वही क्रम से यहां भी संकेत करते, तो उन सबका क्या है, तो ओंकार को यहां ले रहे, ओम को ले रहे, तो ओम ही उसमें मूल है। और अब उसकी संधि कैसे, तो जैसे अकार उकार मकार, तो उसी के द्वारा सारे देव वेद और अग्नि आदि ये सब उसमें समाहित करके और तब जाकर के लोक आदि को लेकर के उस ओंकार में आगे दिखाएंगे। अन्य श्रुतियों में भी दिखलाया है और यहां जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि सबका साम्य उसी से कराया। और सबकी संधि कराने वाला जो प्रयत्न है, जो बल है, उस बल से जब तुम संपन्न होगे और उस बल वाले होगे तो क्या होगा, उसके साथ समीपता हो जाए, उसके साथ संधि हो जाए। और जैसे ही उसके साथ समीपता होगी, संधि होगी, तो वह है साक्षात्कार हो जाएगा, मन ज्ञान हो जाएगा। यह साक्षात अपरोच्छाद ब्रह्म, जो अपरोच ज्ञान है वही तो ब्रह्म है, तो वहां फिर उसकी पृथकता भी नहीं, मन उस साध्य की हमें प्राप्ति हो जाए। इसलिए यहां क्रम से जो चर्चा की तो यहां भी कहा कि स इंद्रो मेधयास प्रणोतु। अब इस बात पर ध्यान, वह इंद्र क्या करे, वह जो है उस अमृत रूप अधिष्ठान की प्राप्ति कराने के लिए, इंद्र शब्द से ईश्वर को लेते हैं और वहां ईश्वर रूप से ओंकार को ही दृढ़ कर रहे, प्रतीक उपासना, वह क्या करे, कहने लगे कि हमारे लिए मेधयास प्रणोतु, हमें उस मेधावान बनाए, मेधा मतलब हमारी बुद्धि में वह सामर्थ्य, वह बल प्रदान करे जिससे बुद्धि उसको ठीक ठीक ग्रहण कर सके। इसलिए कहा मेधयास प्रणोतु, और किस लिए, तो कहने लगे वह जो अमृत का अधिष्ठान है।
5: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
0: नमः शिवाय। All the three Shaivam.org radios have started operating from our own stream server now. As a result, the URL has changed and the stream you are currently listening to will stop shortly. Our Shaivam.org website and the mobile app are already pointing to the new URL and you will be able to continue to listen to our radios through them. If you are currently listening to our radio through some other tools like TuneIn, Radio Garden, etc., please let us know at shaivam@shaivam.org. We will do the needful to update the URLs in those tools too. Please help us by sharing which tool you are using to listen to this stream to make sure that you are able to continue to listen to them even with the new stream. Again, the mail address is shaivam@shaivam.org. Thank you. Namaskar.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami श्री उमेशानंद जी महाराज. थैंक यू. ओम नमः शिवाय.
6: परम श्रद्धेय सनीय वंदनीय महांत स्वामी श्री श्रवणानंद जी महाराज एवं अर्चनीय वंदनीय स्वामी रंगानंद जी महाराज एवं हमारे अर्चनीय वंदनीय विद्वत मंडली महीशूरो एवं हमारे अर्चनीय वंदनीय बाबा जी एवं सोमदाग के सोम प्रति सोमदाग है ना बेटा है
7: सोमदत्त
6: सोमदाग है सोमदत्त नहीं सोमदत्त ठीक है सोमदत्त भी है एवं हमारे ट्रस्टी वृंद परम आदरणीय ट्रस्टी वृंद एवं प्रभु प्रेमी सज्जनों तथा भक्तिमती माताओं आज गुरु पूर्णिमा है इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं. इसकी परंपरा है आपको मालूम है ना. नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुखम. यहां से आया नारायण से आया. पूर्णिमा तो हर महीना में आता है परंतु उनके साथ गुरु नहीं लगता है. आज इस पूर्णिमा के साथ क्या लग गया तो इसीलिए इस पूर्णिमा का विशेषता क्या हुई गुरु पूर्णिमा है नहीं है. व्यास पूर्णिमा का हो गुरु पूर्णिमा का हो हाँ हमारे स्वामी जी जो है ना इनका अभी मोहंत हो गया. मोहंत बंगाल में महंत को मोहंत कहते. मोहंत समझते हैं ना जिन्होंने मोह को अंत कर दिया. अभी बतलाया इस नगरी में जो आता है ना वो नहीं जाता है. क्यों इस नगरी का नाम मोहमयी नगरी और मोह को जिन्होंने अंत कर दिया खत्म कर दिया उनका नाम मोहांत. मोह अंत तो बंगाल में महंत को मोहंत कहते. जो बंगाल में गया होगा उनको पता होगा. जैसे देखो मारवाड़ में गुरु को गौरू कहते. क्या बोलता है गौरू जी बोलता है. और बंगाल में गौरू किसे बोल रहे जानते हो. गाय का गुरु बोल रहा है. ये शब्दांतर है जब है नहीं बात. ऐसे एक गुरु हमारे काशी में भी होते हैं. काशी में गुरु है ना वहां का गुरु की परिभाषा अलग है तो आप लोग जानते ही हो. हाँ काशी गुरु उनका नाम काशी गुरु. ऐसे बम्बई वाला को क्या बोलते मामा. बम्बई का मामा काशी का काशी गुरु दिल्ली का दादा सब देश के सब प्रांत के अलग अलग परिभाषा है. तो यहाँ हमारे यहाँ जो है ना शास्त्र में तीन प्रकार के गुरु बतलाया. हमारे बाबा जी है ना बाबा जी ने जो परंपरा बतलाया ब्रह्मचारी नहीं है संस्कार सोलह संस्कार से शुरू किया. गर्भाधान संस्कार सिमंतनी संस्कार जन्मदाता संस्कार से लेकर के ब्रह्मचर्य आश्रम फिर वानप्रस्थ आश्रम तक पहुंचा दिया. सन्यास आश्रम में नहीं गया. क्यों अगर वहां तक जाएगा तो हमको सन्यास लेना पड़ेगा. इसीलिए हमारे यहाँ तीन गुरु होते हैं नोदक बोधक और मुक्षदक. एक नोदक गुरु है नोदक गुरु. तो हमारे बाबा जी जो है नोदक गुरु के विषय में बतलाया. नोदक माने प्रेरणा देने वाला. गृहस्थ आश्रम में गुरु होता है नोदक. हाँ वो जो बताए ना बाबा जी ने अभी, एक होता है बोधक, वेद का ज्ञान देने वाला, वेद का ज्ञान देने वाला, और एक होता है मोक्ष को देने वाला, मोक्ष का गुरु। तो नोदक और बोधक तब तक पहुंच जाते हैं। बोधक गुरु में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी आ गया, अर्जुन को उपदेश दिया। अर्जुन ने कहा कार्पण्य दोष उपदस्त स्वभाव हम पृछा में तम धर्म सम्मूढ़ चेता जस श्रेयसा निश्चितम ब्रूहि शिष्य स्थे हम साधिव तो हम प्रबंध, मैं आपका शिष्य हूं आप मेरे को उपदेश कीजिए। कहां पर बोल रहा है? एकांत में, कमरा में, मंदिर में, लड़ाई के मैदान में बोला। तो लड़ाई के मैदान उपदेश देने के लायक है क्या? जहां शस्त्रों का झंकार हो रहा, हाथी का सिंगार हो रहा है, घड़ों का घोड़ाओं का हिनिनाट हो रहा है, बैंड बाजे बज रहा है, युद्ध बाजे बज रहा है, उस अवस्था में अर्जुन कहता मुझे ज्ञान दो, उपदेश करो। तो वहां उपदेश दिया भगवान ने अर्जुन को। क्यों? अर्जुन को आगे चल करके भगवान ने कहा था बुद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवा उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन, ज्ञानिन तत्वदर्शिन। केवल ज्ञानी भी बतलाया नहीं भगवान ने, केवल तत्वदर्शी भी नहीं बतलाया। तो आप कहोगे ज्ञान या तत्वदर्शी में अंतर क्या है, भेद क्या है? ज्ञानी शास्त्र का ज्ञान है, श्रोत्रिय को ज्ञानी कहते हैं, जो श्रोत्रिय है ना, श्रुति को जानने वाला, श्रुति को जानने वाला का नाम क्या है? ज्ञानी। और तत्व को जानने वाले तत्वदर्शी, हाँ तत्वज्ञानी। ये दोनों विशेषणों से विशिष्ट जो गया होगा उनके पास जाओ, वो तुमको उपदेश करेगा। कब जाएगा? तो श्रुति निर्देश देती है, परीक्षा लोकान कर्म सिद्धान ब्राह्मणों निर्वेद माया नास्तिया कृत कृत न स गुरु में विगत समित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। हाँ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाने के लिए हाँ श्रुति निर्देश देती है। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु का लक्षण बतला रहा है अभी। कोई गुरु का कोई लक्षण आपने सुना? गुरु घंटाल गुरु है, फलाना गुरु है, फलाना गुरु है, सुना ना अभी तक? हाँ गुरु घंटाल भी गुरु का लक्षण है, बता दिया ना। परंतु ऐसा गुरु श्रुति नहीं बतलाती है। श्रुति कहती है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु में भी अभिगच्छेत, जो श्रुति को भी जानता हो और तत्व में निष्ठा भी, ऐसा कौन है? कब मुक्षद गुरु। जैसे देखो महाभारत की एक कथा है, आप लोग सुने होंगे हजारों बार। जिस दिन अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की आज मैं अर्जुन को रथ और घोड़ाओं को मार करके समाप्त कर दूंगा, यह बात भगवान अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज जानते थे। उन्होंने प्रातःकाल प्रतिज्ञा किया, संकल्प किया, आज रथ रथी घोड़ा जैसे मैं ले जा रहा हूं लड़ाई के मैदान में, वैसे मैं उसको वापस शिविर में लाऊं, जैसा का वैसा। सत्य संकल्प भगवान श्री कृष्ण महाराज ने रथ को लेकर के लड़ाई के मैदान में किया। दिन भर लड़ाई हुई, अर्जुन के रथ के ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र मारा। ब्रह्मास्त्र के द्वारा रथ और घोड़ा सबको जला करके भस्म कर दिया। परंतु रथ और घोड़ा जैसा का वैसा था देखने में, भस्म नहीं हुआ। देख दृष्टि से, दृश्य प्रत्यक्ष दृष्टि से, चर्म चक्षु से। सायंकाल में जब रथ को शिविर में लाया, भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन अभी रथ से तुम उतरो। अर्जुन ने कहा प्रतिदिन तो आप ही रथ से पहले उतारते थे, आज हमको क्यों बोल रहे हो? बोले रहस्य में बाद में बतलाऊंगा, तुम पहले उतरो, पहले उतरो आप। अर्जुन को समझ में बात नहीं आई, अर्जुन रथ से उतरा, उतारने के बाद भगवान उतारा, भगवान के उतारते रथ भस्मीभूत हो गया। अर्जुन का क्या मामला, क्या ऐसा कैसे हुआ? भगवान ने कहा, अर्जुन हमको मालूम था कि आज अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्रा मारेगा, तुम्हारे रथ और घोड़ा को मार करके भस्म करेगा, भस्म कर देगा। मैंने सच्चा संकल्प करके रथ को ले गया और सच्चा संकल्प से रथ को वापस लाया। जिस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र मारा, उसी समय रथ जल करके भस्म हो गया। ठीक इसी प्रकार कहते हैं, ये जो संसार है, रणभूमि है। संसार रूपी रणभूमि में जो जीवात्मा रूपी जो रथी है, शरीर रूपी रथ पर बैठ करके लड़ाई के मैदान में जाते हैं, तब सच्चा संकल्प रूपी जो बुद्धि रूपी सारथी है, भगवान श्री कृष्ण महाराज है, उनके सच्चा संकल्प से रथ जैसा का वैसा रहता है। परंतु गुरु के समय जो जाकर के गुरु रूपी अश्वत्थामा जिस समय ब्रह्मास्त्र मानता, तत्त्वमसि महावाक्यों का श्रवण कराता है, वेदांत वाक्यों का श्रवण कराता, उसी समय इसको तीनों शरीर जल करके भस्म हो जाता है, इंद्रिया रूपी घोड़ा भस्म हो जाता है, मान रूपी लगाम भस्म हो जाता है, परंतु देखने में जैसा का वैसा है। ये जो बैठे हैं देखते हो ना, ये इन लोग के सब तीनों अवस्था, तीनों शरीर, मान बुद्धि इंद्रिया सब जल करके भस्म हो गया है, परंतु देखने में आपको जैसा वैसा वैसा दिखता है। क्यों? गुरु के द्वारा प्राप्त किया ब्रह्मास्त्र महावाक्य का, तो महावाक्य का श्रवण जिस समय इन्होंने किया, उस समय उसे संसार बाधित हो गया सब, परंतु प्रारब्ध कर्म के संकल्प है ना, प्रारब्ध कर्म रूपी जो संकल्प है, ये संकल्प जब तक है वो तब तक रथ, रथी, सारथी, इंद्रिया, घोड़ा, ये सब जैसा का वैसा देखेगा, वास्तव में ये सब नहीं है। ऐसे गुरु के पास जाओगे, गुरु जिस समय तुमको महावाक्य का उपदेश करेगा, उस समय तुम्हारा जो है ना संसार का बंधन निवृत्त हो जाए। क्यों? उस अवस्था में तुम्हारे जो है ना अविद्या रूपी जो ग्रंथि है, अज्ञान रूपी ग्रंथि है, जड़ चेतन का जो ग्रंथि है, वो ग्रंथि उसी समय भस्म हो जाएगा, खोल जाएगा। इसीलिए शास्त्रकार कहते मोक्ष का गुरु अलग है, मुक्ति देने वाला

0: थोड़ा दाम में दे रहे हैं, छीन झपटी नहीं करना, क्रम से लाइन लगा करके ले लेना का है। कल के लिए नहीं रखना, अभी ले जाना, न कल फिर समय बदल जाएगा। आज का
1: अच्छा बोला, आज का ही है बता रहे।
0: अच्छा चलिए, देखो हर साल आते हैं पुस्तक यहाँ, हाँ नया नया पुस्तक, नया नया ये किताबें हैं। देखो इसमें एक ऐसा भिक्षु का है स्वामी शंकरानंद जी, जिनके प्रशंसा महाराज जी ने बहुत पुस्तकों में लिखा, बहुत पुस्तकों में है इनका ये प्रशंसा। भिक्षु है, भिक्षु भिक्षा करने खाने वाला, मधुकरी करके खाने वाला, परंतु विद्वान, प्रकांड विद्वान थे, जिनका प्रशंसा, जिनका श्रेय महाराज जी ने बहुत बार बहुत पुस्तकों में लिखा है। ये आप लोग कितना में मिलेगा मालूम है? कितने का?
1: 20 का है, आज 10 का मिलेगा।
0: ये देखा, 20 का है, 10 का मिलेगा, 10 नहीं 10, एक 10 होता है, एक 10 होता है। कितना में मिलेगा? 10 से 10 रुपया। लेना, जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा महापुरुषों का योग दर्शन में कहा तो महापुरुषों का चरित्र चिंतन करने से ये इस लोक परलोक के सब जो है ना कामनाएं मिट जाती है। क्यों? अभ्यास वैराग्याभ्याम तो निरोधा, मन को निरोध करने के लिए अभ्यास वैराग्य चाहिए। तो महापुरुष को चरित्रों का अभ्यास करोगे, मनन करोगे, फिर भी संसार से वैराग्य हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं, बुढ़ापा में वैराग्य होगा क्या होगा? अभी वैराग्य होने वाला नहीं है, जो वो वैराग्य अभी बचपन में होता है, जवानी में होता है, बुढ़ापा में नहीं होता है। कितना भी धक्का देगा ना तो घूम फिर करके चले आओगे। यहाँ एक नाना नानी यह है बगीचा है, तो धक्का दिया घर से तो नाना नानी में जाओगे, तो नाना नानी में बैठ करके सहन को टुक टुक टुक टुक टुक टुक करके फिर चले आओगे। ये देखो, ये मेरे भिक्षु। दूसरा है ईश्वर दर्शन, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, हरिद्वार ऋषिकेश बद्रीनारायण जाने का कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं नारायण में, तू आया बद्रीनारायण में? भगवान पूछते तू यहां क्यों आया? मैं तो नर में हूं और तू ना आया बद्रीनारायण में? नहीं आना, जहां बैठे हो, जहां सोए हो, जहां लेटे हो, हुआ देखो, हम तुम्हारे साथ हैं। ईश्वर दर्शन हो गया, ईश्वर दर्शन हुआ कि नहीं? अरे अरे यहां तक कम से कम बोलिए हो गया। ईश्वर दर्शन करो, ये कितने का है ईश्वर दर्शन? कितना सस्ता है जानते हो?
1: 10 का ये भी है। अरे
0: 10 रुपया में ईश्वर दर्शन होगा? वहां जाओ ना, 500 रुपया 1000 रुपया देकर लाइन खड़ा होना, लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। अरे यहाँ 10 रुपया से ईश्वर दर्शन हो जाता है। अभी तो यहाँ तो ईश्वर दर्शन 10 रुपया में भी नहीं, नीचे जाओगे 10 रुपया, यहाँ तो फुकट का हो गया। अरे एक दूसरा ले, आनंद उल्लास। ये आनंद उल्लास है, ये कितना? 20 का है।
1: ये
0: 30
1: का है।
0: अरे बाबे देखो, पहले इसका दिखाना से देता ना 30 वाला, अब ये 30 का है। तो 30 दिन में आपको 30 भाषण, 30 प्रसंग आप पढ़ लेना, धीरे धीरे पढ़ना। एक दिन पढ़ोगे सिर दर्द करेगा, एक दिन में कोई ग्रंथ पढ़ते ना सिर दर्द हो जाता है। तो दो दो चार चार लाइन एक एक पेज करके पढ़ना, ये आनंद ही आनंद मिलेगा। सुख और आनंद में अंतर है, यह देखना। तुम सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो? ये तो बोला आनंद चाहते हैं। सुख है विनाशी, आनंद है अविनाशी। तो सुख चाहिए कि हमको आनंद चाहिए? हाँ, तो आनंद चाहिए तो पुस्तक जरूर लेना, है नहीं बात? ये आनंद उल्लास। हाँ, अभी क्या करना है, हो गया।
2: ओम नमः शिवाय। Dear listeners of Shaivam.org, now we are listening to Kedichanada Subhrabhatam, presented by Sri Gayatri Venkatragavan. Thank you. Om Namah Shivaya.

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज शिव स्तोत्र। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शंकर सदाशिव प्रेजेंटेड बाय रमीला माणिक। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

नमः परमेश्वराय नमः गंगाधराय नमः शूलधराय नमः परार्थैकप्रयोजकाय नमः सर्वज्ञाय नमः सर्वदेवादये नमः

नमः स्वस्तिदाय नमः सुधाम्ने नमः धात्रीधाम्ने नमः धामकराय नमः सवर्गाय नमः सर्वगोचराय नमः

सुषेणाय नमः, सुरशत्रुघ्ने नमः, अमेयाय नमः, अरिष्टमथनाय नमः, मुकुन्दाय नमः, विगतज्वराय नमः, स्वयं ज्योतिषे नमः, अणुज्योतिषे नमः, अचलाय नमः, परमेश्वराय नमः, पिंगलाय नमः, कपिलश्मश्रवे नमः, शास्त्रनेत्राय नमः, त्रयीतनवे नमः, भगाय नमः, विवस्वते नमः, आदित्याय नमः, योगाचाराय नमः, दिवस्पतये नमः, उदारकीर्तये नमः, उद्योगिने नमः, सद्योगिने नमः, सदसन्मयाय नमः।

ब्राह्मण्याय नमः, ब्राह्मणप्रियाय नमः, देवप्रियाय नमः, देवनाथाय नमः, दैवज्ञाय नमः, देवचिन्तकाय नमः, विषमाक्षाय नमः, विशालाक्षाय नमः, वृषदाय नमः, वृषवर्धन

सर्वर्तु परिवर्तकाय नमः सप्तजिह्वाय नमः सहस्रार्चिषे नमः स्निग्धाय नमः प्रकृतिदक्षिणाय नमः भूतभव

स्व विषय असंप्रयोगे स्व विषय संप्रयोगे वेंदी माइंड इज इन्वॉल्व्ड इन द ऑब्जेक्ट्स देन द चित्तस्य द माइंड इज इन्वॉल्व्ड इन द ऑब्जेक्ट इन दैट स्टेट विषय संप्रयोगे संप्रयोग अभावे संप्रयोग मीन्स संप्रयोग अभाव द माइंड इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड See, normally what is the state of mind? Mind is involved in the object of the world. Chitta visasa vishaya samprayoge manasaha samsaraha. Samsara is when the mind is involved in the object of the world. Samprayoga means involved. Vishaya sva vishaya of its object. The sense organs, if they are involved in the objects of it,

भगवत भक्तजन, सद्गुरु एक श्रद्धा के पात्र है। आचार्य शंकर गुरु मूर्ति को नमस्कार कर रहे हैं, चाहे वो क्यों ना अंत्य योनि को प्राप्त किया हो। जिनकी चेतना उस अद्वैत अनुभव में, अनुभूति में स्थिर है, जिन्होंने वो शक्ति को आविष्कार किया, साक्षात्कार किए, जो एक अद्वितीय चैतन्य शक्ति संपूर्ण विश्व में ओतप्रोत है, दृश्य जगत दृष्टा जगत में वही सत्ता विराजमान है, उसी सत्ता का ही संपूर्ण विलास यह संसार है, नाम रूपात्मक जगत है। केवल उतना ही नहीं, इस वेष्टि शरीर में जो भी शब्द स्पर्श रूप रस अनुभव करता, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय के द्वारा जो विषयों को अनुभव करने वाला, जिसकी उपस्थिति से यह संपूर्ण भोग्य भोग एवं भोक्ता विराजमान है, सत्तामान है, केवल जागृत में ही नहीं, वही चैतन्य शक्ति विशिष्ट स्वप्न अवस्था में भी विराजमान है, जागृत है। सभी इंद्रियों उपकरण सो जाने पर भी वो जो शक्ति है, वो जो चेतना है, वो जागृत अवस्था में ही है। जब स्वप्न अवस्था से साधक उस सुषुप्ति में पहुंचते हैं, जहां जाकर के मन भी अपने कारण में लीन हो जाता है, वहां पर भी बाह्य दृष्टि से मनुष्य कुछ नहीं पता ऐसा अनुभव करने पर भी, कुछ नहीं पता इस बोध को जो जानता है, वो जो चित सत्ता है, वो जो चैतन्य सत्ता है, जिनकी चेतना मन बुद्धि अंतःकरण उस चैतन्य में प्रदीप्त है, वो चाहे क्यों हमारे चंडाल हो, अंत्य योनि क्यों ना हो। आचार्य शंकर कह रहे, मैं उनको प्रणाम करता हूं, गुरु रूप में स्वीकार करता हूं। इसीलिए भगवत भक्तजन इस संसार में आए। संसार में जब आए तब गर्भ उपनिषद को जब हम देखते हैं, बड़ा वेदना और प्रार्थना करते हैं ये जीव कि हे ईश्वर, हे भगवान, मुझे और संसार में जाना नहीं है, इस संसार से इस बार के लिए हमें निष्कृति दे दो। क्या प्रार्थना आप करते हैं? गर्भ मुनि उपनिषद को पढ़ने पर लगता कि यही प्रार्थना हमने किया, और भगवान से हाथ जोड़ करके उपनिषद के ऋषि उस जीव की प्रार्थना को व्यक्त करते हैं। वही मैं गिरगिराता रहा कि इस बार के लिए हमें क्षमा कर दो, मुझे इस संसार में जाना नहीं है। परंतु गहना कर्मणो गति, कर्म के गति गहन है
और उस कर्म के परवश होकर के आना पड़ा इस जीव को, आते समय यही जीव प्रार्थना करते हैं कि अगर हमारे कर्म के कारण आना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, हे देव ऐसी बुद्धि प्रदान करो जो तुम्हें कभी न भूलो। ये मेरी प्रार्थना है, हमारी प्रार्थना है नारायण, कि ऐसी चेतना दो कि कभी भी हम आपको ना विस्मृत हो ना भूले। परंतु वही जीव, वही मैं उस प्रसव की वेदना से सब भूल गए, सब भूल गए, और उस अद्वितीय परमात्मा की ही व्यवस्था में आ गए, स्वकर्म से प्रेरित होकर के इस दृश्य जगत में आया। और इस जगत में आने के लिए बहुतों की कृपा, बहुतों की आशीर्वाद लेने पड़े, परंतु नारायण आगमन के पूर्व में जो प्रार्थना हमने किया, ईश्वर से जो निवेदन किया कि कभी भी ना भूलू तुम्हें, वो प्रार्थना किसी प्रेरित से नहीं, किसी प्रलोभन से नहीं, किसी प्राप्ति के लिए नहीं, वो प्रार्थना हृदय की प्रार्थना है, व्याकुलता की, सत्यता की, जो हमने पूर्व पूर्व जन्मों में अनुभव किया, जो हमने संसार की सत्यता को जाना, जो हम सत्य और असत्य को विचार के द्वारा प्राप्त किया था, जानकर के उस अंतर्जामी हृदयेश्वर सर्वाधार उनसे प्रार्थना किया। परंतु संसार के ऐसे माया, ऐसे मोह हैं कि संसार में आते ही मैंने किया जो प्रार्थना, मैंने जो निवेदन किया कि कभी न भूलू, वही पहले भूले, उसी को पहले विस्मृत हुए, और इतनी दुर्गति इस संसार में प्राप्त किया, अनिष्ट को अपनाया, निष्ठ को छोड़ा, अनिष्ट को ही प्राप्त किया, और आज तक वही अनिष्ट को ही उठा रहना है। परंतु वो जगदीश्वर, जगदात्मा, हृदयेश्वर कभी कभी अपने अस्तित्व का प्रबोध कराते हैं कि मैं हूं और तुम्हारी ये प्रार्थना रही। परंतु विषयों की वासना से, भोगों की लिप्सा से, आकर्षण से उस अंतरात्मा की आवाज को, शब्द को हमने सुना नहीं और भोग में ही लिपट गए, लिप्त हो गए। परंतु ये जो चारों तरफ अंधकार है, यह जो अज्ञान है, यह जो मोह है, ये जो माया है, इससे जो जीव अपने को आबद्ध समझ रखा है, इस मोह अंधकार से, अज्ञान से कौन हटाने वाला है? वो तो हृदय में बैठे हैं, उन्हीं से तो हमने प्रार्थना किया था। परंतु आज हमें इस अज्ञान से कौन उठाने वाले हैं? भगवद् भक्तजन, जिस दिन ऐसा प्रतीति हो, ऐसा लगे कि हमने भोगों को अपनाया,
सुख पाने के लिए, ऐश्वर्य समृद्धि प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त किया, परंतु इतने प्राप्ति के बावजूद भी मन के एक सुनापन, एक रिक्तता, एक अभाव, एक हाहाकार अभी भी है। जब भी हम एकांत में बैठते हैं, उच्च मन के अंतस का जो भाव है, भोग ऐश्वर्य से भरा पूरा परिवार है, फिर भी कहीं न कहीं मैं अकेला हूं। भगवत भक्तजन, ये जो फीलिंग्स है अकेलापन का, ये बहुत जरूरी है अध्यात्म जीवन के लिए। उस सुनापन, उस एकाकित्व, उस अकेलापन का अनुभव जो करता है, वो फिर ढूंढता है कि इस अकेलापन को मैं कैसे मिटाऊं, और तब वो ऐसे एक अस्तित्व के पास जाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, जो इस संसार के अंधकार को काट करके, दूर करके ज्ञानमय प्रदीप को वो प्रज्वलित कर दे। और वही है गुरु। इसलिए गुरु अनायास मिल जाता है तो उसके मूल्य को हम देना नहीं चाहते नारायण। गुरु अगर मिला है तो ईश्वर के अनुग्रह है। गुरु अगर प्राप्त कर लिया तो ईश्वर के द्वारा भेजा गया है, और यही दृष्टि जो है आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी प्रतिष्ठित कर रहे हैं, कि जो आप हमारे सामने उपस्थित है, खड़े हैं, अंतवेशधारी सबसे निकृष्ट ज्योनि को ग्रहण करके आप हमारे पास उपस्थित हुए हैं, परंतु बाह्य दृष्टि से क्यों ना आप अत्यंत निकृष्ट हो, परंतु हे देव, आपके चेतना जो उस अद्वितीय चैतन्य में अनुभव है, जो एक अनुश्रुत परमात्मा शक्ति सर्वत्र विराजमान है, उस शक्ति में ही जिनकी बुद्धि और मन स्थिर है, जिनकी प्रज्ञा स्थिर है, चाहे वो चांडाल हो अथवा द्विज श्रेष्ठ क्यों न हो, वो मेरे गुरु है। इसलिए अंतिम चरण के द्वितीय तृतीय चरण में आचार्य अपने भाव को लिखते हैं,

0: जिनकी प्रज्ञा, जिनकी चेतना, जिनकी बुद्धि उसमें दृढ़ हो गया है, अर्थात जिन्होंने उस शक्ति को अथवा उस शक्ति में चित्त को टिका पाए, वो मेरे गुरु है। और हम लोग भी प्रार्थना करते हैं, इसलिए भगवत भक्तजन गुरु वो है, गुरु वे है जो इस संसार के अंधकार से, अज्ञान से हमें उस पार ले जा सकते हैं। कहां से आया कुछ भी पता नहीं है, मृत्यु के बाद कहां जाना है कुछ भी पता नहीं है, परंतु ऐसा जो एक अदृश्य अतीन्द्रिय यात्रा में आप निकलने वाले हैं, जाने वाले हैं, सोच करके घबराहट नहीं होती। अरे भाई, इस संसार में कहीं भी हम टूर में निकलते हैं, यात्रा में जाते हैं, तो क्या क्या व्यवस्था हम अपनाते हैं? रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, पूरा सर्च करके एकदम पक्का करके जाते हैं कि वहां जाने के बाद हमें कोई तकलीफ ना हो, यहां तक व्यवस्था करते हैं कि उस स्टेशन पर पहुंचने पर भी अगर कोई हमें लेने आवे तो बड़ा निश्चिंत कि हां कोई आ करके खड़ा है। इतनी व्यवस्था निश्चय खुद आपने किया, फिर भी आप बेचैन रहते हैं, निश्चिंत नहीं हो पाते हैं, जब तक मिलते नहीं, जब तक वहां पहुंचते नहीं, जब तक उस व्यक्ति से मुलाकात नहीं होती। परंतु कभी भी हमने ये कोशिश किया कि इस जीवन के, मृत्यु के बाद भी मुझे चलना है, इस जीवन में हमने जो भी किया, जो भी संग्रह किया, जो भी अपनाया, जिनको भी ग्रहण किया, वो सब हमारे साथी है, परंतु एक समय क्यों ना अत्यंत आपन अपना क्यों ना हो, उसको छोड़कर के हमें जाना है। और इस मृत्यु के इस दीवार के बाद कौन है भाई? कभी भी हमने कोशिश नहीं किया कि बस इस शरीर को छोड़कर के, इस यात्रा को छोड़कर के आगे जो स्टेशन, जहां मेरा स्टेशन है, जिस जोनी के लिए भी हमने टिकट बनाया है, वहां पर हमें कौन स्वागत करेगा? अरे जगत में जब घूमने जाते हैं, जिस स्टेशन पर पहुंचते हैं, अगर कोई अपना व्यक्ति हो, कोई होटल वाला ही क्यों ना गाड़ी लेकर आया हो, तो बड़ा निश्चिंत होते हैं। परंतु मृत्यु के बाद जो यात्रा है, उस यात्रा के लिए, उस जर्नी के लिए कौन हमें स्वागत करने वाला कौन है? जहां इस जीवन में, इस वर्तमान में, इस लोक में तो हमने सारा इकट्ठा किया, संग्रह किया, अपनाया लोगों को, तो ये लोग भी तो एक सीमा तक, फिर उसके बाद ऐसा हमने व्यवस्था किया क्या? कोई आए, कोई लेख देखे? जब संसार में व्यवस्था करके भी हम यात्रा में निकलते हैं, स्टेशन पहुंचने के पहले तक, स्टेशन में ट्रेन इन कर रहे तब तक मन में जो है एक बेचैन, एक टेंशन, क्या पता वो आया कि नहीं, क्या पता वो मिलेगा कि नहीं, क्या पता कहां होगा। परंतु कभी भी हम ये नहीं कोशिश करते कि इतने आयु गए, इतने स्टेशन हमने अतिक्रमण किया, अब हमारा डेस्टिनी पहुंचने वाला है नारायण। अभी तक हमें बेचैनी नहीं है कि हमें कोई वहां लेने के लिए आए, हमने कोई व्यवस्था नहीं किया कि हमारे साथ हमें स्वागत करने के लिए, हमें लेने के लिए कोई आए। वो जो बताने वाला है कि भाई देखो यही संसार ही सब कुछ नहीं है, वो जो निश्चय देने वाला है कि बस मृत्यु के बाद तुम्हें ये व्यक्ति स्वागत करने के लिए आने वाले हैं। जैसे ही हम उस स्टेशन पर पहुंचते हैं, ट्रेन रुकती है, फिर भी एक बेचैन होकर के चारों तरफ देखते हैं, खिड़कियों से झांकते हैं कि कोई आया, कोई मेरा नेम लिख करके खड़ा तो नहीं है, देखते हैं बेचैन होकर के। और जब मिल जाता है कि हाँ अमुक मेहतास फैमिलीज वेलकम टू, फिर कितना आनंद होता है कि हाँ बस मैं हूं, मैं अपने आप मैं हूं। परंतु ये जो मैं हूं, ये जो मिलन, कितना सुखद है। सारा टेंशन, सारा एंजाइटी, सारा दुश्चिंता खत्म। और उस व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं, वो हमारे लगेज लेते हैं, हम निकल जाते हैं। परंतु इस जीवन के जो संधिक क्षण है, जहां उतर करके मुझे और यात्रा करनी है, ये जो स्टेशन आने वाला है, वहां हमें कौन मिलेगा? कोई हमारे लिए है, हमने कुछ व्यवस्था किया, वो व्यवस्था अगर आप करना चाहते हैं तो वो व्यवस्था में एकमात्र सद्गुरु देते हैं। गुरु वो बता देते हैं कि तुम इस जीवन के यात्रा से निकलो तो तुम इस जीवन में ऐसा कुछ कर्म करो जो तुम्हें उस स्टेशन पर मृत्यु के बाद कालांत में वो सामने आकर के खड़े रहेंगे। और व्यक्ति जब उस सद्गुरु के चरण में अर्पण कर लेते हैं, इस अज्ञान अंधकार से दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं, और गुरु जब वो ज्ञान देते हैं कि है कोई और उसको तुम पुकारो, उससे परिचय प्राप्त करो, वही तुम्हें लेने के लिए आएंगे, वही तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे, तब व्यक्ति निश्चिंत होकर के इस संसार से विदा लेते हैं। कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं, बड़े निश्चिंत होकर के वो जाते हैं।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ओम शिवाय नमः। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज हिंदी स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन नायनमार पुराणम। द टाइटल इज மூர்த்தி நாயனார் புராணம், பிரசன்டட் பை ஸ்ரீ சிங்கப்பூர் சங்கர நாராயணன். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
3: ஓம் நம சிவாய். பக்தோ, அபி ஹம் சுனேங்கே ஔர் எக் சந்த் மூர்த்தியார் கி கஹானி. பாண்டியராஜ் கி ராஜதானி மதுரை மே மூர்த்தி நாம் கா எக் வைஷ்ய ரஹதா தா. சிக்கிலர் பெரிய புராணம் மே இஸ் நகரி கி பிரசம்சா மே லிகா கயா ஹை. यह वह नगरी है जो भूमंडल को नापने वाली दिव्य तमिलवाणी की सुगंधि से परिपूर्ण है। ऐसी नगरी का यह भक्त मूर्ति समस्त सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर शिवजी के प्रति समर्पित था। भगवान शिवजी के मंदिर में चंदन घिसना उसका पारंपरिक काम था, इसी में वह प्रसन्नता उत्पन्न करता था। उन्हीं दिनों कर्नाटक के वट करुणागर वंश के राजा ने मदुरई को जीतकर अपने अधिकार में ले लिया। यह राजा जैन धर्म को मानते थे और शैव संतों को सताने तथा शैव धर्म को नष्ट करना ही उनका परम उद्देश्य था। इसी उद्देश्य से उन्हें जब पता चला कि मूर्ति नायनार चंदन घिसकर भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने सेवा धर्म में बाधा डालने के लिए पूरे मदुरई नगरी में चंदन की लकड़ियां मिलना दुर्लभ कर दी। इसे देखकर मूर्ति नायनार को बहुत दुख हुआ। विचार करने लगे, चंदन की लकड़ी ही तो नहीं मिलती, चंदन घिसने में काम आने वाले मेरे हाथ तो अभी शेष हैं। यह विचार करके अपने हाथ को ही चंदन की लकड़ी की तरह पत्थर से रगड़ने लगे। मज्जा और हड्डियां घिसने लगी, रक्त की धारा बह निकली। भक्त का कष्ट प्रभु से सहन नहीं हुआ, भगवान शिवजी प्रकट हुए और मूर्तियार को पहले की भांति स्वस्थ कर दिया। आकाशवाणी सुनाई दी, वत्स, मैं तुम्हारे त्यागपूर्ण सेवा से प्रसन्न हूँ। तुम इस नगरी के शासक बनोगे। मदुरई पर बलपूर्वक अधिकार कर शासक बनने वाले वटुक राजा का अचानक देहांत हो गया। नए राजा के चुनाव के लिए मंत्रियों ने परंपरा के अनुसार राजकीय हाथी को प्रातःकाल नगरी में छोड़ दिया। हाथी ने मंदिर के द्वार पर खड़े मूर्तियार को उठाकर कंधे पर बिठा लिया। सर्वसम्मति से मूर्ति नायनार को राज्यसत्ता सौंपी गई। मूर्ति नायनार ने विभूत का अभिषेक किया। रुद्राक्ष की माला को आभूषण के रूप में धारण कर लिया और राजमुकुट के स्थान पर शीश की जटाओं को सदा धारण कर लिया। अत्यंत न्यायपूर्ण और प्रभु के प्रति भक्तिभाव से युक्त होकर मूर्ति नायनार ने शासन किया। तद्युगीन मान्यता थी कि राजा के बिना राज्य, आत्मा के बिना शरीर सदृश है, तथा सैन्य बल से युक्त राजा की सशक्त भुजाओं का संरक्षण न मिले तो जगत का जीवन स्थिर नहीं हो सकता। प्रजा के संरक्षण और निष्काम सेवा भावना के कारण मूर्ति नायनार को पेरी पुराण के संतों के संग्रह में विशेष सम्मान मिला है। कहा जाता है कि तत्कालीन पांड्य राज के राजाओं शैव भक्त थे। उस समय कर्नाटक और बाकी कई राजा जैन धर्म को मानते थे और उनका यह मानना था कि शैव धर्म को नष्ट करना है। इस उद्देश्य से वे शैव धर्म प्रतिष्ठित राज्यों पर आक्रमण करते थे और उनका शासन मिलने पर जैन धर्म को की स्थापना करते थे और शैव धर्म को मिटाने में लगे रहते थे। लेकिन शिव की कृपा पाने पर मूर्तियार के साथ ऐसी घटना हुई कि वह उस राज्य के राजा ही न बने, बल्कि उन्होंने शिव पूजा की पारंपरिक सेवा को उस राज्य में स्थापित कर दिया। इसीलिए वह एक उच्च कोटि के नायनमार या संत हुए।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिवानंद लहरी इन हिंदी, प्रेजेंटेड बाय महामंडलेश्वर स्वामी श्री आत्मानंद गिरिजी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
4: आना निश्चित है, अभी आया नहीं है। उस दुख के रोकने के लिए तुम उपाय करो। इसलिए योग का प्रयोजन क्या है? दुख को रोकने का। कौन से दुख को? गत दुख को तो गएगा, उसको रोकने का कोई प्रयोजन नहीं। वर्तमान में जो आ गया वो आ चुका है, इसलिए वो जाएगा। आ ही गया तो उसको भी रोकने का कोई प्रयत्न नहीं, कोई उपाय नहीं है। फिर किस दुख को रोकना चाहिए? बोले अनागतम। अभी आया नहीं है, लेकिन आ सकता है, आने की संभावना है। तो ये बात तुम जब जवान थे उस समय ये सोचा होता कि बढ़ोतरी में घुटने का दर्द होगा, बढ़ोतरी में कमर का दर्द भी होगा, इसलिए पहले ही जवानी में ही हमको सावधान रहना चाहिए। कम खाकर स्लिम बॉडी रखते तो घुटने का दर्द न होता। उस समय यदि तैयार किया होता तो आज घुटना दुखता न कमर दुखता। बोलो। और उस समय तो खाएगा, यही तो जवानी है, खाने का समय यही है। खाने का समय यही है, करते गए खाते गए, खाने का समय यही है। बुढ़ौती में तो खा नहीं पाएंगे, अभी तो खाने का है। और खाते गए, शरीर बढ़ता गया, अब क्या करोगे? चर्बी बढ़ती गई, अब क्या हो रहा है? हैं? अब दुख आ रहा है तो फिर रोते रहो, दुख आ रहा है। तो उस समय यदि ये सूत्र का ध्यान दिया होता, हेयम दुखम अनागतम, ये बुढ़ौती में अनेक प्रकार के रोग आएंगे, वे रोग को कैसे रोका जाए, अभी से तैयारी करो, उसी का नाम योग है। बस बुढ़ौती में करने का नाम नहीं है, पहले करने का नाम है योग। कष्ट आ जाने के बाद, समस्या आ जाने के बाद करने का नाम योग नहीं है। और आज जितनी भी योग साधना करने वाले योग अभ्यास करने के लिए आते हैं, सब रोग से ग्रसित हुए हुए ही आते हैं। कौन आते हैं? रोग से ग्रसित हुए हुए आते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा कि रोग से ग्रसित हुए हुए को योग काम नहीं करता। योग किसको काम करता है? रोग से जो ग्रसित नहीं है वो योग करेगा तो आने वाले जो रोग हैं उससे वो बच सकता है। रोग आ ही गया तो बचने का कोई उपाय नहीं है? हमको क्या पता था, पहले हमने ख्याल ही नहीं रखा। ये शरीर में मधुमेह होगा, शुगर आ जाएगा, पहले हमको पता नहीं था है? मई महीने में हम हमेशा पहले मई महीना प्रेम कुटीर करते थे, एक महीना चर्च गेट, और जून यहां करते थे। ये बहुत सालों से चल रहा है, 200-2500 साल से। लेकिन अभी प्रेम कुटीर तो हमने छोड़ दिया, 12-14 साल ही हो चुका है, वहां नहीं जाते हैं। पहले प्रेम कुटीर पहले मई करते थे और जून यहां, गर्मी का सीजन हमारा बम्बई ही होता था। तो एक बार मई में जब हम प्रेम कुटीर गए तो बहुत गर्मी बढ़ी, बहुत गर्मी था। तो वहां एक बहन थी, बहुत सेवा करती, संतों की सेवा, केवल हमारी बात नहीं, जो कोई भी वहां कथा करने के लिए कथाकार महात्मा जाते थे वो पूरी सेवा निष्ठा से सेवा करती थी। तो उन्होंने क्या किया, महाराज बहुत गर्मी हो रही है। हाँ, मैंने कहा गर्मी तो अच्छा, दूसरी बात यहां तो एसी था, वहां एसी भी नहीं था, एयर कंडीशन नहीं था, और गर्मी मई का महीना भयंकर गर्मी। तो वो क्या करती थी, सुबह ही सुबह मौसमी का जूस ला के दे दे। तो अभी एक महीना हमको वहां रहना है, उन्होंने विचार किया कि महाराज जी को रोज एक महीना मौसमी का जूस पिलाएंगे। तो एक ही बार मौसमी खरीद के ले आई, बोरा का बोरा। नौकर को कहा एक बार ले आओ, एक महीना तक महाराज जी रहेंगे, उनको जूस पिलाना है। संयोग से वो जूस मौसमी थोड़ा खट्टा निकला है, अब रस निकाल के पिए तो एकदम खट्टा। अब क्या करने लगे कि ग्लूकोज डालकर, 3-4 चम्मच ग्लूकोज डालकर वो मौसमी के रोज पिलाना शुरू कर दिए। और फिर उनके जो लंदन में कोई थे संबंधी, वहां से चॉकलेट भेज दिया उसने, स्वामी जी के लिए करके लंदन से चॉकलेट आ गया इतना। और हम फिर चॉकलेट भी खाना शुरू कर दिए हैं, और ग्लूकोज डाल डाल के मौसमी पीने शुरू कर दिया, कोका कोला पीने शुरू कर दिए। बोलो अब क्या होगा, बोलो है? डाया भाई की बेटी तो आना निश्चित ही था, आ गई डाया भाई की बेटी। ये डाया भाई की बेटी के लिए कोई जवान व्यक्ति पसंद नहीं आता है, वो उसको तो बुढ़ा ही चाहिए है? कैसी है पता नहीं, वो डाया भाई की बेटी आ गई। अब हमको तो पता नहीं, आप खूब खाए आम, फिर मई महीने तो फिर आपूस आम, सुबह भी आम शाम को भी आम, सब चीज एक ही साथ पड़ा। अब हमने ख्याल ही नहीं रखा कि इसका ये रिएक्शन होगा, खाते गए। वहां के बाद जब यहां आए, यहां भी वही शुरू हो गया। ये तो भगवान की, भगवान शिव की क्या पता नहीं कहां से क्या प्रेरणा हुई कि हमारे प्रतिमा बहन आजकल नहीं आती है, बीमार हो गई। उसको बेटे ने अमेरिका से वो क्या बोलते हैं उसको, मशीन आता है ना, टच वन है, वन टच डायबिटीज चेक करने का, वन टच होता है ना, एक ही बार पिन करो फिर स्ट्रिप में, मशीन भेजा। तो उसने कहा बेटे ने मशीन भेज दिया स्वामी जी। हमने कहा कैसा दिखाओ, लेके आई, खोल के दिखाया। उसने कहा कि आपका टेस्ट करते हैं। तो ओपनिंग ही हमसे करना चाहती थी वो, आपसे ओपनिंग करें, ये भगवान शिव की ही कृपा थी भाई। जब उसने मशीन खोला, सेट किया पढ़ के, और लोई निकाला और उसमें लगाया, तो वो काउंटिंग शुरू हुआ। तो कितना हुआ था पता है तुम लोगों को? 393। अभी भी वो 393 वो याद है, बाई हार्ट है, पहली बार वो तो घबरा गए, स्वामी जी क्या हुआ, आपको तो शुगर बहुत भयंकर है। अरे भाई नहीं है भाई, हमारे को कोई शुगर शगर नहीं है, तो शायद इसको ऑपरेट कर नहीं पा रही है ठीक से। फिर उसने पढ़ा, इधर किया उधर किया, फिर दोबारा टच किया, फिर टेस्ट करते, फिर वही 393 94, एक पॉइंट और बढ़ गया उतने में। तो फिर डॉक्टर अतुल को कहा कि स्वामी जी को ऐसा ऐसा

हैं, आराम से रह रही है तो तलाक क्यों लेगी वो? शायद हम कहीं पसीना बहाना शुरू कर दें, मेहनत करना शुरू कर दें, पैदल चलना शुरू कर दें, खेत फावड़ा चलाना शुरू कर दें, लकड़ी काटना शुरू करें, शरीर से खूब पसीना बहा दें, तो वो क्या सोचेगी ये अब काम करने लग गया, इसके पास रहना ठीक नहीं है। शायद तब जा सकती है, लेकिन इतनी फैसिलिटी है तो अब कहां से जाएगी वो? रोज लोगों के घर खाना खाना है, एक ही भी नहीं है, हजार वेराइटी महाराज, कई नहीं, एक दिवस तो चाल से, तो खिलाने वालों के लिए एक दिवस है। आप क्या रोज आओ छो, तुम्हें साल में एक बार आओ छो, तो एक दिवस तो चाल से। अरे भाई तुम्हारे लिए एक दिन है, यहां तो रोज है, है? आज उसके यहां, कल उसके यहां, कल उसके यहां, कल उसके यहां। तो अब ये डायवाइट की बेटी क्या तलाक लेगी? है निश्चिंत बैठी है, बैठे रहो, हम भी कहते हैं बैठे रहो। चलो आज कहां गए हम लोग बोलो। हाँ ये देखो हठ योग क्या है, तो वह प्रारब्ध भी छूता नहीं, जब तक आप निर्विकल्प समाधि में रहेंगे आपका प्रारब्ध भी प्रतीक्षा करता रहेगा। ऐसा नहीं कि आप निर्विकल्प समाधि में बैठे रहे तब तक प्रारब्ध आया गया तुमको पता ही नहीं चला। यदि तुमको पता नहीं चला तो प्रारब्ध सार्थक नहीं होगा। हाँ ये प्रारब्ध कैसा है पता है? यदि तुमको किसी से अनबन हुई और उसको तुमने खूब गाली दी और तुम्हारे गाली को वो हंसते हुए सुनता रहा तो तुमको ग्लानी होगी कि इतना गाली देने पर भी वो नहीं सुन रहा है तो इसको गाली देना ही बेकार है। कहेंगे कि नहीं सुन लो, तुमने गाली दिया और तुरंत सुनते ही वो एक्शन में आ गया तो तुम्हारा गाली देना सार्थक हुआ। गाली दिया वो एक्शन में नहीं आया तो गाली बेकार गया कि नहीं है? गाली बेकार चला गया। इसी तरह प्रारब्ध आवे और जिसका प्रारब्ध है उसको प्रारब्ध आया ये पता न चले तो प्रारब्ध का क्या प्रयोजन हुआ? उसको पता चलाना चलना चाहिए, शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों उस जिसका प्रारब्ध है उसको अनुभूति होनी चाहिए। हैं ये अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, वेदना होनी चाहिए। वेदना का अर्थ अनुभव, अनुकूल का सुख भी अनुभव होना चाहिए, प्रतिकूल का दुख भी अनुभव होगा तो भोक्ता को अनुभव होगा तो प्रारब्ध सार्थक हुआ, भोक्ता को अनुभव नहीं हुआ प्रारब्ध निरर्थक। इसका मतलब प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा ऐसा नहीं, वो प्रतीक्षा करता रहेगा जब तक तुम उसके वेदन यानी अनुभवकर्ता के रूप में तैयार नहीं होगे तब तक प्रारब्ध क्षय नहीं होगा, प्रतीक्षा करता रहेगा। तो शंकराचार्य ने कहा सौवर ऋषि कितने वर्ष तक रहे जल में, भागवत में लिखा नौवां स्कंद पढ़ लो, सौवर ऋषि के सारे करतूत। हाँ 10,000 वर्ष तक जल के अंदर बैठे निर्विकल्प समाधि में, प्रारब्ध और वासना प्रतीक्षा करके बैठा है, वो बिल्ली की तरह जो चूहे निकलेगा तो मैं झपट लू। सौवरी ऋषि ने जैसे आंख खोली झपट लिया उसने, तुरंत पकड़ लिया, प्रारब्ध और वासना दोनों ने पकड़ लिया। देखो यदि राजयोग में लगे होते तो वासना क्षय हुआ चुका होता, प्रारब्ध रहता तो केवल प्रारब्ध पकड़ता, क्रिया योग में लगा हुआ होने के कारण वासना भी क्षय नहीं हुआ था तो वासना भी प्रतीक्षा कर रही थी और प्रारब्ध भी प्रतीक्षा कर रहा था, दोनों ने झपट लिया एक ही साथ, और सौवर ऋषि अकेला और झपटने वाले शत्रु दो, पकड़ लिया दोनों तरफ से। क्या हुआ नाटक आगे तो आपको पता ही है, हमको बताने की जरूरत है? है आपके सामने ही हुआ है ना सौर ऋषि की घटना, है आपके सामने हुआ ना? अरे रोज अपने साथ ही हो रहा है उनकी घटनाएं, पकड़ लिया और मछली की क्रीड़ाओं को देखते ही बस प्रारब्ध और वासना

0: दोनों ने आक्रमण कर ली तो बोले आहा जिंदगी तो ये है जीवन का रहस्य, सारा जीवन का सार तो यही है। ये 10,000 वर्ष तक मैंने ऐसे ही प्रारब्ध बेकार समय वैसे ही बर्बाद कर दिया। क्या जीवन देखो, ये मछलियों के जोड़े आपस में क्रीड़ा करते हुए देखा तो फिर निकले पानी के बाहर, और उस समय मानदाता ऋषि के यहां पहुंच, मानदाता राजा के यहां पहुंच गए, उनको पता चला कि इनके यहां 50 कन्याएं हैं एक से एक सुंदर। बस याचना कर ली कि राजन मेरी इच्छा है कि एक कन्या तुम मुझे दो, मुझे संसार करने की इच्छा है। वो राजा बड़ा असमंजस, 10,000 वर्ष पानी के अंदर बैठा, शरीर तो अन्न खोजता है, शरीर क्या खोजता है, अन्न खोजता है, अन्न नहीं खाया था इसलिए शरीर हट्टा कट्टा तो था नहीं, बूढ़ा सूखा हुआ पीला पड़ा हुआ था। राजा ने कहा कि इतनी सुंदर कन्या मेरी है अप्सरा जैसी, और ऐसे ये बूढ़ा और खसोट को दे दूं, कन्या क्या कहेगी, कहीं मेरी कन्या ये नहीं कहे इस तरह यदि ऐसे बूढ़ों के साथ ब्याह कराना था तो पैदा होते ही क्यों नहीं मारा हमको, कितनी पीड़ा होगी उसको। अब यदि नहीं कहता हूं तो ये तपस्वी खतरनाक है, श्राप दे देगा, सारा कुल नाश भी हो सकता है, क्या करूं। तो विचार किया कि महाराज आप जाइए, जो आपको पसंद करे उससे आप शादी कर लो। राजा ये समझता था कि इस बूढ़े को देखकर कोई भी पसंद नहीं करेगा, कह दिया जो पसंद करेगा उससे शादी कर लो। सौवरी ऋषि समझ गया कि राजा की बदमाशी चलाकी चल रहा है, वो ये शरीर को देखकर विचार कर रहा है कि कोई भी पसंद नहीं करेंगे, समझता होगा मैं वहां पहुंचने से पहले अपने शरीर को ही कायाकल्प कर लेता हूं। तुरंत योगी तो थे ही, संकल्प कर ली, शरीर तो ऐसा युवा शरीर दे दीप्यमान, क्या दिव्य शरीर, भागवत में आता है ना साक्षात मन मत है। कृष्ण को जब गोपियों ने देखा ऐसा सुंदर देखा कि ऐसा लगता है कि साक्षात कामदेव ही यहां आ गया है। आप लोग दही को मतते हो लेकिन मन को मतते हो कि नहीं, मत मन को मतने क्षमता आप लोगों में निकाली, दही मतते जाओ है। लेकिन गोपियां क्या करती थी, दही मथती थी, और कृष्ण क्या करते थे, मन को मथते थे, दोनों ही मथने का काम करते हैं। वो तो साक्षात मन मत मथने दिन लग गए, तब सब ने संकल्प कर लिया यदि पति होगा तो यही होगा, बस यदि पति होगा यही होगा, इससे अलावा और कोई दूसरा पति नहीं होगा। हर कन्या सौवरे ऋषि के हाथ पकड़कर कहने लगे कि हम मेरा अनुग्रह करो, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो, मुझे अनुग्रहित करो। अब तो कहां एक की कामना आ गए 50, सृष्टि क्या हुआ होगा उनकी, उनका आप लोगों से पूछ रहा हूं, एक ही से आप लोग तंग हो गए हो, 50ों से क्या होता होगा, बोलो। भागवत लिखा है एक एक से 10-10 बच्चे हुए तो कितना बड़ा हुआ कुटुंब है, 50 × 10 है, 10 को 50 से गुणा करो 500, 5000 ले जी। अब वो 50 हुआ 5050 और खुद अपने 5051, इतना बड़ा कुटुंब के बीच में सौवरी ऋषि को रहना पड़ रहा है। योग की एक विशेषता है, भोगने के बाद योग शक्ति क्षय होता है, योग साधना के द्वारा जो शक्ति संचय किया हुआ होता है वो शक्ति जब तक भोग में प्रयोग नहीं करोगे तब तक तो वो शक्ति संचित रहेगा, और जहां तुमने उस शक्ति का भोग में प्रयोग किया कि शक्ति क्षय होने लग जाएगा। ये देते हैं कर्मचित लोकक्षीयते एवं एवा मूत्र पुण्यचित लोकक्षीयते, क्योंकि योग भी तो तुम्हारे प्रयत्न से हुआ है, उसलिए उस योग का जहां तुमने भोग किया कर्मजन्य होने के कारण, योग भी तो कर्मजन्य है, योग विचारजन्य तो है ही नहीं, ज्ञानजन्य तो है ही नहीं, कर्मजन्य है, इसलिए वो नाशवान है। अब तो इतना बड़ा कुटुंब को संभालते संभालते योग सिद्धि भी खत्म हो गई तो अब क्या करोगे, रोने लग गए, छोड़े भागे, ऐसे भागे सौवरे ऋषि वहां से किसी को पता ही न चले, भाग गए जंगल में गए। तो वहां एक महात्मा बैठा हुआ था, क्या हुआ सौवरे ऋषि? बोले महाराज मैं तो बुरा फंस गया। कैसे? बोले कहां 10,000 वर्ष पानी में समाधि लेकर निर्विकल्प समाधि में बैठा था, निकला पानी से बाहर तो ये झंझट, और एक की कामना की थी तो 50 आ गए, और 50 से 5,000 हो गए, अब मैं तो समस्या में फंस गया महाराज, अब मैं क्या करूं? तब फिर महात्मा ने कहा, अरे सौवरे ऋषि तुमने शुरुआत ही गलत की। क्या महाराज? तुमने मन को नियंत्रण करके अष्टांग योग और हठ योग के माध्यम से निर्विकल्प समाधि में गए, शिव योग नहीं किया। और यदि तुमने उस समय अपना मन शिव में लगा दिया होता तो आज तुमके सामने ये समस्या ना आती, तो उस समय तुम हट करने लग गए। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपने जो मन है वो शिव के चरण में अर्पण कर दो, वो होगा शिव योग। मन का और शिव का जब जोड़ होगा, योग होगा, उसका नाम शिव योग, उसी से तुम्हारा उद्धार हो सकता है, अन्यथा उद्धार नहीं हो सकता। तब उन्होंने पंचाक्षरी दीक्षा दी और वहीं अपने ध्यान किया, भगवान शिव की अनन्य भक्ति करने लग गए और सारे झंझट से मुक्ति मिली उनको, सौवरे ऋषि को। तो शंकराचार्य शायद उस प्रसंग को भी यहां स्मरण कर रहे हैं, उधर मांडव्य ऋषि का भी स्मरण किया, इधर सौवरे ऋषियों का भी ऋषि का भी स्मरण किया। हाँ, गुहायां गेहे वा बहिरपि बने वा दृश्य करे जले वा वन्नौवा वसतु वसते किं बद फलम। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, भयंकर गर्मी के समय में शरीर बिल्कुल नंगा करके पंचाग्नि तपस्या करते हैं और उसको योग कहा है। क्या कर रहे हो? बोले योग कर रहे हैं, हठ योग। कैसा है हठ योग? तो बोले 5 जगह अग्नि जलाकर बीच में नंगे बैठते हैं और अग्नि धधक रही है। अब ये भी योग करते, देखो ऐसे को भगवान श्री कृष्ण ने भी बहुत व्यंग किया है। कर्षयस्त शरीरस्तम भूत ग्राम अचेतस, चित्त को हृदय को अर्पण न करके इस प्रकार के जो योग करता है वह वास्तव में जड़मती है, अचेतस है, वह भूत ग्राम प्राणी समूह अज्ञानी। कर्षयंती शरीरस्थम, उसी के शरीर में रहने वाले मुझे ही कष्ट पहुंचाते हैं। किसके नाम पर? योग के नाम पर, ले जी हठ के नाम पर। वो ये नहीं कर समझते हैं कि योग का अर्थ होता है चित्त को लगाना, और चित्त को तो लगाएंगे नहीं, शरीर को जलाएंगे। शरीर का ही मान लो कि यही शरीर ही सब पाप का घर है, और समझते हैं कि शरीर ठीक हो जाएगा तो सब, अरे मन सारा पाप का घर तो मन है, सारा पाप का घर तो मन है भाई, और पाप शरीर में भी नहीं रहता, पाप तो फिर मन में ही रहता। मर के जाओगे तो शरीर यहीं रहेगा कि नहीं, और मन तुम्हारे साथ रहेगा कि नहीं? तब पाप शरीर में रहता है तो तुम तो पाप मुक्त हो जाओगे, है? तो जाओगे तो फिर पाप तुम्हारे पास रहेगा नहीं, तो मर गए तो सारे पाप खत्म। तो इसी तरह फिर मर गए तो पुण्य भी तो खत्म। पाप और पुण्य यदि शरीर में रहता है, यदि मानेंगे तो मर के जाने वाला का शरीर तो यहीं जला देंगे, राख हो जाएगा चंदनवाड़ी में है? तब तुम्हारे पीछे जाएगा पाप और पुण्य? लेकिन जाता है कि नहीं? इसीलिए पाप पुण्य ये कर्म, कर्म का संस्कार वासना ये स्थूल शरीर में नहीं रहता, ये तुम्हारे हृदय में रहता है, सूक्ष्म शरीर में रहता है, क्योंकि वही तुम्हारे साथ जाने वाला है, तो उसमें जो है वो भी साथ में चला गया, गया कि नहीं? उसमें जो है वो भी साथ में चला गया। तब उसी को अर्पण करो, परमात्मा को। जले वा वन्नौवा वसतु वसते किं बद फलम। ये भक्ति का प्रसंग है इसीलिए बता देना बहुत जरूरी हो। महात्मा लोग एक दृष्टांत देते हैं, कोई ये बहुत बड़े सिद्ध योगी थे, महात्मा थे, उन महात्मा के दो चेले थे, एक हठ योगी, दूसरा परम भक्त, भगवान का अनन्य भक्त था। एक हठ योगी था, हठ योगी ने तो यह निश्चय कर लिया कि मैं कठोर से कठोर साधना करूं और जल्दी से जल्दी भगवान का दर्शन कर लूं, कठोर से कठोर, कठिन से कठिन तपस्या करके भगवान का जल्दी से जल्दी दर्शन कर लूं। उसने ये निश्चय कर लिया, बस पंचाग्नि तापना शुरू कर दिया। हठयोगी बैठ गया, केवल एक कौपिन धारण की और पांच जगह आग लगाई, बीच में बैठा, वो भी गर्मी के महीने हैं, मई जून के महीने, मई जून के महीने में इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, कानपुर, अब आजकल तो अहमदाबाद में भी वैसे ही होता है, नहीं बहुत होता है, 45-47 तक जाता है अहमदाबाद में भी टेम्परेचर, कितना गर्मी होता है जहां 45-50 तक टेम्परेचर जावे, ऐसी जगह भी फिर आग जलाकर बीच में बैठे, कम कठिन है, कल्पना भी नहीं कर सकते हम तो, बंबई वाले तो यहां तो कुछ भी नहीं है टेम्परेचर, अहमदाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस के टेम्परेचर के सामने 47-48, आगरा देख लो, मथुरा वृंदावन, यहां तो कभी भी शायद 35-36 से ऊपर नहीं जाता है, जाता है बंबई हैं? 40 पहुंचने के तो कल्पना ही मत करो, तो यही भी सब हो, बहुत गर्मी छे, बहुत गर्मी छे बोलते हैं, और तुम पंचाग्नि तपोगे? उसने पंचाग्नि तापना शुरू कर दिया, किसलिए? बोले जल्दी से जल्दी भगवान का दर्शन करो, और दूसरा सा भगवान का भक्त, वो तो भक्ति भजन शुरू कर दिया, को भजन, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, श्री कृष्ण शरणम मम, बस लग गया कीर्तन में लग गया। कहते एक दिन नारद जी घूमते हुए पहुंच के, कहानी सुना है कई बार तुम लोगों ने, प्रासंगिक है, मैं फिर भी सुना देता हूं। तो कहते नारद जी मिल गए उस हठ योगी के पास, नारद जी ने पूछा कि ये क्या कर रहा है इतना कठोर, तो ये क्या कर रहा है, आग जलाकर उसके बीच में बैठा है? बोले मैं हठ योग कर रहा हूं, पंचाग्नि ताप रहा हूं। नारद जी पूछा कि क्यों? बोले जल्दी से जल्दी भगवान के दर्शन करना है, इसके लिए मैं कठोर तपस्या कर रहा हूं। अच्छा आप कौन है? बोले मैं नारद हूं। तो आप कहां जाने वाले? बोले वैकुंठ जा रहा हूं सीधे ही। तो आप सीधे वैकुंठ जा सकते? बोले हां। कैसे? बोले भगवान ने हमको एक अलग स्पेशल शरीर दिया है और उनके दिए हुए शरीर से हम सीधे वैकुंठ जा सकते हैं। भगवान का दिया हुआ जो शरीर था उस शरीर से सीधे वैकुंठ जा सकते हैं कौन? नारद जी। वीजा लेने नहीं पड़ता उस शरीर में। नारद जी अमेरिका जा सकते हैं उस शरीर से? वीजा लेना नहीं पड़ेगा, सच बात कह रहा हूं। तो फिर नरक जा सकते हैं कि नहीं? वीजा लेना पड़ेगा नरक के लिए हैं? अरे भाई नरक में भगवान है कि नहीं? यदि भगवान नरक में रह सकते हैं तो नारद जी को भगवान को दर्शन करने नरक जाने में क्या आपत्ति। सर्वव्यापक होने के कारण सब जगह है, इसलिए नारद जी सब जगह जा सकते हैं। और नरक जाने के लिए जो कर्म चाहिए वो कर्म नहीं होगा और न जाए वो बात अलग चीज है, लेकिन उनको कोई अड़चन नहीं, अबाधित गति है उनकी, कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा आप वैकुंठ जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने, बोले हां, तो आप भगवान से हमारी बात कह देना कि एक भक्त इस प्रकार का कठोर तपस्या कर रहा है आपके दर्शन के लिए, तो कब दर्शन देने आने वाले हैं आप पूछ लेना, हमारी बात कह देना उनको, पूछ लेना। बोले ठीक है, कह देंगे। आगे बढ़े तो कीर्तन कर रहा है मस्ती से नाच रहा है, कीर्तन कर रहा है। उन्होंने कहा ये क्या कर रहा है? बोले भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। बोले क्यों? तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी भगवान का दर्शन हो, इसलिए मैंने सब चिंतन छोड़कर कीर्तन करना शुरू किया। तो आप कौन? बोले नारद। कहां जा रहे हैं? वैकुंठ। भगवान के यहां। अच्छा तो उनको भी हमारी बात भी कह देना, भाई आपका भक्त इस तरह आपके लिए, भगवान आपके लिए भजन कर रहा है, उसको दर्शन देने के लिए कब जाने वाले हैं, पूछ लेना। बोले ठीक है, पूछ लेते हैं। नारद जी पहुंचे, सारा हाल खबर विश्व का बताया, तो कहा कि महाराज आपको पता है? भगवान ने कहा क्या बेटा? बोले मर्त्यलोक में मैं आते समय दो आदमी आपके दर्शन के लिए तपस्या कर रहे हैं, एक तो बड़ा कठोर तपस्या कर रहा है, पंचाग्नि ताप रहा है। हमने कहा ये क्यों कर रहा है? तो बोले आपके दर्शन करने की इच्छा से। तो आप बता दीजिए तो उसको दर्शन देने के लिए आप कब जाने वाले हैं, बता दे, क्योंकि हमको लौट के जाएंगे तो फिर उसको बताना है आपका रिपोर्ट। तब दूसरा, जो आपके दर्शन के लिए भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, नाच रहा है, उसको दर्शन देने के लिए कब जाएंगे, बता दो। तो भगवान ने कहा, कहते हैं नारद जी को, वो जो पंचाग्नि तप रहा है ना, उसको जाके कह देना इसी तरह पांच जन्म तक। कब तक? पांच जन्म तक पैदा हो, पंचाग्नि तपे, तपते तपते मरे, फिर पैदा हो, फिर पंचाग्नि तपे, तपते तपते मरे, फिर पैदा हो, पंचाग्नि तपे, तपते तपते मरे, पांच जन्म जब पूरा होगा तब मैं उसको दर्शन देने के लिए जाऊंगा, बोल देना।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

राज्य नमः शिवाय शिवतराज शिवतराज सदघन चिदघन आनंद घन कल्याण गुणगण निलय अव्यक्त अविनाशी सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार करुणा वरुणालय प्रभु की असीम अहेतु की कृपा के साथ हर वर्ष की न्याही प्रेमपुरी आध्यात्म विद्या भवन के इस पावन सभागार में बैठे हुए प्रातःकाल की इस पावन बेला में नाना नामों में नाना रूपों में उपस्थित मेरी अपनी ही पवित्र प्रिय अभिन्न आत्मा, अब की बार भगवत चर्चा। गिरीश भाई के मेरे को फोन आते रहे कि माता जी आप बोलेंगे किस विषय में, और प्राय वो दिन था शायद सोमवार का और सावन का महीना, तो मैंने कह दिया शंकर जी पर बोलूंगी, शिव महिमा पर। बार बार पूछ रहे थे किस विषय पे बोलेंगे गिरीश भाई अपने चिमन भाई, तो विषय तो कुछ सोचा नहीं था, और फोन आ रहे थे मुझे इनको हमें जाहिरात करनी है, बतानी है, बताओ बताओ। और ये सच बात है कि मैं पूर्व कुछ निश्चित नहीं करती हूँ, ठीक है, उस समय जो प्रेरणा होगी जो मन में आएगा बोलना, तो भगवान का ही नाम है वाचा रमणम नाम अधेयम, ये तो एक नाम का भेद मात्र है, तत्वतः तो एक ही है, चाहे उसे शिव कहो चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो चाहे नारायण कहो, अनेक नाम है, अनेक नामों में अनेक रूपों में जो सर्वत्र परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा है, व्यापक सनातन नित्य शुद्ध मुक्त परम तत्व, वो तो एक ही है, एक ही अविनाशी है, परंतु नाम रूप के द्वारा हमने उन्हें अलग अलग किया हुआ है। बोले इन नाम रूपों की बड़ी भारी महिमा है, नाम रूप से रचा हुआ ये संपूर्ण जगत है, जगत दो ही चीजें हैं, नाम और रूप, और हम लोगों को अच्छा अभ्यास है नाम रूप के सहारे अपने मन को चलाने का, मन को दौड़ाने का, तो इसीलिए मन संसार की ओर चलता है बोले नाम रूप के पीछे, और इस संसार से मन को हटाने का उपाय भी एक ही है, नाम रूप का आश्रय, भगवान के नाम और रूप का आश्रय लेकर के संसार को से अपने मन को बड़ी सहज रीति से निकाला जा सकता है, तो इसलिए भगवान के नाम का परम आश्रय लें, वो चाहे कोई भी नाम हो, तो उसमें जो आदि सनातन शिव है, मैंने कहा शिव महिमा पर बोलेंगे, शिव कहते हैं कल्याण को, शिव कहते हैं मंगल को, शिव का अर्थ होता है शुभ, जहाँ शिव नहीं वहाँ शुभ कैसा, शिव शुभ है, कल्याण है, मंगल है, और हम सब लोगों की चाह क्या है, हम सब यही चाहते हैं कि हमारा शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो, और हम सब के लिए, अपने लिए ही नहीं सबके लिए कल्याण की भावना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई दुखी नहीं है, सब सुखी हो, तो सब सुखी किससे होंगे, सबका कल्याण किससे होगा, सबका मंगल किससे होगा, बोले मंगलम मंगलानाम, मंगलों में जो मंगल, और पावनम पावनानाम, जो पावन में पावनता प्रदान करे, मंगल में मंगलता प्रदान करे, और जो सर्वत्र शुभ प्रदान करे, उसी का नाम तो शिव होता है, शिव ब्रह्मा भी हैं, शिव विष्णु भी हैं, और शिव रुद्र भी हैं, और शिव शक्ति भी हैं, शिव गणेश भी हैं, शिव नारायण भी हैं, अर्थात शिव के अनंत अनंत रूप हैं, अनंत अनंत नाम है, और शिव स्वरूप, ये शिव कौन, बोले ये शिव के रूप में विराजमान साक्षात आपके हृदय में जो विद्यमान नारायण है, आत्मा है, वही शिव है, इसलिए शिव कोई अन्यत्र नहीं, शिव तो निज स्वरूप है, इसीलिए तो आत्माष्टक आप बड़े सुंदर ढंग से पाठ करते हैं, शिवोहम शिवोहम, जो शिव स्वरूप है, जो शिव, इसीलिए कहा तन्मय मन शिव संकल्प मस्तु, उस शिव की महिमा, जो शिव
सर्वव्यापक है, जो परिपूर्ण तत्व है वही शिव है नारायण। और शिव के लिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की कुछ ऐसी परंपराएं हैं कि वेद हमारे पंचदेव उपासना का विधान बताते हैं, वेदों ने भगवान के दोनों स्वरूपों का निरूपण किया। भगवान सर्वगुण भी हैं और साकार भी हैं, परमात्मा निर्गुण भी है और निराकार भी है। निर्गुण निराकार को समझने के लिए, निर्गुण निराकार को समझने के लिए साकार है, यदि साकार न हो तो निराकार कैसे समझा जाए, और यदि निराकार न हो तो फिर ये सगुण साकार कैसे ये न हो। तो इसलिए वो निर्गुण भी होते हुए, निर्गुण का मतलब ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई गुण नहीं है, निर्गुण का मतलब ये नहीं है, अर्थात जो निर्गुण जिनके गुण निरंतर अर्थात जिनके गुण अनंतर हैं, जिनके कौन सा गुण उनमें नहीं है, जो अनंत गुण, अनंत नाम नहीं है। कहने का अर्थ नहीं है कि उसका कोई नाम नहीं है, माने नाम उसके इतने अनंत हैं कि कौन सा नाम नहीं है, कौन सा रूप नहीं है, अर्थात वो अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत गुण। ये गुण नाम क्रिया के साथ जैसे जैसे परमात्मा अपने अनंत रूपों में अव्यक्त परमात्मा व्यक्त करके प्रकट करते हैं, प्रकट कैसे करते हैं, बोले अनंत रामों से, अनंत रूपों से, परंतु उन अनंत नाम रूप में प्रथम चार पांच नाम और पांच रूप बड़े प्रधान हैं। इसको कहते हैं पंचोपासना, पंचदेव उपासना। उपासना वेद की जो पद्धति है उसमें दो, जो उपासना की पद्धति है उसमें पंचदेव उपासना सनातन काल से चली आ रही है। सनातन धर्म का मतलब क्या है, बोले जो सनातन काल से, वेदोक्त काल से चली आ रही है निरंतर पंचदेव उपासना। अनंत नामों में, अनंत रूप में पांच देवता, जो पांच में एक तो प्रत्यक्ष सूर्य भगवान है, सूर्य नारायण, सूर्य देव हैं, और गणेश जी हैं, भगवती दुर्गा हैं, भगवान शिव हैं और भगवान श्री हरि विष्णु हैं। ये पंच देव हैं। इन पंच देवों में सूर्य नारायण और भगवान नारायण, जिन्हें सत्य नारायण कहो, लक्ष्मी नारायण कहो, वद्री नारायण कहो, नर नारायण कहो, अर्थात ये तो एक ही है। सूर्य और नारायण एक है। ये पंचदेव में गणपति, भगवती दुर्गा और भगवान शिव, ये सदा शिव है, पराम्बा, ये भगवती शिवा है और उनके संग में नित्य विराजने वाले भगवान शिव हैं, अर्थात परमेश्वरी और परमेश्वर। परमेश्वरी पराम्बा के साथ जो भगवान शिव और उनके संग में सर्व विघ्न विनाशक भगवान गणेश, ये तीनों तो एक साथ हैं। प्राय आपने ये मूर्ति का दर्शन किया होगा, गौरी शंकर के संग गोद में विराजमान हैं, बोले कौन, भगवान श्री गणेश। तो गणेश तो गणनायक हैं, प्रथम देव हैं, और ये तीनों एक हैं। अर्थात बात क्या आई, बात ये आई कि नारायण और शिव, हरि और हर, वास्तव में क्या ये दो हैं, बोले नाना ये दो नहीं है, हरि हर की सनातन एकात्मता है, सनातन रूप से एक है, कभी नारायण तो कभी शिव, कभी शिव तो कभी नारायण, नारायण और शिव में कभी कोई भेद नहीं है। अर्थात शिव द्रोही मम दास कहावे, भगवान कहते हैं जो शिव का द्रोही है, शिव के साथ द्रोह करता है और मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता है, वो नर तो मुझे कभी भी प्रिय नहीं हो सकता, वो कभी मेरा उपासक नहीं हो सकता। अर्थात ये दोनों
एक हैं कहने के लिए अनेक हैं, दो हैं पर वास्तव में दो नहीं है, वो एक ही है। जैसे रुपए का सिक्का एक होता है और उसके भाग दो होते हैं, दो भाग में दिखने वाला सिक्का एक है, उसी तरह से सनातन परिपूर्ण तत्व तो एक है। तत्व तो एक हो, एक हो हम द्वितीय एक होते हुए भी वो दो रूप में, अर्थात जैसे द्वितीय दो दूसरा नहीं है, पर दूसरा न होने पर भी दूसरा अपने आप को कर लेता, प्रकट करता है इस रूप में, जिससे कि उन्हें सृष्टि की जगत की ये लीला खेल खेलना होता है भगवान शिव के संग। इसीलिए भगवती की जब पूजा की जाती है तो कहते हैं पार्वती परमेश्वर अर्थात कलो चंडी विनायका, कलो उमा महेश्वर, शक्ति महेश्वर, शक्ति के संग या तो महेश्वर की पूजा होगी और शक्ति के संग गणपति की पूजा होगी, गणेश जी और भगवती अंबिका की पूजा और अथवा शंकर और पार्वती की पूजा। तो ये दोनों रूप तीनों तो एक ही हैं, इसलिए ये पंच देव आराधना हम सबों के लिए नित्य मंगलकारी है, नित्य कल्याणकारी है और नित्य ही ये हम सब के लिए शुभ करने वाली है। इनमें से किसी को छोड़ करके कोई व्यक्ति सोचे कि हमें मंगल की प्राप्ति हो, कल्याण की प्राप्ति हो, सो संभव नहीं नारायण। इसलिए आइए इनमें से जो आदि सनातन भगवान सदा शिव है, शिव समान को दाता नहीं, शिव के समान भला और कौन दाता है। शिव की महिमा इतनी अपरंपार है, जिसको महिमन स्तोत्र में आप कहते हैं महिमना पारंते, महिमा जिसकी अपार है, जिसकी महिमा का कोई पारावार नहीं है। बोले ये महिमा, शिव महिमा हमें श्रवण करनी चाहिए। बोले कीर्ति का श्रवण करो, यश का श्रवण करो, श्रवण करने से हमारी उपासना में तीव्रता आती है। सुनना क्यों है, श्रवण क्यों करें? बोले जीवन में, उपासना में, भक्ति में तीव्रता लाने के लिए, उसमें गति लाने के लिए, गतिशील होनी चाहिए, गति देने के लिए हम अपनी उपासना, हम शिव भक्त हैं ऐसा मान करके अपने आप को ठहरा न ले वहीं पर, अर्थात हमारी भक्ति में, हमारी उपासना में इतनी तीव्रता हो, गति हो कि हमारे अंदर आतुरता आए कि हमें भगवान शिव की प्राप्ति हो। उस तीव्रता को लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बोले भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। जब तक तीव्रता नहीं होगी, बात तीव्रता लाने की है। ये महिमा इसलिए सुनाई जा रही है कि पंचदेव उपासना के मार्ग में जो हमारी स्थिरता आ गई है, क्योंकि तीव्रता नहीं होगी तो याद रखना प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए बार बार के निरंतर के श्रवण करने से, एक बार नहीं अनेक बार, अनेक बार किसी के विषय में सुना जाता है तो सुनते सुनते सुनते उसमें हमारे भीतर आतुरता आती है कि जिसके लिए हम इतना सुन रहे हैं वो हमें मिले तो सही, परमात्मा मिले तो सही, शिव मिले तो सही। ऐसी आतुरता अपने भीतर लाने के लिए हमें उनकी महिमा का श्रवण करना चाहिए। बोले पहली भक्ति है श्रवण, सुनने से तीव्रता आती है। तो क्या सुनना चाहिए? बोले भगवान की कीर्ति सुननी चाहिए, भगवान का यश सुनना चाहिए, भगवान की महिमा सुननी चाहिए। श्रवण करने के लिए महिमा है, तो इस महिमा का श्रवण करें, शिव की महिमा का श्रवण करें। महिम न पारंते, उनकी महिमा इतनी अपरंपार है कि जिस महिमा को स्वयं शारदा माँ भी उनकी महिमा का गान करने लगे ना, आप लोग निरंतर बोलते हैं।

0: कालम तदवित भगुणानाम ईश पारम नयाति, कि स्वयं शारदा मां भी तीनों कालों का पर्याप्त समय लेकर के और सब वनों की लेखनी बनाकर, सब समुद्रों की स्याही बनाकर, अखंड ब्रह्मांड का कागज बनाकर सर्व काल में लिखना चाहें तो वो भी नहीं लिख सकती हैं, इतनी अपरंपार महिमा है। पर फिर भी ऐसी अपरंपार महिमा श्रवण करते हुए एक जन्म नहीं अनंत जन्म हमारे लग जाए तो भी उनकी महिमा को हम पूर्ण रूप से समझ पाएंगे या गा पाएंगे ये कहना तो संभव नहीं। परंतु फिर भी जितना हमें समय मिला, अधिकस्य अधिकम, ज्यादा से ज्यादा अपनी भक्ति को, अपनी मति को भगवान के चरणों में लगाने के लिए सुनना चाहिए। बोले सुनना क्या चाहिए? उनकी महिमा। महिमा कैसी है? ये शिव कैसे हैं? कि एक बार सृष्टि के कार्य में पूर्व समय की बात है कि शिव पुराण में ऐसी कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा जी चले भगवान श्री हरि विष्णु के पास, और जब ब्रह्मा पहुंचे तो जाकर खड़े हो गए। खड़े हो गए तो सोचा उन्होंने, ब्रह्मा जी ने सोचा, सकल सृष्टि का नायक, सकल सृष्टि को उत्पन्न करने वाला मैं हूँ, मेरे द्वारा ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, इसलिए मैं विधि हूँ, विधाता हूँ, तो मुझे नारायण को प्रणाम करना चाहिए, और जाति में भी मैं श्रेष्ठ हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो मुझे इन्हें प्रणाम करना चाहिए। और श्री हरि नारायण सोचते हैं कि ये तो मेरा पुत्र है, क्योंकि नारायण की नाभि से कमल की उत्पत्ति, कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति, पद्मनाभ, पद्म के नाभ से जो उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा, ये मेरे पुत्र हैं, इन्हें मुझे प्रणाम करना चाहिए। कहा कि आकर खड़े हो गए, शिष्टाचार धर्म भी भूल गए कि इन्हें आकर के पुत्र को पिता के सन्मुख हाथ जोड़ करके शीश दबाकर पिता को प्रणाम करना चाहिए, दंडवत करनी चाहिए। ये शिष्टाचार धर्म छोड़ दिया। भगवान श्री हरि को बुरा लगा और ब्रह्मा जी को लगा कि देखो मैं सारी सृष्टि को पैदा करने वाला हूँ और मैं सब कर, मेरा कार्य इतना महान है, मैं इनसे बड़ा हूँ, इन्हें मुझे प्रणाम करना चाहिए। ये मैं बड़ा का झगड़ा नारा, ये मैं कौन? ब्रह्मा जी कहे मैं बड़ा और श्री हरि विष्णु कहे मैं बड़ा, इनमें भी बड़े को, बड़े छोटे को लेकर। और हम मनुष्यों में तो ये बात रहती है, मैं यदि न हो तो झगड़ा ही न हो। तो हर नारायण भी कहते हैं मैं बड़ा और ब्रह्मा जी कहे मैं बड़ा, इन दोनों को बड़े बड़े लेकर के आपस में विवाद हो गया। और ये विवाद नारायण कहे कि तुमको मुझे प्रणाम करना चाहिए और ब्रह्मा जी कहे कि नहीं तुम्हें प्रणाम करना चाहिए, ये विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि युद्ध के रूप में प्रणीत हुआ। जब दोनों का युद्ध के रूप में प्रणीत हो गया ये विवाद तो ठीक उसी समय उन दोनों के बीच में, इस युद्ध के बीचों बीच एक ज्योतिर्मय अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ जिसमें दिव्य ज्योति है, केवल ज्योति है, और यह अग्नि के समान एक दिव्य ज्योति स्तंभ जैसे ही प्रकट हुआ, उस ज्योति स्तंभ से आवाज आई। आवाज ये आई कि मेरे आदि और अंत का पता लगाओ।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kantam 3, Sukta.

0: Namashivaya. Dear listeners of Shaivam.org Radio, the size of our audio collection continues to grow day by day. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Hariyom. पूज्य महाराज जी के पुण्य चरणों में वंदन. कुछ घटना ऐसी होती है कि हमें हमेशा याद रहती है और उसी समय कोई ऐसे ईश्वर की बड़ी कृपा होती है तो ऐसे संत हमारे बीच में आ जाते हैं और हमें अनुग्रहित करते हैं. महाराज जी ने अगर ध्यान हो तो बहुत ही कम समय के लिए 16 फरवरी को महाराज जी बता रहे थे 6-7 दिन के लिए और तैतरीय उपनिषद के मंगलाचरण की समझो एक विधि की थी प्रेमपुरी के लिए और उसी मंगलाचरण की कृपा है कि महाराज जी फिर से यहां बता रहे हैं. आप सब की तरफ से पूज्य महाराज जी को स्वागत करते हैं. वही तैतरीय उपनिषद महाराज जी द्वारा हमें प्रवचन के रूप से सुनेंगे हम. आप सब की तरफ से पूज्य महाराज जी को वंदन. हरिओम.
3: भक्त शक्ति समिता वास्तल में माताओं स्ने विवेनो आप सर्वबंधुओं, तो तैतरीय उपनिषद पर मंगलाचरण को लेकर चर्चा की थी और शिक्षा अध्याय को लेकर के थोड़ी चर्चा हुई थी. उसके पश्चात पुनः जो है प्रतिज्ञात जो है मंगलाचरण यहां शास्त्रकार कर रहे हैं उसके अंतर्गत चर्चा की जा रही है. उपासना विषयक पहले चर्चा कर रहे हैं और उस उपासना का लक्ष्य है पुरुषार्थ की प्राप्ति. तो यहां पर उपास्य रूप से ओंकार को संकेत कर रहे हैं और उस ओंकार की उपासना को लेकर के ही पहले प्रतिज्ञात्मक वाक्यों को लेकर के प्रार्थना कर रहा है ऋषि और उसमें संकेत कर रहा है यस छंदसा मृषभो विश्वरूपः. पहले ही ऋषि ने कहा यह छंदसाम ऋषभ, संकेत किया छंद माने वेद, जो छंदों में वेदों में कैसा है तो ऋषभ. अब ऋषभ शब्द के अर्थ श्रेष्ठ भी है और कहीं कहीं ऋष धातु से लेकर के ऋषभ शब्द का अर्थ ज्ञानात्मक ज्ञान रूप भी लिया जाता है. तो यहां पर प्रसंगानुसार ऋषभ शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ. तो संकेत करते हैं यह छंदसाम ऋषभ, जो वेदों में क्या है श्रेष्ठ है, जो वेदों में श्रेष्ठ है और कैसा है तो कहा विश्वरूप, जो वेदों में श्रेष्ठ है और विश्वरूप है माने सर्वरूप है. विश्वरूप का मतलब क्या है कहा जो सर्वरूप, तो जो वेदों में श्रेष्ठ और सर्वरूप है ऐसे उस ओम की तरफ संकेत करते हुए ऋषि कर संकेत कर रहा है. तो ऐसे उस ओंकार को उपास्य बनाने के लिए कहा कि जो वेदों के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ है और जो सर्वरूप है. और फिर उसके बाद ऐसा कहते हुए आगे संकेत किया छंदोभ्यो अधि अमृतात संबभूव, और क्या कहा जो वेद हैं उन वेदों के द्वारा उन वेदों से, क्या है, कहने लगे अधि अमृतातो, जो अमृत है या जो अमृतत्व है, ऐसे उस अमृतत्व का हेतुभूत जो अमृत है उस अमृतत्व का हेतुभूत जो, उस हेतुभूत का ही जो अधिष्ठान है, अधि उपसर्ग को लेकर के उसका जो अधिष्ठान है, ऐसे उस अधिष्ठान की जो है उपासना के लिए है, तो क्या संकेत करते हैं, कहा कि वह अमृतत्व का हेतुभूत जो है, ऐसे उस ओंकार की हम उपासना के लिए, यहां पर ऋषि भी संकेत करता है संभु अर्थात उस, ये सब संकेत किया और फिर प्रार्थना करते हैं, समेन्द्रो मेधयास प्रणोतु, फिर उसी के स इंद्र, इंद्र शब्द का अर्थ यहां देवता विषयक मात्र नहीं, इंद्र शब्द का अर्थ है यहां ईश्वर रूप है, जो संकेत करते हैं इंद्रो मायावी पुर रूप ईयते, तो वहां पर संकेत क्या किया, माया के द्वारा उस इंद्र ने सारे संसार का निर्माण किया, तो वहां इंद्र शब्द से केवल जो है स्वार्गिक इंद्र है उसको ग्रहण नहीं किया, वहां पर इंद्र शब्द से लिया गया कि माया के द्वारा सृष्टि करने वाला कौन, तो ईश्वर, तो यहां पर भी वही संकेत करते हैं स इंद्र, मां अर्थात मां मेधयास प्रणोतु, मेधा के द्वारा, मेधा से इस प्रणोतु माने हमें युक्त करे, अर्थात मेधावान बनाए या हमारे अंदर वह सामर्थ्य प्रदान करे, जिसके द्वारा हम उस सामर्थ्य को प्राप्त करके और उस अमृत के जो अधिष्ठान है और उसका हेतुभूत जो है उसकी उपासना करके हम जो है उस अमृतत्व को प्राप्त कर सके, इसलिए जो है ऐसे उस बल का हमें जो है या ऐसी उस सामर्थ्य का जो है हमें प्रदान करे या वो सामर्थ्य वाला हमें बनाए, ऐसा यहां संकेत करते हैं और आगे संकेत किया फिर अमृतस्य देव धारणो भूयाशम, है ना, तो वो जो देव है वो क्या करे, उस अमृत का धारण कराने वाला मैं हो जाऊं, ऐसा जो है मुझे बल दे, तो उस अमृत को धारण कराने वाला मुझे बनाए या मैं ऐसा हो जाऊं, तो ये संकेत किया तो उस देव से ही प्रार्थना करते हुए, और वो देव क्या है, तो यहां ओंकार को ही उपास रूप से ग्रहण कर रहे, ये संकेत कर रहे, यहां भूमिका बना रहे, और फिर ऐसा कहते हुए आगे संकेत किया शरीरम में विचर्षणम, मेरे शरीर को वो कैसा बनाए, तो विचक्षण बनाए अर्थात उस सामर्थ्य वाला बनाए, शरीर भी क्या है, तो कहा एक साधन है, और साधन किसका है, तो कहने लगे शरीर जो है साधन संसार के पदार्थों का भी है, और संसार के पदार्थ जो है वो शरीर के लिए साधन है, लेकिन उन साधनों से युक्त होता हुआ शरीर रूपी साधन किसके लिए है,

साध्य क्या है, तो वहां सीधे अर्थ में कह देते पुरुषार्थ ही उसका क्या है, का साध्य है और उसका शरीर साधन है। तो शरीर जो है, शरीर रूपी साधन किसके लिए है, पुरुषार्थ की प्राप्ति कराने के लिए। अब पुरुषार्थ शब्द से चार पुरुषार्थों को हम लेते हैं, लेकिन यहां पर श्रेयता की दृष्टि से संकेत कर दिया जाता है कि अन्य साधन तो उसके संसार के पद पदार्थों के अंतर्गत लोक विशेष को लेकर के आ गए, लेकिन वास्तविक उसका साध्य क्या है, तो मोक्ष ही उसका साध्य, अमृत ही उसका साध्य। और उस अमृत का हेतुभूत क्या है, तो उसके लिए हेतुभूत जब कहेंगे तो ज्ञान ही है, क्योंकि उस ज्ञान के द्वारा ही उस अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो ऐसा जो पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ के लिए ये शरीर है। अब ये शरीर जो है, तो वो हमारा शरीर रूपी साधन कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए कहने लगे कि शरीर रूपी जो साधन है वो भी सामर्थ्य युक्त हो, वो भी सामर्थ्य वाला हो। तो इसलिए कहा कि शरीरम में विचर्षणम, हमारे शरीर के अंतर्गत भी वो विलक्षणता जो साध्य को सिद्ध करने में समर्थ हो, अर्थात सामर्थ्य को प्राप्त हो या बल को प्राप्त हो, तो ऐसा बल जो है मेरे शरीर को भी प्रदान करें। शारीरिक दृष्टि से भी संकेत किया और जिह्वा में मदमत्तमा, फिर एक एक अवयव को लेके कहने लगे मेरी जिह्वा कैसी हो जाए, तो केवल मधु युक्त नहीं, मीठी नहीं हो जाए, क्या हो जाए, मधुमत्तमा, माने जो श्रेष्ठ मधुरता है उस मधुरता वाली हो जाए। तो ये सब सामान्य रूप से संकेत कर रहे। ऐसे ही आगे कह दिया कर्णाभ्याम भूरि विश्रवम, और कानों से जो है मैं बहुत सुनने वाला हो जाऊं, कानों से क्या हूं, बहुत सुनने वाला हो जाऊं। और इस प्रकार से कहते हुए फिर आगे कहा ब्रह्मणः कोशोसी, क्या कहा, ब्रह्मणः कोशोसी माने ब्रह्मणः कोशा असी, यह जो है कौन, जिसकी हम उपासना करने जा रहे, जिसे हम अपना उपास्य बना रहे हैं, वो उपास्य कैसा है, तो कहने लगे वो ब्रह्म का कोष है, वो उस अमृत का कोष है। कोष माने कोष को कह दो तो एक आवरण, क्या कोष माने क्या है, आवरण, या उस ब्रह्म के लिए रहने का स्थल विशेष, ऐसा संकेत। यद्यपि ब्रह्म वहां रहता नहीं, लेकिन फिर भी यहां पर प्रतीक उपासना को लेकर के हम लोग जिस भाषा में रहते हैं और जिस भाषा के व्यवहार से समझते हैं, उसी को समझाने के लिए यहां कोष शब्द का प्रयोग कर दिया। तो वो ब्रह्म का कोष है, और उसका भाष्य में संकेत किया कि जैसे तलवार का कोष क्या है, उसका म्यान, ऐसे ही यहां पर जो है ओंकार जो है वो क्या है, ब्रह्म का कोष। क्यों, ब्रह्म में वास्तव में कोष आदि नहीं, लेकिन ये ओंकार जो है ब्रह्म का अत्यंत समीपी है, क्या है, ब्रह्म का अत्यंत, यद्यपि ओंकार को सब कुछ कहा, ओंकार है इति सर्वम, ओंकार जो है वही सब कुछ है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म ऐसा भी कह दिया, लेकिन ये जो सारा वर्ण है वो किस लिए है, तो ओंकार को हम उपास्य बना रहे, और ओंकार की जब हम उपासना करते हैं तो ब्रह्म के प्रतीक रूप से करते, इसलिए ब्रह्म के प्रतीक रूप से उपासना करने के कारण, और वो प्रतीकता जैसे अन्य प्रतीकताएं हैं वैसा नहीं, वो श्रेष्ठ प्रतीकता है, वो ब्रह्म की अत्यंत समीपी जो है प्रतीकता है, इसलिए ओंकार को ब्रह्म का अत्यंत समीपी होने के कारण निर्दिष्टो ही ब्रह्म ऐसा संकेत किया, प्रणवो ही निर्दिष्टो ब्रह्म, यह जो प्रणव है, यह जो ओंकार है वो ब्रह्म का अत्यंत समीपी, जैसे वहां जो है को शब्द से भी कह दिया तो तलवार का अत्यंत समीपी कौन है, कहा म्या उसमें रहती है, अब वो इस प्रकार से वहां पर रहती है, लेकिन कार्य करने के समय तक कोष से बाहर आ जाती, तो इसे संकेत यहां कर रहे हैं कि ब्रह्मणा कोशोषी, यह जो ओम है वही क्या है, ब्रह्म का प्रतीक है, ब्रह्म का अत्यंत समीपी है। और ऐसा संकेत करते हुए फिर कहा कि कोशोसी मेधया पीत, अब फिर संकेत किया मेधया, मेधा के द्वारा,
अब ऐसे उस ओंकार को

भी प्रतीक को भी हम ग्रहण करने में समर्थ नहीं होते। तब कहने लगे क्यों समर्थ नहीं होते, तो मेधया पीतः, क्योंकि मेधा के द्वारा, मेधा माने बुद्धि में रहने वाली ग्राहक शक्ति, मेधा माने बुद्धि में रहने वाली ग्राहक शक्ति विशेष का नाम यह है क्या, मेधा। तो अब उस मेधा के द्वारा पीतः माने वह छिपा हुआ है या ढका हुआ है, अर्थात उस मेधा ने ही उसको छिपा दिया और मेधा जो है उसको देखने में समर्थ इसलिए नहीं हो। तो मेधा पीतः वो बुद्धियों से ढक गया, सीधे अर्थ में कह दें तो वो बुद्धियों से ढक गया। श्रुतम में गोपाय, और आगे संकेत किया, मेरा जो श्रवण किया हुआ है वो उसकी क्या करो, तो रक्षा करो। ये सब जो है सामान्य अर्थ को लेकर के यहां संकेत किया। आगे संकेत किया आवहंती वितनवाना, माने मेरे लिए आवाहन करने वाली, बुलाने वाली, और जो है वितनवाना विस्तार करने वाली है। तो इस प्रकार से जो है उपासना करते हुए अपने प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमारे लिए जो है मने इन वलों आदियों को लाने वाली और उस वल आदि का विस्तार करने वाली, तो श्री आदि के लिए भी संकेत किया। तो इस प्रकार से यहां पर सामान्य रूप से इस मंगलाचरण के अंतर्गत चर्चा की। अब ये वल की बात जो कही, देखो नियम ये है, शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत भी एक मंत्र आता प्रारंभ में ही, इसे तोर्जे त्वा वायवस्था त्वा देवो सवितः वा प्राप्यतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्याद्वयम् माग्नः इन्द्राय। और उसके बाद फिर इस प्रकार से चर्चा करते हुए आगे चर्चा की। अब यहां पर संकेत किया गया, तो पहले वहां पर भी शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत ये कहा मने तोर से त्वा ऋषे, वहां भी संकेत किया मने उस श्रेष्ठ अन्न आदि को हमें प्राप्त करो, कराओ। और उस अन्न आदि को जब हम प्राप्त कर लें तो कहे उसके बाद कहा ऊर्जे, मने हमें ऊर्जा बल प्राप्त कराओ, और बल प्राप्त हो जाए तब संकेत किया उस बल से संपन्न होकर के, क्योंकि वह देवता कैसा है त्वा वायवस्था, वायु रूप तुम हो, वायु के समान बल वाले हो, ऐसे उस देवता से प्रार्थना करते हुए। और कहा इतना ही नहीं, त्वा देवो सवितः, केवल वायु रूप ही नहीं हो, क्या हो, प्रकाश रूप हो, ज्ञान स्वरूप हो। तो इसलिए मैंने ऐसा संकेत करते हुए उससे प्रार्थना की कि पहले जो है उस देवता से कहा हमें अन्न ग्रहण कराओ। क्यों अन्न ग्रहण कराओ, कहा अन्न ही जब हम ग्रहण करेंगे तभी क्या होगा, कहा शरीर विलक्षणता को, बल को प्राप्त होगा, और अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तो शरीर में भी सामर्थ्य नहीं। लेकिन केवल ग्रहणता का ही नहीं, इसलिए आगे भी यहां समदम आदि की चर्चा भी प्रार्थना करेंगे। मने अन्न तो हमने ग्रहण कर लिया, या जो हमारे शरीर के अनुकूल पदार्थ हैं, अन्न का मतलब अतिथि अन्नम, जो जिसके ग्रहण करने से शरीर पुष्टि को प्राप्त हो वही यहां पर अन्न शब्द से। तो अब अन्न हमने प्राप्त कर लिया या शरीर के साधनों को प्राप्त कर लिया, लेकिन ध्यान रखना अन्न तो हमें मिल जाए लेकिन कभी कभी स्वाद से थोड़ा अधिक खा जाते तो क्या हो जाता, तो अजीर्ण हो जाता, और अजीर्ण हो जाता है तो अन्न खाया किस लिए था, इसलिए खाया था कि हमें बल की प्राप्ति हो। लेकिन जब उसने अजीर्णता पैदा कर दी तो बल न होने के अपेक्षा बल कम और हो गया, ठीक है ना। तो वहां पर संकेत किया गया, इसलिए कहा कि अन्न को इतना ही से कहने से काम चल जाता, फिर आगे ऊर्जे शब्द की बल प्राप्ति के लिए क्यों प्रार्थना की, इसलिए की कि अन्न को हम साधनों को एक उचित मात्रा में एक मर्यादित रूप से ग्रहण करें, और ग्रहण करके उससे बल की प्राप्ति करें, और वो बल जब हमें मिल जाए तो बल को देने वाला भी कौन है। तो इसलिए संकेत कर दिया कि वायु शब्द का त्वा वायवस्था, वायु रूप भी तुम, क्यों जानते हैं आप सब लोग जितना भी शरीर के अंतर्गत आप बलात्मक कार्य करते हो वो कब होता है,
कोई भी क्रिया करते हो तो कब होती है? तो कहने लगे शरीर में बल होता, लेकिन वो बल भी काम कब करता? वो बल है कौन? उस बल को भी प्रेरित करने वाला कौन है? हम वाणी बोल रहे हैं, तो बोलना रूप जो बल है वो अभी कब है? तो यदि वायु नहीं होगी तो ये वाणी का प्रस्फुटन नहीं होगा। वायु नहीं होगी तो हाथ उठेगा नहीं, ठीक है। तो इस शरीर के अंतर्गत, और यहां तक कह दिया है, रसो वही सह जहां श्रुति आई, तो ये यदि येष आकाशो नश्यात् कोवान्यात् कोवा प्राण्यात्, यदि ये आकाश नहीं होता, वहां संकेत किया, तो है अपहनन आदि क्रिया, प्राणन आदि क्रिया कौन करता? और ये क्रिया यदि नहीं होती तो जीवन भी नहीं होता। ये संकेत किया, तो इसलिए संकेत क्या किया? इसलिए तुमेव वायु है, क्या है? प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, इसलिए वायु को प्रत्यक्ष ब्रह्म कह दिया। ब्रह्म है ऐसा नहीं, किंतु प्रत्यक्ष ब्रह्म शब्द से कहा, मैंने इंद्रियों के द्वारा सामर्थ्य देने वाला, इंद्रियों से ग्रहण होने वाला ब्रह्म कौन है? तो वायु है। तो ऐसा संकेत, तो इसलिए तो वायु क्या है, इसलिए कहा त्वा देवो वायवस्था, तुम क्या हो? वायु रूप हो। तो वायु वह सारा बल देने वाला है, वायु बल की प्रेरणा करने वाला है, उस वायु के बगैर ये कोई क्रिया संभव नहीं हो सकती, ऐसा वहां संकेत किया। और इतना संकेत ही नहीं, साथ में जो है कहा वायु भी है, और उसके बाद कहा कहने की त्वा देवो सवितुः, सविता है, सविता शब्द का प्रयोग किया। सविता शब्द का अर्थ क्या है? तो मन सूर्य और प्रसव करने वाला, ऐसा भी संकेत कर दिया। तो इस प्रकार से ऐसे देव से प्रार्थना करते हैं, और अन्न को ग्रहण करें, अन्न को ग्रहण करके बल की प्राप्ति हो, और बल की प्राप्ति हो तो उस बल का प्रयोग क्या होना चाहिए, है ना? तो शक्ति परेशम परपीडनाय, हमें यदि शक्ति मिली है, बल मिला है, तो क्या करें? दूसरों को पीड़ा दें? कहा नहीं, साधु और खल के लक्षणों में जो बतला दिया स्वास्थान में, तो कहने लगे नहीं, वो किस लिए है? दूसरों की रक्षा करने के, या अपने पुरुषार्थ की प्राप्ति करने। तो बल प्राप्त करें, और उस बल को प्राप्त करके हम अपने पुरुषार्थ की सिद्धि करें, ये संकेत किया। तब वहां कहा वो कैसे होगा? तो संकेत क्रम से दिया, एक साथ तो बल प्राप्त नहीं होगा। तब कहा श्रेष्ठ तमाय कर्मणे आप्यायुद्धम, मने कर्म भी हैं, तो एक तो आप गीता में सुनते हो कर्म विकर्म और अकर्म। अब यहां पर जो शब्द आया कर्म को लिया, कर्म की भी गतियां फिर विभाजन कर दी, कर्म में भी भेद कर दिया, कर्म फिर श्रेष्ठ तर कर्म और फिर श्रेष्ठ तम कर्म। तो वहां कर्म के लिए नहीं कहा, अब इतना कह देने से जहां पर ये कर्म अकर्म विकर्म और फिर कर्म में कर्म श्रेष्ठतर कर्म श्रेष्ठतम कर्म, इसमें काम्य निषिद्ध तो पहले ही से निवृत्त हो गए। इतना विधान करने से काम्य और जो निषिद्ध कर्म है उनका तो वर्जन पहले ही से हो गया, और कर्म जो है अब वो कर्म को लेकर के संकेत की, तो श्रेष्ठतरम कर्म के लिए नहीं कहा, श्रेष्ठतम कर्म। और श्रेष्ठतम कर्म क्या है? तो श्रेष्ठतम कर्म है यज्ञ, इसलिए यहां जप होम की विशेष चर्चा भी करेंगे। तो अब श्रेष्ठतम कर्म करें माने यज्ञात्मक कर्म करें, और यज्ञात्मक कर्म करेंगे, और उस कर्म के करने के बाद फिर संकेत आगे कर दिया माग्न्यः इंद्रायो, इंद्र आदि के भाग का जो है आप जो है हनन न करें, अर्थात इंद्र का जो भाग है वो इंद्र को प्रदान करें। तब क्या होगा? तो जी गीता में सुनतो देवान भावयता नीन ते देवा भावयंतो वा परस्पर भावयंता श्रेयः परम। यदि जो देवताओं, जिन देवताओं ने, अब देवता सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, पृथ्वी भी है, हैं, लेकिन यहां तो लोग कहेंगे ये तो रूढ़िवादी हैं, लेकिन यहां पर शास्त्र जो कहता है कि पृथ्वी भी देवता है, सूर्य भी देवता है, वायु भी देवता है, चंद्रमा भी देवता, और ये क्यों कहा देवता? तो यहां पर देवता इसलिए है, यदि सूर्य का प्रकाश नहीं मिले तो क्या है? संसार में केवल स्थावर जंगम जितने भी हैं उनका जीवन दूभर हो जाए। वायु यदि अपने बल को नहीं दे तो भी इनका जीवन दूभर हो जाए। पृथ्वी यदि अपने से औषधियों को, और जो है पृथ्वी के समय की घटना,
औषधियों को वनस्पतियों को पैदा करके नहीं दे तो क्या स्थिति होगी। और पृथ्वी जैसी तो आप सारा आश्रय भी दे रही है, आपके सारे दोषों को भी ग्रहण कर रही है और आपको गुणात्मक करके हैं, जितनी भी गंदगी सब पृथ्वी, लेकिन वो फिल्टर करके क्या करती, आप एक छोटा फिल्टर बना लेते हो हैं, अपने को वैज्ञानिक कहते हो और बड़ा अहंकार आ जाता, लेकिन पृथ्वी भी अकड़ जाए ऐसे ही तो क्या होगा। तो पृथ्वी जो हमको देती है, ऐसे ही वायु हमको देती है, सूर्य हमको देता है, चंद्रमा आदि हमको देता है, या ऐसे अन्य जो देव हैं, ये कल्पना जो देवों की है, लेकिन है तो वहां एक हो देवा सर्वभूते, लेकिन ये जो है माध्यम है, प्रतीक है, इनके द्वारा जो हमें प्राप्त होता है तो हमें भी इनके प्रति क्या करना चाहिए है? एक मंत्री आकर के तुम्हें जो है कुछ दे दे तो तुम क्या करते हो, ईश्वर कहोगे, ईश्वर तुम हो, भगवान तुम हो, सब कुछ तो, और कम से कम मालाएं डालोगे, उसे धन्यवाद दोगे, और जो तुम्हें सारा जीवन दे रहा है उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करना क्या हमारा कर्तव्य नहीं? तो जो हमें जीवन दे रहा है उसके प्रति हम धन्यवाद तो कम से कम करें, उसको कम से कम नमस्कार तो कर लें, उसके प्रति एक आस्था तो रखें, तो यही क्या है यज्ञ। तो देव तुमको देते हैं तो देवों के प्रति भी एक सद्भावना बनाना, ये क्या है, एक यज्ञ, एक आस्था रखना। लेकिन हमारी तो वहां आस्था ही नहीं होती, समस्या ये है। फिर हम कहते हैं हमें ये प्राप्त नहीं हुआ, ये प्राप्त नहीं हुआ, भाई जो देने वाला है उसके प्रति तुम्हारी भावना क्या है, और जब तुम्हारी भावना ही नहीं है तो वो तुम्हारे पर प्रसन्न कैसे होगा। तो ये संकेत, तो इसलिए वहां संकेत जो कर दिया कि वह बल हमें प्रदान करे, और ये सब है श्रेष्ठतम हम कर्म करें। तो श्रेष्ठतम कर्म क्या है, कि श्रेष्ठतम कर्म ये है कि जो हमारे ऊपर अनुग्रह कर रहा है, हमारे ऊपर अनुकंपा कर रहा है, कम से कम जो है हम उसके कृतज्ञ न बन पाए तो उसके प्रति सौहार्द रखते हुए कृतघ्न न बने। यदि कृतज्ञ नहीं बन पाते हैं तो उसके प्रति हमारी कृतज्ञता भी नहीं होनी चाहिए, तो इस भी कम से कम हो तो भी अच्छा। लेकिन यहां तो कह रहे श्रेष्ठ तमाय कर्मणे आप्यायध्यम, श्रेष्ठतम कर्मों को करना चाहिए, ये संकेत किया। और कहने लगे श्रेष्ठ कर्मों को करके और हमको भी श्रेष्ठता प्राप्त हो गई, तब हमारे शरीर की विचक्षणता हो गई, तब क्या होना चाहिए। तो कहने लगे इतना होने पर अब इससे क्या होगा, इससे तुम्हें बल भी मिल गया, समाज में तुम्हें यश भी मिल गया, और सर्व रूप से तुम समाज में प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। लेकिन इतना ही जीवन का लक्ष्य नहीं। तब आगे संकेत किया आगे क्या करना है, तब कह दिया है वहां पर कि है क्या करो। तो कहने लगे को हम है कुथायाता कहा मे जननी को मे ताता इति परिभाव सर्वम सार, मनुष्य विचार है वारम। तब जो है यहां से विचार प्रारंभ होना चाहिए और ऐसा जो है उसको जानने के लिए यह प्राप्त, और उसको जानने के लिए हमें उपासना करनी चाहिए। तो उसी को यहां संकेत करते और उसे जो जानने की जो इच्छा होगी और उसको जब जान लोगे तो वही परम पुरुषार्थ है। तो उसी को जानने के लिए यहां पर जो है साधना का प्रकरण शुरू करते, अब उसकी लंबी व्याख्या नहीं करें। तो अब जो है हमको क्या करना है, बलादि हम से कह रहे हैं कि जो छंदों में श्रेष्ठ है उसके लिए संकेत कर दिया, प्रतीक रूप से जो हमारा साध्य है और ऐसा वही अमृत का अधिष्ठान है, और कोई नहीं चाहता कि मेरी मृत्यु हो जाए, है ना, सब क्या चाहते हो, कहा मैं अमृत को प्राप्त हो जाऊं, मेरी मृत्यु न। लेकिन उस अमृतत्व का जो अधिकरण है, अमृतत्व का जो अधिष्ठान है, और उस अमृतत्व को प्राप्त कराने का जो हेतु है, निमित्त है, वो कौन है। तो अधिष्ठान तो ब्रह्म है, और उसे प्राप्त कराने वाला हेतु कौन है, तो ज्ञान है। तो अब वो ज्ञान हमें होना चाहिए, तब हमें यह ज्ञान करना कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। इसके लिए हमारे लिए ये सारे साधनों को क्रम से बतलाते हैं, क्योंकि इन साधनों से संपन्न होते ही तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए ये नहीं कहा केवल हम ब्रह्म की बात सुनकर के और हम अपने को ब्रह्म सिद्ध कर लें और सारे की सारी श्रृंखलाओं का परित्याग कर दें, तो ये नहीं कहा। न तो भगवत पादाचार्य आचार्य शंकर ने कहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि उसकी श्रेयता है, वो श्रेष्ठ है, वो जीवन का लक्ष्य है, लेकिन उन्होंने ऐसा कह करके किसी का खंडन नहीं किया। हां ये जरूर कहा कि यहां तक वो सीढ़ियां हैं,
और उन सीढ़ियों तक सीमित रह गए।